मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 110.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है खेत खलिहान कार्यक्रम। इसमें सुनिए वार्ता नींबू का खर्रा रोग। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। साइट्रस कैंकर या नींबू का खर्रा रोग नींबू वंश या वृक्षों में ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण जैसा कि आपको ज्ञात है, कैंकर शब्द का मतलब होता है कैंसर। कैंसर का अपभ्रंश है जिसका मुख्य प्रभाव उत्तक छाय के रूप में होता है। इस रोग का जब आक्रमण होता है तो वृक्ष की पत्तियां, टहनियां, कांटे, पुरानी शाखाओं और फलों आदि सभी भागों पर दिखाई देता है। सबसे पहले नींबू के खर्रा रोग का लक्षण पत्तियों के ऊपर छोटे गोल जलमय पारभासक धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। यह धब्बे पीत भूरे और उभरे हुए दानों के समान होते हैं। आरंभ में यह पत्ती की निचली सतह पर बनते हैं लेकिन बाद में दोनों सतहों पर बनते जाते हैं। जैसे जैसे रोग बढ़ता है

0: धब्बों की सतह सफेद अथवा धूसर रंग की हो जाती है और अंत में यह मध्य से फटकर खुरदरे या रुक्ष कटोरे सदृश कॉक के समान काष्ठीय हो जाते हैं। इस गुण के कारण इसका नाम काष्ठ रोग पड़ा है। यह धब्बे आकार में बढ़कर 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक व्यास के हो जाते हैं और फलों एवं टहनियों पर कई धब्बे एक साथ मिलकर लंबे बिछतों के रूप में दिखाई देते हैं। यह खुरदुरे बिछत एक पीत भूरे उभरे किनारे अथवा जलमय पीले प्रभा मंडल द्वारा घिरे रहते हैं। बड़ी शाखाओं पर यह बिछत या कैंकर अनियमित आकार के खुरदरे अथवा अत्यधिक अस्पष्ट होते हैं। फलों पर बने कैंकर पत्तियों के कैंकर के समान ही होते हैं, परंतु यहाँ इनके चारों ओर का पीला प्रभा मंडल अनुपस्थित होता है और इनके मध्य में कटोरे जैसा गड्ढा अधिक अस्पष्ट होता है। फलों में क्षति केवल त्वचा तक ही सीमित रहती है और गुदे या रस में कोई क्षति नहीं दिखाई देती है, लेकिन इसके कारण बाजार भाव जो है फलों का, नींबू के फलों का कम मिलता है। आप देखें कि जब आप नींबू खरीदने बाजार में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि नींबू के ऊपर काले काले धब्बे पड़े हैं और इन धब्बों के कारण नींबू की गुणवत्ता जो है वो खराब हो गई है। वास्तव में उसकी गुणवत्ता जो है वो खराब नहीं होती है, लेकिन ये जरूर होता है कि बाजार भाव कम मिलते हैं, देखने में ये खराब लगता है। यह रोग जैसा कि आपको पता है जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु परपोषी के भीतर प्राकृतिक अथवा कीटों एवं कांटों द्वारा बनाए गए घावों के रास्ते से पौधे में प्रवेश करता है। इसके द्वारा संक्रमण होता है और अनुकूल मौसम में यह रोग जो है वो फैलाता है। नींबू के खरा रोग के नियंत्रण की सबसे उपयुक्त विधि है रोगी वृक्षों को जला देना, परंतु ऐसा करना संभव नहीं होता है क्योंकि यदि उद्यान में यह व्यापक रूप से फैल गया तो पूरा उद्यान को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि एक या दो पौधा जो है वो रोगग्रसित हो गया तो उसको आप हटा सकते हैं। नींबू जाति के जब नए उद्यान आप लगाएं तो केवल रोग रहित नर्सरी मूल वृंदों का ही प्रयोग करें। पौधे पर नए उद्यान में रोपण करने से पहले 1% बोर्डो मिश्रण का छिड़काव कर दें। पुराने उद्यानों में रोगी टहनियों को काटकर वर्षा ऋतु के आरंभ में आप फेंक दें और वृक्षों के ऊपर 1% बोर्डेक्स मिश्रण का या ब्लाइटॉक्स का छिड़काव करें 15 से 20 दिनों के अंतराल पर, ताकि यह रोग जो है नहीं लगे। उसके अलावा कुछ प्रतिजैविक पदार्थ हैं, एंटीबायोटिक्स, जैसे 10 लाख भाग जल में 500 या 1000 भाग स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट अथवा 2500 भाग फाइटोमाइसिन आदि का छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर आप कर सकते हैं। यदि इन घोल में 1% ग्लिसरीन को मिला दिया जाए तो पौधे के भागों पर आसान भली भांति से चिपक जाता है और लाभ जो है ज्यादा होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नीम की खली यदि पौधे की जड़ों में दें तो भी यह रोग नहीं होता है। रोग नियंत्रण की सबसे उपयुक्त विधि है नींबू जाति के वृक्षों को रोगरोधी किस्मों का आप प्रयोग करें और उसके बाद हरदम कटाई छटाई जो है वो करते रहें।
1: आप सुन रहे थे खेत खलिहान कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता नींबू का खर्रा रोग। वार्ता करते श्रीनिवास सहाय। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम

0: करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2015 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 110.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन।
3: मानवता मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। मानवता के अंतर्गत अत्यधिक विशेष गुण आते हैं और इन विशेष गुणों के भीतर ऐसे ऐसे गुण समाहित हैं जो मानव के जीवन को प्रकाशित करते हैं और मानव का मार्गदर्शन भी करते हैं। ये मानव के जीवन में 4 चांद लगा देते हैं। उदाहरण के तौर पर शालीनता, विनम्रता, परोपकार, त्याग, बलिदान, न्याय, सहनशीलता, असहाय की सहायता, दूसरों के दुख में शरीक होना, दूसरों के दुख को अपना दुख समझना, ये ऐसे पवित्र और उज्जवल गुण हैं जो मनुष्य को अमर बना देते हैं। हर मनुष्य खुशी तलाश करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हम पाते हैं कि किसी मनुष्य को अपार खुशी उस समय मिलती है जब वह किसी दुखी के मन को खुश कर देता है, और इसके साथ उसे एक और कीमती चीज़ मिलती है, वह है उस दुखी दिल से निकली हुई दुआ। यही नहीं, मानवता एक ऐसा गुण है जो एक बेहतर समाज बनाने और देश को भी समन्वित एवं सम्मानित तरीके से चलाने में सहायक होता है। मानवता ही समाज में प्रेम, एकता, मेलजोल, भाईचारा स्थापित करती है, देश को एकता के साथ आगे ले जाने में सहायक होती है। इसके विपरीत अमानवीय कारणों से समाज भी बिगड़ता है, देश की उन्नति में भी बाधा उत्पन्न होती है और अमन व शांति भी जाती रहती है। जब मनुष्य मानवता खो देता है, इसके हृदय से मानवता का सुंदर एवं स्वच्छ गुण जाता रहता है, तो मानव के स्तर से गिरने लगता है और अंत में उसके अंदर पशुता आ जाती है। ना तो उसके अंदर हमदर्दी बचती है, ना सहनशीलता, उसके अंदर दुष्टता आ जाती है। उसका मन स्वार्थ से प्रेरित रहता है, दूसरों को तकलीफ देने में उसे कोई संकोच नहीं रहता, वह अत्याचारी और दुराचारी बन जाता है। वह तो पशु से भी बदतर हो जाता है। पशु से तो फिर भी लोग प्रेम करते हैं, पर वह तो नफरत का पात्र बन जाता है। उसके द्वारा आतंक फैलाया जाता है, जिससे अकारण ही लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ता है और धन की बर्बादी अलग होती है। समाज और देश दोनों को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कौमी एकता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। किसी कवि ने खूब कहा है, इंसानियत की रोशनी गुम हो गई कहाँ, साए हैं आदमी के मगर आदमी कहाँ। हमारा देश सूफी संतों और महापुरुषों का देश रहा है। यही कारण है कि जो महापुरुष मानवता के पुजारी थे, उनके दरों पर, मज़ारों पर, समाधियों पर, मठों पर आज भी लोग अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जाते हैं और लोगों को इससे लाभ मिलता है। प्रिय श्रोताओं, हमें मानवता पर आधारित गुणों पर जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारे अंदर परोपकार, हमदर्दी, सहनशीलता कूट कूट कर भरा होना चाहिए, ताकि हम एक स्वच्छ समाज की स्थापना कर सकें। ऐसा समाज जहां चाहत हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, हम दुख दर्द बांटने वाले हों। किसी कवि ने कहा है, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। दिल तोड़ना किसी का ये जिंदगी नहीं है, गम दूसरों का ले लें क्या ये खुशी नहीं है। कहा जाता है कि जो मानवता के सच्चे पुजारी होते हैं, उनकी जिंदगी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए हुआ करती है। उनका संदेश पूरी इंसानियत के लिए होता है। आज भी उनके कदमों के चिन्ह मौजूद हैं। उस चिन्ह को देखकर आज भी हम आगे बढ़ सकते हैं और मानवता की उस चोटी को छू सकते हैं जिसकी ज़रूरत समाज और देश को है।
2: आप सुन रहे थे चिंतन मनन, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। आरंभ में सुनिए ये देश वंदना समूह स्वर में।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। इसमें सुनिए भेंट वार्ता प्लेटलेट्स में गड़बड़ी। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर आरपी जायसवाल और भेंटकर्ता सचिन कुमार।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आरपी जायसवाल जो फिजिशियन हैं, और इनसे आज हम बातें करेंगे प्लेटलेट्स में गड़बड़ी विषय पर। डॉक्टर साहब, प्लेटलेट्स क्या होते हैं?
2: प्लेटलेट्स जो हैं वो रक्त में उपस्थित अनेकानेक कोशिकाओं से में से एक होते हहैं, जिनका बनना अस्थि मज्जा में मुख्यतः होता है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, ये प्लेटलेट्स का हमारे खून में क्या काम होता है?
2: यह बहुत ही महत्वपूर्ण है
1: जी।
2: वस्तुतः प्लेटलेट का मुख्य काम जो है वह रक्त स्राव को अननेसेसरी कहीं से रोकने में मदद करना है, जिसके लिए यह रक्त के जमाव में
1: जी
2: सहायता प्रदान करता है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, हम कभी सुनते हैं कि किसी रोगी का प्लेटलेट्स काफी बढ़ गया है या काफी कम हो गया है, तो क्या बढ़े हुए प्लेटलेट्स से या कम हुए प्लेटलेट्स से अलग अलग खतरा है, या दोनों ही स्थितियों में खतरनाक है? या
2: नहीं, दोनों ही स्थितियों में खतरनाक है। एक निश्चित सीमा के ऊपर या एक निश्चित सीमा से नीचे यदि प्लेटलेट का हो जाए
1: जी।
2: मैं आपको बता दूं कि प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट जो है, जो एक रेंज है, वह 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में प्रति मिलीलीटर

0: खून के
1: किसी स्वस्थ वयस्क में ये पाया जाता है जी।
0: लेकिन ये अकाउंट जो है 1.5 लाख रहने पर भी या 4.5 लाख रहने पर भी यदि प्लेटलेट सही ढंग से काम नहीं करेगा तब भी गड़बड़ी हो जाएगी
1: जी।
0: तो प्लेटलेट का कार्य सही ढंग से हो इसके लिए दो आवश्यक बातें होती हैं, एक तो कि उनका काउंट सही हो, सही संख्या उनकी उपस्थित हो
1: जी।
0: दूसरी बात यह होती है कि उनका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है
1: जी।
0: वो सही ढंग से हो, ये हुआ कम होने की बात आसानी से समझ में आ सकती है। प्लेटलेट की वृद्धि और वो कैसे खतरनाक, प्लेटलेट की अधिकता या ओवर फंक्शनिंग जिसको बोलेंगे वो यदि होता है तो अनावश्यक रूप से प्लेटलेट ब्लड को थक्का कराने का काम कर सकता है, वो हाइपर विस्कोसिटी बोलते हैं,
1: यानी कि जहां जरूरत नहीं है वहां भी थक्का
0: जम
1: जाएगा,
0: थक्का ब्लड ब्लड को ब्लड वेसल्स में आसानी से बहने नहीं देगा, जमाव
1: देगा। तो डॉक्टर साहब जिस रोगी में प्लेटलेट्स की कमी होती है तो ये कौन से लक्षण होते हैं जिनसे पता चल जाए कि उसमें कमी है प्लेटलेट्स की?
0: प्लेटलेट की कमी निश्चित रूप से कहने के लिए तो बिना काउंट किए नहीं कहा जा सकता है। हाँ, उनके लक्षण जो है वह आपको ये बताने के लिए काफी होते हैं कि प्लेटलेट का जो काम है वो शायद सही ढंग से नहीं हो रहा है, जिसका कारण कि प्लेटलेट में कमी हो सकती है या प्लेटलेट का हाइपो फंक्शन नॉर्मल से कम फंक्शनिंग हो सकता है। वो लक्षण है कि एक तो जो जनरल होते हैं कि काफी कमजोरी महसूस होना
1: जी,
0: और बहुत ही आसानी से खून कहीं से भी निकल जाना, छोटे छोटे चकते बूंदे जैसे स्किन पे म्यूकस मेम्ब्रेन बना मुंह पे आपको दाने दाने की तरह लाल लाल दाने की तरह जो है स्पॉट्स आने शुरू
1: पूरे शरीर पर
0: आ सकते
1: जी।
0: हैं और अन्य स्राव में शारीरिक स्राव जो हैं फिजियोलॉजिकल उनमें भी आपको खून की या लालीपन या फ्रेश ब्लड आप देख सकते हैं, जैसे खखार है, पेशाब है, पैखाना है, उल्टी है, ये इन सभी।
1: डॉक्टर साहब प्लेटलेट्स की कमी के कारण कौन कौन से हो सकते हैं?
0: प्लेटलेट की कमी के जो कारण हैं वो तो बहुत सारे हैं, जिसमें कुछ जो है वो इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं, कुछ जो हैं हमारे खान पान से संबंधित रोगों से रिलेटेड हैं, कुछ संक्रमण के कारण भी होते हैं और कुछ जो है वो उसे कहते हैं कि आइडियोपैथिक, जिसका कि कोई कारण पता नहीं चला लेकिन प्लेटलेट की कमी है, जो जो जो हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं जांच पड़ताल के उनसे हम पकड़ नहीं पाते हैं कि क्यों हुआ लेकिन ऐसा हो जाता
1: लेकिन
0: है,
1: कमी
0: पाई जाती है
1: जी।
0: तो जो कुछ ऐसे हैं जिनको कि आइडियोपैथिक बोलते हैं उनके ट्रीटमेंट में तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हमारा मुख्य ये है और मॉनिटरिंग है, ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख मिनिमम होना चाहिए तो 1 लाख हो गया तो ब्लीडिंग होने लगेगा, ऐसा नहीं है
1: जी।
0: देखा गया है कि 50,000 तक में ब्लीडिंग की संभावना बहुत कम रहती है, वो 5-10% इंक्रीमेंट हुआ है ब्लीडिंग का के टेंडेंसीज में, लेकिन 50,000 से नीचे जैसे आना शुरू होता है तो ब्लीडिंग की संभावना बढ़ती जाती है, 20,000 से नीचे हो जाता है ये,
1: यानी जैसे जैसे कम होती जाती है प्लेटलेट्स की संख्या खून के स्राव की अधिकता बढ़ती है,
0: हाँ बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। कारणों में इम्यूनोलॉजिकल और एडियोपैथिक कारणों के अलावा जो कुछ कारण ऐसे हैं जिस पर कि हम फोकस अभी कर सकते हैं वो है कुछ तो संक्रमण जैसे HIV है, मलेरिया है, रिकेट्सिया है, हेपेटाइटिस सी है, डेंगू, तो ये इन्फेक्शन वाले कारण हैं। और कुछ खाना पीना रहन सहन से जो रिलेटेड है कि हम फ्लूड कम लें, ठोस आहार लेने लगें, जंक फूड लेते हैं, विटामिंस माने विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी प्लेटलेट का फॉर्मेशन में कमी आती है
1: जी।
0: तो मान लीजिए कि वो हमको सही ढंग से नहीं मिल रहा है, ताजे फल, हरी पत्तेदार साग, हरी सब्जियां ये यदि हम नहीं लेते हैं तो उससे होते हैं, अल्कोहल का यूज,
1: नशीले पदार्थ,
0: मदिरा का जो यूज है यह जो है प्लेटलेट के काउंट को घटाता है और उसके फंक्शन को भी घटाता है, ये इसे जरूर स्ट्रेस देखें, ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ और बातें होती है जैसे कि लीवर डिजीज यदि किसी को है तो उसको प्लेटलेट की मॉनिटरिंग अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उसमें पोर्टल हाइपरटेंशन के कंडीशन में जो कि एडवांस्ड लीवर डिजीज कहलाता है उसमें प्लेटलेट की संख्या तो कम होती ही है, प्लेटलेट का फंक्शन भी घटा रहता है और इन केस ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो फिर प्लेटलेट चढ़ाने के बाद भी रिस्पांस बहुत ही खराब होता है।
1: क्या डॉक्टर साहब ये अनुवांशिक भी होता है?
0: अनुवांशिक भी होता है
1: जी। अंत में डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूंगा कि क्या प्लेटलेट्स की कमी क्या जानलेवा भी साबित हो सकती है?
0: जी हाँ, जानलेवा साबित हो सकती है यदि उचित समय पर उचित इलाज नहीं हो तो जानलेवा साबित हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और प्लेटलेट्स की गड़बड़ी विषय पर बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता प्लेटलेट्स में गड़बड़ी। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर RP जायसवाल और भेंटकर्ता सचिन कुमार। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी। कलाकार हैं श्रीकांत पारगांवकर।

देवताओं का हित इसी में निहित था कि भरत के अनुनय विनय को मानकर श्री राम वन से वापस न चले जाएं। अतः इंद्र सहित अन्य देवगण ने एक बार फिर सरस्वती से प्रार्थना की कि वे अपनी माया से भरत की मति फेर दें, ताकि श्री राम को लौटा ले जाने में भरत सफल न हो सकें। किंतु सरस्वती जानती थीं कि भरत की मति सुमेरु पर्वत के समान अटल है, और ये भी कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की प्रबल माया के लिए भी ये संभव नहीं कि वो भरत की मति फेर सकें। फेरना तो दूर, वो उनकी ओर देख भी नहीं सकेंगी। स्वार्थवश सब देवताओं ने प्रबल माया जाल रचकर चारों ओर भ्रम, अप्रीति और भय फैला दिया। देवराज इंद्र को ये आशंका बनी रही कि कार्य का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। उधर मुनिवर वशिष्ठ, राजा जनक तथा भरत श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए। कुलगुरु ने भी इससे पहले जनक और फिर भरत का ये प्रस्ताव निवेदित किया कि स्वयं भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं। मुनिवर ने निर्णय श्री राम पर छोड़ दिया।

सुन रहे थे रामचरितमानस गान, कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए आज की सभा में प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूप।

रेखा। 7 बजे से 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें आप सुन सकते हैं मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास, रसरंग, हिंदी वार्ता और फिल्म संगीत। 9:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर बाल मंजूषा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 10 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। 10:30 पर लोकगीत का प्रसारण किया जाएगा, कलाकार होंगी सृष्टि सुमन। 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नई फिल्मों से। 11:30 पर गुलदस्ता कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 12 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान वाणी। 12:30 पर आकाशवाणी एट 90 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता आप सुनेंगे, मुझे याद है जरा जरा। भेंट वार्ताकार होंगे श्री शंकर मिश्र नाहर और भेंटकर्ता सौरभ कुमार। 1 बजे आप सुन सकते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, कलाकार होंगे बासुकी प्रसाद यादव। 1:30 पर अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण का प्रसारण किया जाएगा। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत ईमेलों और पत्रों पर आधारित। 3 बजे आप सुनेंगे सामुदायिक गान एवं शिक्षा पाठ।

0: संध्या 5 बजे आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर लोकगीत का प्रसारण किया जाएगा। कलाकार होंगी कविता सिन्हा। 7:52 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी आप सुनेंगे। कलाकार होंगे अभय कुमार सुमन। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकते हैं। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: संप्रति वार्ता श्रूयंताम्। प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथ वार्ता। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः 4 दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य ईशा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढ़यितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा संपर्क शिक्षा पारस्परिक जनसंबंधादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरंतर प्रगतेः विषये प्रधानमंत्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शांति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च संभाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शांतिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणां एकेन प्रतिनिधिमंडलेन सह कनाडा देशस्य 3 दिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मंत्रालयेन सूचितं यत् श्री गोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000 वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतं इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 1:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय पूर्वीय मध्य प्रदेशाय विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तर पश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामी सप्त दिवस पर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रो लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां एकोत्तर शत धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सप्तभिः क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं मुंबय्याम् अपराह्णे सार्धत्रिवादने मुंबई इंडियंस दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते, ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वंद्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
0: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्स और FM 100.1 मेगा हर्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास, रस रंग, हिंदी वार्ता और फिल्म संगीत। तो शुरू करते हैं रस रंग से। शर्मिला गुप्ता की आवाज़ में सुनिए ये नाचारी।

0: श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं मौसम का मिजाज। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 24 से 27 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले दो दिन मौसम शुष्क एवं उसके बाद जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि अरवल, जहानाबाद, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय जिलों में अगले दो दिन लू हीट वेव चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत तथा दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है और पूर्वानुमान की अवधि में 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अब सुनिए, महेश वाड़े, कलाकार हैं शर्मिला गुप्ता।

श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं हिंदी वार्ता कार्यक्रम। इसमें सुनिए वार्ता आज के नाटकों में सामाजिक सरोकार। वार्ताकार हैं डॉक्टर सुधांशु शेखर झा। इस अंतराल के बाद

0: Akashvani at 90.
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: जब कोई देश दिशाहीन या भ्रष्टाचार के अधीन हो जाए तब यह समझ लेना चाहिए कि वहाँ कोई जीवंत व्यक्तित्व वाला नाटककार नहीं है। देश के प्रति नाटककार का दायित्व सबसे महान होता है। वह नेताओं का नेता होता है। वह समस्याएं उत्पन्न नहीं करता, सामाजिकों के समक्ष अपने कुशल मार्गदर्शन द्वारा नई दिशाओं का संधान करके समस्याओं का सही और अस्थाई समाधान करता है। नागरिकों को जागरूक एवं सचेत बनाता है, जो स्वाधीनता, सामाजिकता तथा प्रगतिशीलता का मूल मंत्र है। बहुत सूझबूझ के साथ सत्ता से आगे बढ़कर आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में तस्मात् सृजा परम वेदम पंचमम सार्वर्णिकम के रूप में नाट्य को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्याओं के सही समाधान का प्रतिमान उपस्थित किया था। आज के नाटकों द्वारा नागरिक चेतना को सम्यक रूप में विकसित करने में अपेक्षित योगदान नहीं किया जा सका, जिससे भारत का लोकतंत्र सही दिशा में अग्रसर होता। विशेषकर हिंदी नाटककारों का दायित्व बड़ा था। पराधीन देश में भारतेंदु और प्रसाद जैसे नाटककारों ने राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का अस्तुत्य कार्य किया था। स्वाधीनता की प्राप्ति होने पर ऐसे कितने नाटककार हुए जिन्होंने देश में रचनात्मक क्रांति उपस्थित की, सच्ची प्रगति के लिए नई प्रेरणा प्रदान की, देशवासियों को सही दिशा दिखाई, अपनी प्रतिभा तथा रचना से नागरिकों और नेताओं का मार्गदर्शन किया, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया, चुनाव को निष्पक्ष बनाने का कारगर उपाय बताया, कार्य संस्कृति को नया विस्तार प्रदान किया, समाज में फैली विसंगतियों एवं बुराइयों को समाप्त करने की कोशिश की। यदि हम हिंदी नाट्य साहित्य का विश्लेषण करें तो उत्तर सर्वथा नकारात्मक तो नहीं होगा, पर सकारात्मकता के लिए भी विशेष गुंजाइश नहीं दिख पड़ती। जब किसी कृति के एक गीत की एक ही पंक्ति संपूर्ण देश में अविस्मरणीय जागरण उपस्थित करने की अक्षुण्ण क्षमता रख सकती है, तब श्रव्य के साथ साथ दृश्य होने के वैशिष्ट्य से युक्त नाट्य साहित्य को अतिरिक्त जागरूकता का उत्कृष्ट परिचय देना ही चाहिए। क्या वंदे मातरम स्वर ने देशभक्ति की अप्रतिम प्रेरणा नहीं प्रदान की? यह प्रत्यक्ष है कि स्वाधीनता की प्राप्ति के अनंतर हिंदी में सैकड़ों की संख्या में मौलिक नाटक लिखे गए हैं, जिनमें देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक सांस्कृतिक स्थितियों को अभिव्यंजित करने का प्रयास किया गया है। सैकड़ों नाटकों का मंचन भी विभिन्न नाट्य संस्थाओं द्वारा महानगरों से लेकर गाँवों तक होता रहा है, परंतु प्रश्न है उन नाटकों द्वारा सामाजिकों को नई दिशा मिली, देश को जागरूक बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सच तो यह है कि पिछले 7 दशकों में सभी क्षेत्रों में दायित्व चेतना का ह्रास हुआ है, कार्य संस्कृति विकसित होने से वंचित रही है। इसमें संदेह नहीं कि राष्ट्र तब विकसित नहीं हो पाता जब जनता तथा सत्ता जागरूक नहीं रह जाती। देश सुरक्षित और विकसित रहे इसके लिए आवश्यक है उचित शिक्षा, जागरण, तेज और धन पराक्रम की कमी कभी न होने पाए। इनके आधिक्य और अनुकूलता से ही राष्ट्र सुरक्षित, समुन्नत और विकसित रहा करता है। सही बात बताने से कतराना न्यायोचित

0: नहीं है, फिर भी देश के सच्चे नागरिकों को, विशेषकर निश्चल नाट्य कर्मियों को तो अपना दायित्व निभाना ही है, क्योंकि बुराई को रोकने का साहस खो देना मानवता की सबसे बड़ी पराजय है। यहाँ हिंदी नाट्य लेखन के उसी दृष्टिकोण को रेखांकित करना अभिष्ट है। इधर कुछ वर्षों से धारण करने योग्य श्रेष्ठ गुणों अर्थात धर्म को राजनीति से अलग रखने की चर्चा बहुत होती रही है। चूंकि श्रेष्ठ गुणों से नैतिकतापूर्ण जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए बेईमानी की पर्याप्त गुंजाइश के लिए उन गुणों को राजनीति से अलग रखने का आग्रह साभिप्राय है। परंतु ध्यातव्य है कि सर्वविद्ध स्वप्न नाटक में गांधी जी देशवासियों को सचेत करते हैं, धर्म तो वह ताकत है जो जोड़ती है। अमर सिंह नाटक में शाहबाज खां स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि सांप्रदायिकता का गलत अर्थ लगाना बुद्धिहीनता का द्योतक है। तुम ना समझ लोगो, काजी और मुल्ला के बहकाए हुए लोगो, तुम्हारा यह ख्याल कैसा नापाक है। तुम कभी इंसान को इंसान से न मिलने दोगे। अपना पराया, धर्म की धुरी, अंजना, भाग्यचक्र, वितस्ता की लहरें, गरुड़ध्वज, विद्रोहिणी अम्बा, शक विजय, मुक्तिदूत जैसे नाटकों में धर्म और संप्रदाय के सही तत्वों पर विचार किया गया है। धर्म और संप्रदाय में ईर्ष्या, द्वेष और कटुता के बदले प्रेम, सद्भाव और बंधुत्व का भाव प्रबल रहता है। धर्म की धुरी नाटक में रामदास कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देख सभी हैं भाई भाई, काहे का यह वैर। देश में विकसित हो रही अस्वस्थ सभ्यता, अनैतिकता, उच्छृंखलता, उदंडता, पारस्परिक संबंधों की सहजता में प्रवेश कर रही अग्राह्य कृत्रिमता जैसी असद वृत्तियों से लोगों को सावधान किया है हिंदी नाटककारों ने। अस्क जी का छठा बेटा, भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना, लक्ष्मी नारायण मिश्र का राजयोग, रमेश बख्शी का तीसरा हाथी, शंकर घोष का फंदी, ब्रजमोहन शाह का त्रिशंकु, लक्ष्मी नारायण लाल का दूसरा दरवाजा, मोहन राकेश का आधे अधूरे आदि इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। चूंकि इन नाटकों में प्रयुक्त रंग भाषा जितनी अच्छी है, वस्तु संयोजन उतना उत्कृष्ट नहीं है, इसलिए इन नाटकों का भारतीय समाज पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ सका। सामाजिक सुव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आर्थिक संपन्नता अपेक्षित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्र आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर है, परंतु आय से अधिक खर्च, ऋण लेते जाने की व्याधि, अनैतिक ढंग से धन पाने की व्यक्तिगत लिप्सा, तस्कर व्यापार, सर्वत्र व्याप्त घुसखोरी, फिरौती, घोटाला, विविध प्रकार के भ्रष्टाचार जैसे घृणित कार्यों से न केवल देश की अर्थव्यवस्था डवाडोल हुई है, अपितु राष्ट्रीय चरित्र भी कलंकित हुआ है। क्रांतिकारी, परिवार के शत्रु, नई मंजिल, नए हाथ, शपथ, नई राह, सीमा संरक्षण, तस्वीर उसकी, डूबते तारे, ज्वारभाटा, जनता का सेवक, सूर्यमुख आदि नाटकों में उक्त स्थितियों का प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली है। आतंकवाद और उग्रवाद के विरोध में भी कई नाटक लिखे गए हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विजय केतु में आतंकवाद को निर्मूल करने का आह्वान है। अनेक नाटककारों ने कश्मीर, पंजाब में व्याप्त आतंकवाद को उजागर किया। मातृभूमि नाटक इसका अन्यतम निदर्शन है। कश्मीर भारत का सौंदर्य शिखर, जहाँ से गूंजता रहा देश महिमा का अमरगान, वही मनोरम कश्मीर जिसकी झील और नदी में गहराता रहा राष्ट्रीय एकता का अनंत सागर। नाटक प्राणवान प्रत्यक्ष विधा है। अन्य विधाओं की अपेक्षा नाटक दर्शकों पर तत्काल प्रभाव छोड़ता है या व्यक्तियों को नई सोच भी प्रदान करता है। जरूरत है इस विधा की सार्थकता एवं महत्व को समझने की, समाज में फैली विसंगतियों एवं बुराइयों को समाप्त करने की कोशिश एवं बदलाव की चुनौती नाटक को स्वीकार करनी चाहिए।
1: आपने वार्ता सुनी आज के नाटकों में सामाजिक सरोकार। वार्ताकार थे डॉक्टर सुधांशु शेखर झा, हिंदी वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत। अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म है परदेश। आवाज़ें अलका याग्निक, उदित नारायण, हेमा सरदेसाई और सबरी ब्रॉस की।

श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं रेल सूचना। भागलपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की सूचना रेलवे स्टेशन भागलपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार, गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर से चलकर जयनगर को जाने वाली भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 7:50 पर अपने सही समय से भागलपुर से जाएगी। गाड़ी संख्या 13016 जमालपुर से चलकर हावड़ा को जाने वाली हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 7:45 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 12368

0: 3 घंटा 7 मिनट विलंब से भागलपुर आने की संभावना है। गाड़ी संख्या 5-3-4-1-6 जमालपुर से चलकर साहेबगंज को जाने वाली जमालपुर साहेबगंज पैसेंजर, यह गाड़ी सुबह 8:37 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 2-2-3-1-1 गोड्डा से चलकर लोकमान तिलक तक जाने वाली गोड्डा लोकमान तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 8:35 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 1-3-4-0-3 रांची से चलकर भागलपुर को आने वाली वारांचल एक्सप्रेस, यह गाड़ी सुबह 9 बजे अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 6-3-4-3-1 साहेबगंज से चलकर जमालपुर को जाने वाली साहेबगंज जमालपुर मेमू, ये गाड़ी सुबह 9:15 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 1-3-4-0-9 मालदा से चलकर क्यूल को जाने वाली मालदा क्यूल इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 9:35 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 1-3-2-4-1 बांका से चलकर राजेंद्र नगर को जाने वाली बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 10:15 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। और गाड़ी संख्या 1-2-3-6-7 भागलपुर से चलकर आनंद विहार को जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 11:55 पर अपने सही समय से भागलपुर से जाएगी।
1: कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: श्रोताओं, आप सुनिए आज का इतिहास। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो आगे चलकर वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। 1915 में महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने टेलीस्क्राइब का आविष्कार किया। 1931 में अमेरिका में बाल्टिमोर ओहियो मार्ग पर पहली वातानुकूलित यात्री ट्रेन चलाई गई। 1959 में साम्राज्य दिवस का आधिकारिक रूप से नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया का 1819 में जन्म हुआ आज ही के दिन। और 1954 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल का जन्म हुआ। अब सुनिए फिल्म फूल और कांटे का ये गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत रचना है नदीम श्रवण का।

श्रोताओ, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियां। पेट्रोल डीजल फिर महंगा, जून से बस किराया भी 15% बढ़ेगा। जस्टिस मीनाक्षी राय होंगी पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस। ई केवाईसी वाले मनरेगा जॉब कार्ड ही मान्य होंगे। विक्रमशिला सेतु दूसरे बेली ब्रिज की लॉन्चिंग शुरू। प्ले ऑफ की रेस में जिंदा पंजाब और क्लासेन नंबर 4 से नीचे 600 रन वाले पहले बैटर। इसी के साथ श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
1: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट

0: 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
4: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के

0: साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमेरिका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ता ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasth Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald Trump says Iran deal, including reopening of Strait of Hormuz, largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
3: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they'll exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on

0: पेश किया है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मरीज की देखभाल में और ज्यादा सहूलियात पैदा करने और उन्हें मुस्तहकम बनाने के लिए 11 नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हुकूमत वसीदर अवामी सलाहों मशवरे के लिए VBG रामजी एक्ट 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाये कर दिया है। देही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई भी फर्दो फरीक तंजीम या कोई इदारा अगले माह की 21 तारीख तक सलाहों मशवरे के लिए जाब्तों के मसौदे पर अपने एतराजात या तजावीज पेश कर सकता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत GRAM GEct ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट MG NREGA 2005 की जगह ले ली है। इस कानून का मकसद एक माली साल में कानूनी रोजगार की जमानत 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक जाब्तों के मसौदे सेक्शन 33 और इस कानून की दीगर मौजूदा शिकों के मुताबिक वजह किए गए हैं। वजारत ने कहा है कि उबूरी शिकों के जाब्ते कौमी सतह की कायमा कमेटी के जाब्तों, मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल के जाब्ते, इंतजामी अखराजात के जाब्ते व शिकायत के इजाले केस से मुतालिक जाब्ते समय जाब्तों के मसौदे सलाह मशवरे के लिए अवामी सतह पर रखे गए हैं। नए कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेह उजरत की अदायगियों पर काफ़ी जोर दिया गया है। इस कानून में बेरोजगार भत्ते की भी गुंजाइश फराहम की गई है, बशर्ते के मुकर्रर वक्त के अंदर काम नहीं फराहम किया जाता। VBG RAM GEct 2025 इस साल 1 जुलाई से निफाज के साथ तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शुरू करने के लिए इस माह की 11 तारीख को नोटिफाई किया गया था। नई दिल्ली से अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और खित्ते में दीगर हलीफ मुल्कों के साथ फोन पर गुफ्तगू के बाद आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक मुजाकिरात हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस पेशरफ्त का ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि इस माहदे के हतमी पहलुओं और तफसीलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और जल्द ही उनका ऐलान कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इसराइल के साथ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन के लीडरों के साथ बातचीत की थी। इससे पहले ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सरकारी टेलीविजन पर बताया कि पिछले हफ्ते अमरीका और ईरान के मौकफ में कुछ तब्दीलियां आई हैं, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि इसका मतलब ये नहीं कि अहम उमूर पर समझौते हो जाएंगे। उन्होंने अमरीकियों पर मुतजाद बयानात देने का इल्जाम लगाया। ईरान 8 अप्रैल को जंगबंदी पर मुत्तफिक हुआ था और इसके बाद से वाशिंगटन और तेहरान एक तवील मुद्दती अमन मुआहदे पर बातचीत में मसरूफ हैं। वाशिंगटन में सदारती कॉम्प्लेक्स के नजदीक गोलियों के चलने की आवाज सुनने के बाद व्हाइट हाउस के नजदीक सिक्योरिटी के ताल्लुक से खौफ हिरास पैदा हो गया। इससे कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। अमेरिका की खुफिया सर्विस ने पेश आए इस वाकये के नजदीक एक मुश्तबा शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया और अफरा तफरी के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि वो इस वाकये की तफसीलात हासिल करने के बाद अवाम को जानकारी फराहम करेंगे। जमहूरिया कांगो में हुकाम ने बताया है कि मुल्क में इबोला वायरस के फैलने से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 204 हो गई है। मुल्क की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 204 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि इबोला वायरस के कुल 867 केसेस सामने आए हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के हिस्सों में सख्त गर्मी की लहर की पेशगोई की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की सूरत हाल रहने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल और उड़ीसा में गर्म और मरतूब मौसम रहने का इम्कान है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में रात में गर्मी की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज अंडमान और निकोबार, जजायर, बिहार, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में गरज चमक का इम्कान है। गुरिंदरवीर सिंह ने 10.09 सेकंड के एक नए कौमी रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ 2026 के एथलेटिक्स फेडरेशन कप में मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता। उन्होंने अपने साबिका जाति बेहतरीन रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा जो 10.17 सेकंड का था और

0: सिद्दीकी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। आज 2 मैच होने हैं, जिसमें पहला मैच दोपहर 3:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान होगा और दूसरा मैच शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत दौरे से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की इस सिलसिले में शह सुर्खी है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, भारत अमरीका आलमी अमन तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक नुमायाँ सुर्खी है, वजीर आजम ने 51,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे तकसीम किए, कहा विकसित भारत में नौजवानों का अहम रोल। अखबार ने मुल्क में जारी शदीद गर्मी से मुतल्लिक सुर्खी लगाई है, अगले चंद दिनों में दिल्ली NCR समेत मुल्क के बड़े हिस्सों में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं। अखबार प्रताप ने भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जमान RP सिंह के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि संगीन माली और इंतजामी बहरान की तरफ बढ़ रहा है पंजाब।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर SJ आज नई दिल्ली में अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम जुलाई से मगरबी बंगाल में शुरू होने जा रही है, इसमें स्वास्थ्य साथी मुस्तफिदीन को शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र SIT ने नासिक PCS जिंसी ज्यादती और मजहब की तब्दील के केस में 4 मुलजिमान के खिलाफ फर्द जुर्म दायर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शिमाली वस्ती और मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है। और एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एआई नीति बनाई जाएगी। 15वीं विधानसभा में ओबरा से विधायक रहे सोम प्रकाश सिंह की पेंशन बंद, विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश। सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी एम राय पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश होंगी। और दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में, पटना सहित दर्जन भर शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार को एआई हब बनाया जाएगा और इसके लिए जल्द ही एआई नीति बनाई जाएगी। उन्होंने पटना में दो दिवसीय बिहार एआई समिट 2026 का शुभारंभ करते हुए कहा कि एआई का इस्तेमाल बढ़ने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई आधारित विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
1: लोग कहते हैं बिहार पीछे छूट गया है, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक संरचना हो, यह हमारे नौजवान यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इस पूरे चीजों पर चर्चा हमको करनी है और एआई ऐसा सेंटर है, समिट जो आज आप लोगों ने रखा है और आगे भी आईटी डिपार्टमेंट आगे भी इसी तरह के समिट को लगातार करते रहेगा जब तक हम एआई के स्तर पर खड़ा नहीं होगा।
0: श्री चौधरी ने कहा कि एआई के माध्यम से बिहार देश के अग्रणी विकसित राज्यों में शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को एआई का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम में देश भर के एआई विशेषज्ञ, स्टार्टअप डेवलपर्स और शोधकर्ता समेत हजारों की संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में विकास के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। जहानाबाद जिले के मखदुमपुर में सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराकर उत्पादन में बढ़ोतरी लाना लक्ष्य है।
2: अभी जो योजना है, नहरों का पुनर्स्थापन भी होगा, उसमें कुछ कृषि कार्य में जो किसानों के आवागमन के सुविधा के लिए कलवर्ट बनाने हैं वो भी हम लोग बनाएंगे, और भी जो किसानों के हित के लिए है कुछ सड़क बनाना है उसको भी हम बनाएंगे, जिससे न सिर्फ सिंचाई की सुविधा होगी बल्कि कृषि उपज को बाजारों तक ले जाने में भी सुविधा मिलेगी।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने पटना सिटी में आयोजित दो दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का उद्घाटन करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की एनडीए सरकारें समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि बूथ स्तरीय कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं और उनके ही बल पर पार्टी का विस्तार हो रहा है। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ कार्य करने वाला वैचारिक संगठन भी है। इस अवसर पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद समेत कई सांसद, विधायक और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज समापन सत्र को संबोधित करेंगे। बिहार विधान परिषद में जदयू के ललन सर्राफ और भाजपा के राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को सदन का उपनेता मनोनीत किया गया है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अनुशंसा पर इन नेताओं को उपनेता की मान्यता दी है। वहीं सभापति ने संजय सिंह को सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक जबकि जनक राम को उप मुख्य सचेतक बनाया है। नीरज कुमार और रीना देवी को सचेतक मनोनीत

0: किया गया है। संसदीय कार्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 15वीं विधानसभा में ओबरा से सदस्य रहे सोम प्रकाश सिंह की पेंशन बंद कर दी गई है और सदस्यों की सूची से उनका नाम हटा दिया गया है। विधानसभा की प्रभारी सचिव पूनम सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि सोम प्रकाश सिंह 2010 में औरंगाबाद जिले के की ओबरा विधानसभा सीट से निर्दलीय निर्वाचित हुए थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहे जदयू उम्मीदवार प्रमोद चंद्रवंशी ने उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी। 2014 में पटना उच्च न्यायालय ने सोम प्रकाश सिंह के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली 28 जनवरी को पटना हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विधानसभा सचिवालय ने सोम प्रकाश सिंह की पेंशन बंद कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी एम राय पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू आगामी 4 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति मीनाक्षी उनकी जगह पर मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करेंगी। युवा रोजगार और कौशल विभाग पटना के ज्ञान भवन में कल से 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण कर नियोजक संस्थानों में आवेदन तथा स्लॉट बुक कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में मोक्ष धाम बनाएगी। इसका निर्माण ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से कराया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रत्येक शवदाह गृह के निर्माण में 22 लाख रुपए खर्च होंगे। इसका निर्माण 7 निश्चय 3 के तहत किया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि अंतिम संस्कार के 24 घंटे के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र परिजनों को दे दिए जाएंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
4: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश का दक्षिणी भाग लगातार लू की चपेट में चल रहा है, हालांकि उत्तर बिहार में नमी युक्त हवा से थोड़ी राहत है। पटना सहित दर्जन भर शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। औरंगाबाद, भभुआ और बक्सर में लू की चेतावनी जारी की गई है। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा गर्म स्थान डेहरी रहा, जहां अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कैमूर का अधिकतम तापमान 44.4, बक्सर का 43.5, शेखपुरा का 43.2, औरंगाबाद का 43.1 और गया का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के दक्षिणी भाग का मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा। दूसरी तरफ प्रदेश के उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य भागों के जिलों में मेघ गर्जन और बारिश की चेतावनी दी गई है। अररिया, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना है।
5: दिनांक 24 मई राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बक्सर, औरंगाबाद, भभुआ एवं रोहतास जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक और आर्थिक विकास में व्यापारिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पटना में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के आर्थिक विकास में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार, उद्योग जगत और समाज के बीच मजबूत साझेदारी से ही विकास को गति प्रदान की जा सकती है। प्रदेश में 11,000 संपर्क विहीन बसावटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 14,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष के तहत इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। विभाग ने राज्यव्यापी सर्वेक्षण अभियान चलाकर छूटी हुई बसावटों की पहचान की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मैच खेले जाएंगे। मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दिन का दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इधर कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। रांची में आयोजित 29वीं सीनियर नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में बिहार के विभास्कर कुमार ने चौथा स्थान प्राप्त किया। विभास्कर ने 10.39 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी की। वहीं पंजाब के गुरिंदरवीर सिंह ने 10.09 सेकंड में यह दौड़ पूरी कर पहला स्थान प्राप्त किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पटना में पेट्रोल 110 रुपये और डीजल 96 रुपये के पार। दैनिक जागरण मौसम की खबर पर लिखता है, झुलसा रही गर्मी, 40 के पार हुआ पटना सहित 13 शहरों का तापमान। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, नीतीश कुमार को मिलेगा वीवीआईपी प्रोटोकॉल, अब रनवे तक जाएगी गाड़ी। प्रभात खबर ने राज्य सरकार के निर्णय पर लिखा है, नीट यूजी में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बिहार की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा। आज अखबार की सुर्खी है, पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, पटना में 114 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। राष्ट्रीय सागर ने कृषि मंत्री विजय सिन्हा के हवाले से लिखा है, एग्री एटेक के तहत 86 लाख किसानों के निबंधन का लक्ष्य। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए AI नीति बनाई जाएगी। 15वीं विधानसभा में ओबरा से विधायक रहे सोम प्रकाश सिंह की पेंशन बंद, विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश। सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी एम राय पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश होंगी। और दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में, पटना सहित दर्जन भर शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: बिहार सरकार लेकर आई है आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल, सहयोग शिविर। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
7: सहयोग पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं। परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित कर सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
6: साथ ही सहयोग शिविर में संबंधित जानकारी हेतु निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सहयोग से सबका सम्मान, जीवन आसान।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
9: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्स और FM 100.1 मेगाहर्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नगमे नए पुराने। आरंभ में सुनिए फिल्म बैंग बैंग का ये गीत बेनी दयाल और नीति मोहन की आवाज़ों में।

0: AIR at 90।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके? ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
7: घर फिल्म का गीत सुनी है लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत रचना है राहुल देव बर्मन का।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गीत सुनिए अमिताभ भट्टाचार्य और अनुषा मणि की आवाजों में।

हंसते जख्म फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है कैफी आज़मी ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

तो बच्चों आप पूछेंगे कैसे? तो हम सब में एक प्राकृतिक चुंबक है और हम वो करते हैं जो चुंबक करती है, यानी जो खींचते हैं या जो आकर्षित करते हैं। हमारे विचार और भावनाओं में चुंबकीय आवृत्ति होती है और हम अपनी भावनाओं से अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं। इसे ऑरा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। यदि आप प्रसन्न होते हैं तो आप एक सकारात्मक फ्रीक्वेंसी से घिर जाते हैं और हर वह सकारात्मक चीज़ जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। बच्चों अगर आप प्रसन्नता महसूस करते हैं तो आप सकारात्मक चुंबकीय शक्ति बाहर भेजते हैं और अपने चारों ओर एक सकारात्मक क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं। आप ऐसे लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो सकारात्मक फ्रीक्वेंसी में हैं। इसी प्रकार जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप नकारात्मक चुंबकीय शक्ति बाहर भेजते हैं और अपने चारों ओर नकारात्मक क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं। और ऐसे नाराज़ लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो आपको और अधिक नाराज़, अपराधी, दुखी और कुल मिलाकर अत्यधिक नकारात्मक बना देती है। बच्चों एक सामान्य और वास्तविक जीवन से जुड़ा एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको ये बताती हूँ। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप अपना बिल्कुल नया साइकिल इस डर के साथ चलाते कि कहीं उसे और आपको कोई हानि ना पहुँचे, तो हमेशा उसमें कोई निशान लग ही जाता है और आप चोटिल हो ही जाते हैं। आप स्वयं से कहते हैं कि अब मैं अपनी पुरानी और टूटी फूटी साइकिल लापरवाही से चलाता था तो उसमें एक खरोच तक नहीं आई, और आज जब मैं अपनी नई साइकिल चला रहा था तो पता नहीं कैसे कहाँ से एक वाहन आया और वुम, और मेरी इतनी प्यारी और नई साइकिल में निशान लग गया। क्यों? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि आप अपनी साइकिल का नुकसान के संभावना के बारे में सोचकर डरे हुए और चिंतित थे, और आपने बिल्कुल उसी चीज़ को आकर्षित किया जो आप मन में सोच रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है बच्चों कि आप सिर्फ अपनी भावनाओं और प्रवृत्ति बदलकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आप सिर्फ अच्छा महसूस करके, सिर्फ अपने वर्तमान में प्रसन्नता महसूस करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। चाणक्य की कही बातें, आपकी भावनाएं आपका ईश्वर है। इसी वाक्य के साथ हम आज की अमृतवाणी समाप्त करते हैं बच्चों। और हम जानते हैं कि ये दुनिया चमत्कारों से घिरी हुई है। इनमें कुछ चमत्कार तो बच्चों मानव निर्मित है और कुछ प्रकृति है। हम मनुष्यों की हमेशा से सहज चाह रही है कि वह कुछ नया करे, कुछ नया खोजे। हमारी इसी सहज वृत्ति ने हमारी दुनिया को चमत्कारों का पिटारा बना दिया है। तो बच्चों चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम उन्हीं कुछ चमत्कारों की चर्चा करते हैं, और उनमें से एक है नियाग्रा फॉल यानी नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात जलप्रपातों के एक समूह से मिलकर बना है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी से निकलता है। नियाग्रा फॉल्स तीन छोटे जलप्रपातों हॉर्सू जलप्रपात यानी कैनेडियन जलप्रपात, अमेरिकी जलप्रपात और ब्राइडल बेल जलप्रपात से मिलकर बना है। इनमें हॉर्सू जलप्रपात सबसे खूबसूरत है और कनाडा की सीमा की ओर झड़ता है। घोड़े के खुर के आकार के कारण इसका यह नाम पड़ा। अमेरिकी जलप्रपात हॉर्सू जलप्रपात से 9 गुना छोटा है। ब्राइडल बेल जलप्रपात इससे भी छोटा है, लेकिन इसके आसपास छाया धुंध का झीना आवरण से इसे खूबसूरत बना देता है। नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी से निकलने वाला सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह धरती का सबसे शक्तिशाली और दक्षिण अफ्रीका के विक्टोरिया जलप्रपात के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। यहाँ एक दंत कथा प्रचलित है कि जिसने भी नियाग्रा जलप्रपात के ऊपरी छोर पर जाने का दुस्साहस किया वह जान से गया। नियाग्रा जलप्रपात से बनी झील में दुनिया के कुल जल का 10% जल एकत्र है। यह प्रपात करीब 12,000 साल पुराना है। पानी जलप्रपात से नीचे नियाग्रा नदी में गिरता है और अंटेरिया झील से सेंट लॉरेंस नदी में होते हुए अटलांटिक महासागर में समा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात से प्रति मिनट 168,000 घन मीटर पानी नीचे गहरी घाटी में गिरता है। प्रपात की इस जल शक्ति से 50 लाख हॉर्स पावर बिजली पैदा होती है। दूसरा है बच्चों नील नदी। नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी होने का गौरव प्राप्त है। नील नदी दो शाखाओं में अफ्रीका

के अलग अलग भागों में निकलती है और उसे आगे जाकर एक हो जाती है। दोनों शाखाओं में लंबी को श्वेत नील कहते हैं। यह उगांडा में विक्टोरिया झील से निकलती है। झील की छोटी शाखा नीली नील कहलाती है। यह इथोपिया में ताना झील से निकलती है। नील और इसकी सहायक नदियाँ 9 देशों से होकर बहती है। श्वेत नील उगांडा, सूडान और मिस्र से होकर बहती है। नीली नील इथोपिया से निकलकर जायरे, केन्या, तंजानिया, रवांडा और वुरंडी होते हुए श्वेत नील में मिल जाती है। नील की 6,695 किलोमीटर लंबी यात्रा भूमध्य सागर में समाप्त होती है। नील नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर काहिरा, गोडेकोरा, खार्तूम, असवान, लेहवेस, कारनाक और अलेक्जेंड्रिया है। इस नदी पर अनेक बांध भी बंधे गए हैं, जिनमें रोजियर्स, सेनार, असवान और ओवेन फॉल्स प्रमुख बांध हैं। नील नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के निवासी 5,000 से भी अधिक वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। यहाँ का औसतन जनसंख्या घनत्व 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बच्चों, आज बढ़ती जनसंख्या और कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए नील नदी से उसकी क्षमता से अधिक जल निकाला जा रहा है। यही कारण है कि सूखे मौसम में कई बार यह सागर तक भी नहीं पहुँच पाती और बीच में ही दम तोड़ देती है। जलवायु परिवर्तन से भी नील नदी बुरी तरह प्रभावित हुई है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से डेल्टा क्षेत्र में तरीय खारा पानी घुस जाता है, जिससे संबद्ध इलाके में मीठे जल की उपलब्धता कम हो जाती है। बांध बन जाने से नील के निकटवर्ती किसानों की पारंपरिक खेती भी प्रभावित हुई है। अब उन्हें अपने खेत उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पहले नदी की बाढ़ उपजाऊ मिट्टी स्वतः उनके खेतों में बिछा जाती थी। तीसरा है बच्चों, बाली। बाली इंडोनेशिया का एक खूबसूरत टापू है। इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है जो 18,000 से भी अधिक द्वीपों और टापों से मिलकर बना है। बाली उनमें से एक है। बाली एक मुस्लिम बहुल द्वीप है, पर यहाँ ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्मलंबियों की बड़ी संख्या में रहते हैं और उनके सभ्यता, संस्कृति और उत्सवों को यहाँ आकर निकट से देखा जा सकता है। बाली में संसार के सबसे खूबसूरत कई सागर तट हैं, जहाँ छुट्टियाँ बिताने दुनिया भर से लाखों पर्यटक आते हैं। यहाँ सभी आधुनिक सुख सुविधाएं तो जुटा ही दी गई है, साथ ही समृद्ध प्राचीन विरासत को भी संभाल कर रखा गया है। इंडोनेशिया आने वाले ज़्यादातर पर्यटक बाली ही आते हैं, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर है। यहाँ के धान के हरे हरे हुए खेत, मंदिर, कला, नृत्य, पेंटिंग, चमड़े की वस्तुएं और संगीत पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। बाली का इतिहास 2200 साल पुराना है, जब 2000 वर्ष ईसा पूर्व ऑस्ट्रेलिया और एशिया से लोग यहाँ आकर बसे। यहाँ के संस्कृति पर हिंदू और चीनी संस्कृति का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। बाली में रेल लाइनें नहीं हैं, कुछ तटीय सड़कों से द्वीपीय आवागमन होता है। पूरा द्वीप मूंगों की चट्टानों से घिरा है। द्वीप के दक्षिण में सफ़ेद रेतीले तटों और उत्तर और पश्चिम में काले रेतीले तटों पर समय बिताया जा सकता है। बाली ब्लास्ट नामक स्मारक को यहाँ आने वाले पर्यटक अवश्य देखने जाते हैं। चौथा है बच्चों, पीसा का झुका हुआ मीनार। बच्चों, इटली के पीसा शहर की मीनार तिरछी होने के कारण विश्वविख्यात है और आज यह पीसा की झुकी मीनार नाम से जानी जाती है। निर्माण के दौरान ही कमजोर नींव की वजह से यह एक ओर झुकने लगी थी। इस विशेषता के साथ ही यह आज भी मध्यकालीन यूरोप की एक महत्वपूर्ण इमारत है। घंटाघर के तौर पर बनी यह इमारत दूर से भारी भरकम केक की तरह दिखाई पड़ती है। इसका निर्माण अगस्त 1173 में आरंभ हुआ और लगभग 200 वर्षों तक जारी रहा। यह सफ़ेद संगमरमर की बनी है। सबसे ऊपरी 8वीं मंजिल में एक बड़ा सा घंटा लगा है। यह मीनार 10 डिग्री से ज़्यादा झुक गई है। इसकी सबसे ऊपरी मंजिल नींव के केंद्र से करीब 17 फीट आगे की ओर सरकी हुई है। इस मीनार की मजबूती के लिए कई प्रयास भी किए गए। इसे दूसरे स्थान पर भी ले जाकर पुनर्निर्मित करने की भी असफल पहल की गई। सन 1920 के दशक में मीनार की नींव में सीमेंट भरकर इसे मजबूत किया गया। इस मीनार की कुल लंबाई 186.27 फीट है। सतही मोटाई अधिकतम करीब 13 फीट और शीर्ष की मोटाई करीब 8 फीट है। इस इमारत का कुल

वजन 14,500 मैट्रिक टन है और इसमें 297 सीढ़ियाँ हैं। आरंभ में बच्चों पीसा एक साधारण बंदरगाह शहर था। यहाँ के ज़्यादातर लोग व्यापारी और सैनिक थे। व्यापार और सैन्य गतिविधियों के कारण यह शहर धीरे धीरे धनाढ्य होता चला गया। दुनिया भर में पीसा का रुतबा कायम करने के लिए स्थानीय लोगों ने मिलकर एक बड़ा गिरजा परिसर बनाने का फैसला किया। इसी के फलस्वरूप गिरजाघर और अन्य इमारतों के साथ पीसा की मीनार का भी निर्माण कराया गया, जो एक ओर से कमजोर सतही मिट्टी के कारण दक्षिण पूर्व की ओर झुकती चली गई। झुकने के साथ इसकी लोकप्रियता भी बढ़ी। आज यह मीनार प्रतिवर्ष 1 से 2 मिलीमीटर की दर से दक्षिण पूर्व की ओर झुकती जा रही है। प्रारंभ से अब तक यह 5 मीटर से भी ज़्यादा झुक चुकी है। अब हम अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाते हुए आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

0: कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाते हुए अमन, आपने जो अपने दोस्तों को सुनाने के लिए प्रेरक प्रसंग तैयार किए हैं, वो अपने दोस्तों को सुनाइए।
1: गांधी जी का आकर्षण। यह घटना उस समय की है जब गांधी जी गोलमेज परिषद के लिए लंदन गए हुए थे। लंदन प्रवास के दौरान गांधी जी सम्राट से मिलने उनके महल में गए। बहुत पहले से उन्होंने सूट बूट वाली वेशभूषा त्याग दी थी। वे केवल अपने शरीर पर घुटनों तक की धोती और बदन पर चादर का ही इस्तेमाल करते थे। अंत तक उनकी यही वेशभूषा रही। इस दौरान विदेश प्रवास में भी उनके शरीर पर केवल लंगोटी और चादर ही होती थी। सम्राट से मिलते समय भी वे अपनी इसी पारंपरिक वेशभूषा में थे। जैसे ही वे लंदन में सम्राट से मिलने के लिए महल में उनके कक्ष में पहुँचे, वैसे ही सम्राट अपने स्थान से उठ गए और कुछ कदम बढ़कर बड़े प्रेम और सम्मान से उनकी अगवानी की। इसके बाद उन्होंने गांधी जी का अतिथि सत्कार किया और उनसे बातें करने लगे। उनके विषयों पर चर्चा चली। कई विषयों पर बातें करने के बाद गांधी जी सम्राट से विदा लेकर चले गए। उनके महल से जाते ही एक निकटवर्ती व्यक्ति ने उनसे कहा, आप तो कभी भी किसी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए अपने स्थान से नहीं उठते, लेकिन आज गांधी जी के स्वागत के लिए आपने अपने इस नियम को क्यों तोड़ा? व्यक्ति की बात सुनकर सम्राट बोले, मुझे खुद भी यह समझ नहीं आ रहा। दरअसल हुआ यूं कि जैसे ही गांधी जी ने मेरे कक्ष में पैर रखा, वैसे ही मैं स्वतः खड़ा हो गया और मेरे पैर अपने आप उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ गए। उनके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण था जिसमें मैं भी बच नहीं पाया। उस समय मेरा ध्यान मात्र गांधी जी की ओर था, उनकी वेशभूषा की ओर तो मेरा ध्यान तक नहीं गया। सम्राट की बात सुनकर वह व्यक्ति दंग रह गया।
0: बहुत अच्छा प्रेरक प्रसंग आपने सुनाया अमन। सच में किसी की वेशभूषा उतने मायने नहीं रखती जितना किसी का व्यक्तित्व मायने रखता है, और गांधी जी का व्यक्तित्व सच में बहुत आकर्षक था। और आगे सुनाइए।
1: व्यावहारिक ज्ञान में अव्वल। सरदार पटेल किसानों के साथ रहे थे। उनके पिता स्वयं भी एक किसान थे। ग्रामीण जीवन को उन्होंने बेहद करीब से देखा था। वे जानते थे कि ग्रामीण लोग सरल, निष्कपट और सीधी सीधी भाषा बोलने वाले होते थे, इसलिए वो जनता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहारिक जीवन के उदाहरणों में उन्हें समझाया करते थे। वल्लभ भाई किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में किसानों ने बढ़े हुए कर देने से इनकार कर दिया था। यह देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन पर तरह तरह के अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए थे। जब इसके बाद भी किसानों ने कर देने के लिए हामी नहीं भरी, तो अंग्रेजों ने एक नोटिस जारी किया कि जो लोग बढ़े हुए कर को नहीं झुका देंगे, उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माने के साथ ही उनके घर, जमीन, पशु और बर्तन आदि जब्त कर लिए जाएंगे। यह घोषणा सुनकर सभी किसानों में भय बैठ गया। एक किसान वल्लभ भाई से बोला, यदि अंग्रेजों ने हमारे घर और पशुओं पर कब्जा कर लिया तो हमारे पास जिंदा रहने के लिए तो कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। दूसरा किसान बोला, वह स्थिति तो हमारे लिए अत्यंत कष्टदायी होगी। बढ़े हुए कर के द्वारा फिर भी हम अपने घरों और पशुओं से गुजारा तो कर सकते हैं। सभी किसान इस बात पर

0: हामी भरने लगे। किसानों को भय से डरते देख वल्लभ भाई बोले, आप सभी धीरज से काम ले, साहस बनाए रखे, अंग्रेज कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे खेतों को अपने साथ इंग्लैंड नहीं ले जा सकता। जिस प्रकार एक पागल हाथी छोटे जानवरों को कुचलने में विश्वास रखता है और शक्ति के घमंड के चलते अपनी सबसे छोटी विरोधी चींटी को अनदेखा कर देता है, पर वह नहीं जानता कि यदि यही चींटी उसकी सूंड में घुस जाएगी तो क्या होगा। उसी तरह यह अंग्रेज नहीं जानते कि यदि हम चींटी बन गए तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वल्लभ भाई की चींटी और हाथी वाली व्यवहारिक बात सुनकर किसान हैरान हो गए। वो एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, बात तो बिल्कुल सही है, जब एक नन्ही चींटी विशालकाय हाथी को धराशायी कर सकती है तो हम तो फिर भी एक जैसे इंसान हैं। वल्लभ भाई की इन्हीं बातों ने किसानों में एक नए जोश और आत्मविश्वास का संचार किया।
1: ये प्रेरक प्रसंग भी बहुत ही अच्छा था अमन, कि जब हम अगर संगठित हो जाएंगे तो बड़ी सी बड़ी बातों को भी बहुत आसानी से सरल तरीके से उसको कर पाएंगे, और कोई भी हम पर बहुत ज़्यादा दबाव बना के हमसे कोई भी काम नहीं ले सकता। इस प्रेरक प्रसंग को सुनने के बाद बच्चों अब बारी है आप सबों की प्रस्तुति की। तो आज अमन आप अपने दोस्तों को सुनाने के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं?
0: दीदी मैं कहानी लाया हूँ,
1: सुनाइए।
0: दो माली। एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे, दोनों माली थे। दोनों के पास अपने अपने बागवान थे। वे उनमें तरह तरह के फलों के पौधे उगाते थे। यही बागवान उनकी जीविका के साधन थे। उनमें से एक पड़ोसी बहुत सख्त था और अपने पौधों की जरूरत से ज़्यादा देखभाल करता था। उसे लगता था कि पौधों की अगर ठीक से देखभाल नहीं की गई तो वे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन दूसरा पड़ोसी पौधों का प्रकृति रूप से विकसित होने देने पर विश्वास रखता था। वह पौधों की उतनी ही देखभाल करता था जितना कि उन्हें आवश्यकता थी, लेकिन वह अपने पौधे के तनों और टहनियों को काट छाट ना करके अपनी मनमर्जी दिशा में बढ़ने देता था। इनसे वे स्वाभाविक रूप से विकसित होते थे। एक शाम बहुत भीषण तूफान आया जिसमें भारी बारिश हुई। तूफान ने कई पौधों को नष्ट कर दिया। अगली सुबह जब सख्त पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उसके सारे पौधे उखड़ गए और बर्बाद हो गए। वही जब दूसरा पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उसके पौधे अभी भी मिट्टी में मजबूती से लगे हुए हैं। इतने तूफान के बावजूद पड़ोसी के पौधे खुद ही चीज़ों का प्रबंधन करना सीख गए थे, इसलिए इसने अपना काम किया, गहरी जड़ें उगाई और मिट्टी के लिए जगह बनाई। इस प्रकार यह तूफान में भी मजबूती से खड़ा रहा, जबकि उस सख्त पड़ोसी ने अपने पौधों का जरूरत से ज़्यादा ख्याल रखा था। लेकिन शायद वह भूल गया सिखाना कि बुरे समय में खुद का ख्याल कैसे रखते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अभी या बाद में आपको खुद से ही सब कुछ करना होगा। जब तक माता पिता अत्यधिक सख्त होना बंद नहीं करते, तब तक कोई अपनी समझ के अनुरूप काम करना नहीं सीख पाता।
1: बिल्कुल सही सीख इसमें है कि हम तभी किसी चीज़ के बारे में उस चीज़ की अहमियत को जान पाते हैं जब उस चीज़ के बारे में हम गहरी सोच रखें और किसी की सख्ती से हम उस चीज़ के बारे में अच्छे से नहीं समझ सकते जब तक कि वो खुद हम महसूस नहीं करें कि वो हमारे लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा। और क्या लेके आए हैं आप अमन?
0: दीदी मैं कविता लाया हूँ,
1: सुनाइए।
0: गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रख आया कौन इसे आसमान की थाली में। मूंदी आँख खोली कलियों ने, चिड़ियों ने गाया गाना, गुनगुन करते भंवरों ने खिलते फूलों को पहचाना। तभी आ गई फुदक फुदक कर एक तितलियों की टोली, मधुमक्खी ने मधु रस लेकर भर डाली अपनी झोली। उठो उठो हम लगे काम पर, तब आगे बढ़ पाओगे। वे क्या पाएंगे जीवन में जो सोते रह जाएंगे।
1: जी बिल्कुल सही कहा भी गया है, जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वही पाता है। इसीलिए हमें सुबह जल्दी जगने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने नियत कामों को सही समय पर सही तरीके से पूरा कर सकें।
2: अब रितिका सुनाएगी एक कहानी। वह बहुत भला था और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। राजा को पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से भी बहुत प्यार था। वह देर तक हरे भरे पेड़ पौधों के बीच बैठता और पक्षियों की मीठी बोली सुनता। राजा के सोने का कमरा महल की पहली मंजिल पर था। कमरे की खिड़की से बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियां और सुंदर फूल झांकते और राजा इन्हें देख देख कर खुश होता। एक दिन राजा ने देखा कि कमरे की खिड़की से लगे पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया बैठी है। उसका पूरा शरीर सुनहरे रंग का है और चोंच लाल थी। थोड़ी ही देर में उस सुंदर सी चिड़िया ने मीठे स्वर में गाना शुरू कर दिया। राजा उसकी मीठी आवाज़ सुनकर खुशी से झूम उठा। उस दिन से रोज़ शाम को वह चिड़िया आती और अपनी मीठी बोली से सारे वातावरण को खुशनुमा बना देती। लेकिन जब कभी खूब बारिश या तेज़ धूप होती या फिर आंधी तूफान आता तब चिड़िया नहीं आती। जिस दिन चिड़िया नहीं आती थी उस दिन राजा का मन नहीं लगता था। एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, क्यों ना हम इस चिड़िया को अपने महल में रख लें। रानी ने ऐसा करने से मना किया लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने उस चिड़िया को पकड़वा कर उसे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। राजा उसको खूब अच्छे फल खाने को देता, उसके पिंजरे में मिठाई व पकवान रखता, लेकिन चिड़िया कुछ ना खाती। अब चिड़िया ने मीठा बोलने के बजाय ची ची करके रोना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चिड़िया बीमार पड़ गई। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए पर वे चिड़िया की बीमारी नहीं जान सके। राजा चिड़िया को ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी हुआ। राजा को दुखी देखकर रानी ने समझाया, यह चिड़िया बीमार नहीं है, बस उसे पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता। उसे तो खुले आसमान में दूर तक उड़ना अच्छा लगता है, हरे भरे पेड़ पौधों के बीच रहना अच्छा लगता है, अपने मित्र के साथ बातचीत करना अच्छा लगता है। उसे तुम्हारे सोने के पिंजरे में रहना पसंद नहीं और यही उसकी बीमारी का कारण है। राजा को रानी की बात समझ में आ गई। उसने चिड़िया को पिंजरे से आज़ाद कर दिया। चिड़िया खुशी खुशी उड़कर चली गई। अगले दिन राजा की नींद खुली तो देखा कि वह चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई मीठे सुर में गा रही है।
1: बच्चों, आप सबों की प्रस्तुति के बाद अब वक्त हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी के आज के अंक का। तो आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी के आज का ये अंक।

0: नया जोश, नया उमंग और ढेर सारे नए इरादों के साथ एक बार फिर से हाजिर है आपके साथ बाल किलकारी के नए एपिसोड में। ढेर सारी मौज मस्ती और धमा चौकरी से आप सभी श्रोताओं के दिलों पर राज करने के लिए हम हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं।
1: सुप्रभात बाल श्रोता सब, अपना सभ्य बाल श्रोता के बहुते बहुते स्वागत छे आपनों के इस सुंदर आरो अनोखा सा रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी के अंक 302 मा आपनों सभ्य बाल मित्र के तहे दिल सा स्वागत करे छी। आरो आज के इस कार्यक्रम के साथ है हम मछी के अपनो सभ्य बाल मित्र के प्यारी रेडियो साथी स्वाति आरो अपनों के साथ छकाए अपनों के रेडियो साथी
0: ऋषि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी बाल श्रोता स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और ढेर सारी मौज मस्ती के साथ आज भी तैयार होंगे आज के ज्ञान और मनोरंजन से अपने स्पेशल संडे को और भी स्पेशल बनाने के लिए। हंसी खुशी के संग ज्ञान की फुहार, बच्चों का अपना रेडियो संसार,
1: बाल किलकारी बाल किलकारी। अरे अरे रुको भैया रुको, आज फेरू तो नमस्कार का नमस्कार बोल लो।
0: अरे स्वाति, तुम मेरे उच्चारण पे मत जाओ, तुम मेरे भावनाओं को समझो। और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो।
1: हमरा तक खुबे मजा आबे छै तोरा चिढ़ाए में। अरे भैया, पिछलका कार्यक्रम मता कार्यक्रम के जगह कार्यक्रम बोली देलो स्लो।
0: अरे स्वाति, वो तो मेरा स्टाइल है ना, और हाँ वो जल्दी जल्दी में थोड़ा सा हो भी जाता है।
1: हाँ हाँ, उतना सब भे जाने छे कि तो एकदम में बुद्धू छो।
0: तो हमरा गलती पर पूरा दुनिया के सामने हंसी उड़ावे छे?
1: काहे नहीं उड़े भाई मजाक हम तोरा, बहन के तक कामे हो छे भाई के परेशान करना।
0: अच्छा अब मैं तुम्हें बताता हूँ स्वाति, उस दिन मेरे बैग से किसने टॉफी खाई थी? मुझे पक्का यकीन है तुमने ही टॉफी खाई होगी।
1: कौन चॉकलेट? हम तोरा कोनो चॉकलेट के नहीं जाने छियो।
0: अच्छा मुझसे होशियारी, सच सच बता दो वरना मैं मम्मी से कह दूंगा कि कल तुमने स्कूल में झगड़ा किया था।
1: हर बार तो मम्मी रो धमकी दई छो। हाँ हाँ हम्मी खेल छलिए यू चॉकलेट, अब तो मम्मी का नहीं कही दियो ये सब।
0: हाँ अब आई ना स्वाति लाइन पर और हंसो मुझ पर, मजा आ गया मुझे तो।
1: हाँ हाँ सॉरी ऋषि भैया, अब हम तोरा कभी मजाक नहीं उड़ेबा।
0: अरे स्वाति नाराज मत हो, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक मस्ती कर रहा था। लड़ाई तो होती रहती है लेकिन सच बताऊं, अगर तुम एक दिन बात ना करो तो घर और मेरा मन बहुत शांत शांत लगता है, मुझे तो मन ही नहीं लगता है।
1: हमरो भी अच्छा नहीं लगा छे भैया।
0: हाँ स्वाति, यही तो होता है भाई बहन का प्यार, थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी शरारत और ढेर सारा अपनापन।
1: हाँ भैया एकदम सही बात कह लो। एकरे लता आए हम सब वर्ल्ड ब्रदर्स डे, यानी भाई बहन आरो भाई भाई के प्यार अपनापन आरो आए छकाए वर्ल्ड ब्रदर्स डे। ई दिन हमरा जीवन में भाई के महत्व के याद कराबे छै। भाई केवल परिवार के सदस्य नहीं होय छै बल्कि उ हमरा सब के नीक दोस्त, हमरा सुरक्षा कवच आरो सुख दुख के साथी होय छै। बचपन में साथ खेलना, लड़ाई करना, फेरो कुछ देर बाद मान जाना, ये सब तो भाई बहन के रिश्ता के खास बनावे छै। हाँ अरे ऋषि भैया, अंगिका में कहलो जाय छै भाई रहे ता हिम्मत रहे, दुखो मा मुस्की खिले, मतर की भाई अगर साथ रहता है ता हर कठिनाई आसान लगता है। तब बाल मित्र सब वर्ल्ड ब्रदर्स डे के अवसर पर हमरा सबे के अपने भाई के प्रति प्रेम सम्मान अपनापन व्यक्त करना चाहिए। तनी तनी गो बात पर नाराजगी नहीं होना चाहिए, रिश्ता में मिठास बनाए रखना बहुत जरूरी छे।
0: हैप्पी ब्रदर्स डे। तो स्वाति मेरा गिफ्ट कहाँ है?
1: कौन गिफ्ट हो भैया?
0: अरे आज तो ब्रदर्स डे है ना, इसलिए मैं अपना गिफ्ट मांग रहा हूँ।
1: हाँ हाँ वो गिफ्ट तो मम्मी के पास छे।
0: अच्छा ऐसा क्या है गिफ्ट में जो तुम माँ के पास रख के आई हो?
1: आज के मम्मी के मार।
0: अच्छा जी, तो तुम मुझे आज भी मार लगवाओगी?
1: नहीं भैया, हम मता मजाक कर लो छिए। तोरो गिफ्ट हम्मा तैयार करिलो छिए और उ गिफ्ट घरो पर रखलो छै। घर जइबो त तोरा मिली जतो, ठीक नी?
0: अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। तो आइए दोस्तों, अब कार्यक्रम में इस सुंदर से गीत को सुनते हैं इस खास मौके पर। तो आइए सुनते हैं इस खास गीत को।

श्रोता बहुते सुंदर छलै। आशा करै छियै कि बाल श्रोता सभे का पसंद आइलो होतै। साथी सब, कल फुटबॉल प्रेमी ला बहुते बड़का दिन छिकै। कहिना कि कल छिकै विश्व फुटबॉल दिवस।

0: खेल प्रेमी सब खातिर बहुते खास दिन छे। ई दिन फुटबॉल खेल के महत्व, एकता आरो खेल भावना के सम्मान देवे खातिर मनेलो जाय छे। फुटबॉल दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक मानलो जाय छे। छोटे छोटे बच्चा से लेकर जवान तक सभी ई खेल का बहुते पसंद करे छे।
1: विश्व फुटबॉल दिवस हमें यह संदेश देता है कि खेल जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल में हमें स्वस्थ रहने, अनुशासित बनने और सकारात्मक सोच रखने की प्रेरणा देता है। इस दिन हमें खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को खेलों से जोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। फुटबॉल दिवस पर अगर हम महान फुटबॉलर लियोन मेसी की चर्चा न करें तो शायद ये दिवस पूरा न हो। फुटबॉल की दुनिया में लियोन मेसी का नाम बहुत सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। उन्हें दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। अपनी मेहनत, प्रतिभा और शानदार खेल प्रदर्शन के कारण उन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों पर खास जगह बनाई है। लियोन मेसी बचपन से ही उन्हें फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। छोटी उम्र से ही उनके खेल को देखकर लोग उनकी प्रतिभा को पहचानने लगे थे, लेकिन बचपन में उन्हें शरीर की वृद्धि से जुड़ी एक बीमारी हो गई थी जिसका इलाज काफी महंगा था। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उनके परिवार ने उनका साथ नहीं छोड़ा।
0: लियोन मेसी ने बहुते पुरस्कार जीतलो छले। ओकरा कई बार बेलन डी आरो पुरस्कार मिललो छे, जे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के देलो जाय छे।
1: विश्व फुटबॉल दिवस के अवसर पर लियोन मेसी जैसे महान खिलाड़ियों की जीवनी हमें मेहनत, संघर्ष और सफलता की प्रेरणा देती है। उनका जीवन हर युवा खिलाड़ी के लिए एक मिसाल है।
0: तो चलो अब कार्यक्रम में आगू बढ़े छे और अब एगो अंगिका कहानी का सुने छे, जेकरो नाम छिकाय बिरजू आरो मधुमक्खी। ई कहानी के लेखक छिकाय सत्यनारायण मंडल जी और वही नई कहानी का सुनाय रहलो छे।
1: तो आइए इनके द्वारा इस सुंदर सी कहानी को सुनते हैं।
2: कहानी के शीर्षक छिके बिरजू आरो मधुमक्खी। जादोपुर गाँव के पास एक ठो बगीचा छिले। ओकरा मा आम, अमरूद, लीची समेत बहुते तरह के फलों के गाछ छले। बगीचा सड़कों के किनारा में छले। आमी के मौसम मा ते जे भी आदमी हो बगीचा के बगलों से गुजरे छले, गाछी मा आम देखी ओकरो सनी के मन ललची जाय छले। गांव के कुछ बच्चा सनी खेलता खेलता हो बगीचा के पास चलो जाय छले। कुछ बच्चा सनी आमी गाछी में ढेला मारा लगे छले। हो बगीचा के जोगवारी करे लेली एक ठो जोगवारा भी वहां घूमता रहे छले। हो जोगवारा जब बच्चा सनी का रपेटे छले तो सब भागी जाय छले। एक दिन हो जोगवारा गाछी के नीचे खटोली पर आराम करी रहलो छले। वो खरिये गांवों के एक जगह बच्चा सनी गेले और सड़कई पर से आमी गाछी में ढेला मारना शुरू कर देलके। एक ढेला जाकर जोगवारा के नौका पर गिरले। जोगवारा तो दर्दों से बिलबिला उठले। वे बच्चा सनी के देखी कर रपेटलके। बच्चा सनी गांव दिस भागले। ओकरा सनी के पीछू पीछू जोगवारा भी चलो गले। जोगवारा भी गांव के छले, यही लीली में बच्चा सनी के चिन्हे छले। वे सब भाई घरों में जाए जाए का बच्चा सनी के माए बापा के चेताए दिलके और कही दिलके कि जो दोहराए का बच्चा सनी गाछी में ढोला मारे जाता हूँ तो ठीक बात नहीं होता। सभी गाँव वाला सनी ने अपना अपना बच्चा का खूब डांट फटकार कर लके और बगीचा दिस जाए सब मना कर लके। दो चार दिन तक बच्चा सनी शांत रह ले। बच्चा सनी के हो जेरा मा एक बच्चा छिले भारी शैतान। ओकरा नाम छिले बिरजू। वे गाम है के दूसरा टोला के बच्चा सनी के एक जेरो तैयार कर लके और सबका बगीचा के पास ले गले। पहले वे जोगवारो के टीवी लेलके की किन्ना छे। ओकरो बाद बगीचा के दूसरो तरफ जाकर गाछी में ढेलो मारना शुरू कर दिलके। ओकरा सनी कहे पते नहीं छले कि एक ठो गाछी में मधुमक्खी के बड़का छत्ता छे। बच्चा सनी के एक ढेलो जाकर मधुमक्खी के छत्ता में लगी गले। एह ओकरो बात मधुमक्खी सनी बच्चा सनी पर झपटले। कुछ बच्चा तो भागी गले, मतलब की बेजू समेत तीन बच्चा के मधुमक्खी सनी ने घेरी ललके। तीनों बच्चा के मुंह में जो मधुमक्खी सनी ने डंक मारलके तो तीनों के मुंह फुलिक हो गले कुप्पा। जे बच्चा सनी भागी गले वे सनी ने सौंसे गांव में जाकर हल्ला कर दिलके। सभी आदमी अपने अपने बच्चा सनी का खोजा लगले। बिरजू और ओकरा दूटा साथी जो बेहोश हो गए छे रास्ते में, ओकरो सनी के माए बाप और गांव वाला सनी अले और तीनों के मुंह पर पानी के छिट्टा मारी का होश मिलान लगे। तीनों के हालत देखी का तो ओकरा माए सनी छाती पीटी पीटी कांगा लगले। तखनिये गांव के मुखिया जी अपना जीप लेकर ही अले और तीनों बच्चा के डॉक्टर कर ले गए। तीनों के ठीक होए में एक सप्ताह से भी ज्यादा लग गए। है कहानी से सीख मिले छे कि अपना माँ और बाबू समेत सभी बड़ो आदमी सिनी के कहना मानना चाहिए, दूसरा के कोई भी चीज के नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और केकरो कोई भी चीज जबरदस्ती ले के कोशिश नहीं करना चाहिए। बीजू आरु ओकरो साथी सिनी जो बड़ो आदमी सिनी के बात मानी लेती है तो ओकरो सिनी के हालत नहीं होती है।
0: वाह, बहुत सुंदर आरो मजेदार कहानी छले। लेकिन ई कहानी सा ई सीख मिलाई छै कि दूसरो के चीज का नुकसान करना बहुत गलत बात छै आरो यही गलती बिरजू ना करल कुछ ले। आशा करबै कि साथी सब भी बिरजू के तरह ई गलती कभियो नहीं करते। हमरा त कहानी बहुत अच्छा लगलै।
1: मुझे भी ये कहानी बहुत पसंद आई।
0: त चलो अब कार्यक्रम का आगे बढ़ाबै छियै आरो बुलाबै छियै अपनो प्यारा सा नन्हा उस्ताद का।
1: तो आइए अब कार्यक्रम में नन्हे उस्ताद की बातों को सुनते हैं और इस भीषण गर्मी से बचने के लिए उपाय को जानते हैं। तो नन्हे उस्ताद आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जल्दी से अपने बाल श्रोताओं को गर्मी से बचने के लिए उपाय बताइए।
3: वो दोस्तों, मैं हूँ आपका नन्हा मुन्ना उस्ताद। दोस्तों, गर्मी बहुत बढ़ चुकी है जिसके कारण हमारे प्यारे प्यारे बाल श्रोता बहुत परेशान हो गए हैं। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए गर्मी से बचने के लिए ढेर सारे उपाय लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस तड़कती बढ़ती गर्मी से बचने का उपाय जानते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो वैसे ही सूरज का तापमान 45 डिग्री से ऊपर जाने लगता है और हमारी हालत खराब होने लगती है गर्मी के कारण। गर्मी में शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन पता है क्या है दोस्तों? डिहाइड्रेशन। ये शब्द जितना सुनने में भारी लगता है वो इतना ही खतरनाक होता है। डिहाइड्रेशन पानी की कमी के कारण होती है जिसके वजह से हमें चक्कर आने लगते हैं, लू लग जाता है। इससे बचने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना चाहिए। और बाजार में अभी तो गर्मी वाले बहुत सारे फल आ चुके हैं। लू से बचने के लिए कच्चा आम का पन्ना, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, बेल का शरबत, ये सब चीजें हमें गर्मी से बचाती हैं और हमारे शरीर को ठंडा रखती है और हमें गर्मी का प्रभाव नहीं सहने देती। और तो और हमें खरबूजा, तरबूज, खीरा, ये सब हमें खाना चाहिए क्योंकि ये सब फल हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा बनाए रखती है। हाँ दोस्तों, दोपहर के समय धूप बहुत तेज रहती है। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले और घर में ही इंडोर्स गेम खेले। और दोस्तों, अगर आपको जरूरी काम से बाहर जाना पड़े तो आप हल्के रंग के सूती कपड़े पहनकर जाएं, साथ में छाता और पानी का बोतल और रुमाल लेकर जाएं। समय समय पर पानी पीते रहिए। और हाँ दोस्तों, घर को ठंडा रखने के लिए हमें अपने बालकनी में पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती रहे और घर का तापमान भी ठंडा रहे। और ये सब करने के बावजूद भी लू के लक्षण दिखाई दे जैसे तेज सिर दर्द, चक्कर आना, जी मचलना और अत्यधिक शरीर का जलना, ये सब लू लगने के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें ORS का पानी लेना चाहिए और ज्यादा तबीयत खराब होने पर डॉक्टर से मिलना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अपने साथ साथ अपने आसपास पशु पक्षियों का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है और उनके लिए अपने छत पर किसी कोने में पानी का एक मटका या कटोरा रखना चाहिए और उनके खाने के लिए थोड़ा अनाज रखना चाहिए ताकि वह अपनी प्यास और भूख मिटा सके। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इस गर्मी के मौसम में हल्का खाना खाना चाहिए, ना कि पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मैगी, चाउमीन, पिज्जा। और ये सब खाने से हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, इन सभी बातों का आप ध्यान रखकर इस गर्मी को एंजॉय करें और अपना ख्याल रखें, खूब खेलें और कूदें, मस्ती करें। अब अपने नन्हे उस्ताद को दीजिए इजाजत।

0: वाह नन्हे उस्ताद, आपने के जितना उपाय छलाए सभ्य बढ़िया छलाए, आरो सभ्य उपाय गर्मी से बचाए ला उपयोगी छलाए। आशा करे छिया कि बाल श्रोता सब नन्हे उस्ताद के बात का मानता है, आरो ई गर्मी से बचाए ला सभ्य काम करता है। कहना कि गर्मी भी तो बहुते छै नी, तस बाल श्रोता सब गर्मी के साथे साथे हमरसनी के मस्ती न रुकना चाहिए, आरो बहुते सुंदर गीत छलै। आशा करे छिया कि बाल श्रोता का पसंद आइलो होता है।
1: तो आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब कार्यक्रम में कुछ नया और हट के करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको भी आएगा मजा और मस्ती होगी डबल।
0: ऐसा की होए बला छै ऋषि भैया?
1: आज हम लोग खेलने वाले हैं एक खास गेम को, जिसका नाम है शब्दों का उल्टन पुल्टन। तो तुम तैयार हो ना स्वाति इस गेम को खेलने के लिए?
0: हाँ भैया, हम तो बिल्कुल तैयार छिए। तो जल्दी शुरू करो ये गेम का, देरी कोंची रो। हमू तो जाननी है कि ये गेम में आखिर होए की छै।
1: अरे स्वाति, गेम बहुत ही सिंपल है। मैं एक शब्द दूंगा और उसे उल्टा करके बोलना होगा। अगर तुमने सारे सही जवाब दिए तो तुम्हें मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट।
0: सरप्राइज गिफ्ट? अरे वाह भैया, तब तो हमरा मजे आवे जते। तो अब जल्दी जल्दी गेम का शुरू करो।
1: गेम का पहला शब्द है जो बहुत ही आसान है, शब्द है नयन, और इस शब्द को तुम उल्टा करके बताओ।
0: भैया नयन को चाहे सीधा बोले या उल्टा बोले, नयन का तो उल्टा शब्द नयन ही होता है।
1: अरे वाह स्वाति, तुम तो बहुत ही होशियार हो। तो मेरा दूसरा शब्द है अमलदार, और अब इसे उल्टा करके बताओ।
0: इसका उल्टा हुआ र दाल मा आ। हाँ, र दाल मा आ।
1: अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। अब तीसरा शब्द है पाठशाला।
0: इसका उल्टा हुआ
2: पाठशाला ला सा था पा।
0: हाँ, ला सा था पा।
1: वाह क्या बात है स्वाति, तुम तो इस गेम में बहुत ही स्मार्ट हो। अब आखिरी और सबसे मुश्किल शब्द है, अगर ये बता दिया तुमने तो सरप्राइज तुम्हारा, शब्द है मानसरोवर।
0: मानसरोवर, ये तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, मैं इसका भी जवाब दे दूंगी। मानसरोवर का है
2: र वो रो वो,
0: अरे नहीं नहीं गलत हो गया। हाँ सुलझा लिया मैंने, रव रो सा न मा। मानसरोवर का उल्टा होता है रवरो सनमा।
1: अरे वाह स्वाति, मुश्किल शब्द को भी सुलझा दिया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग।
0: अच्छा भैया, तो अब हमरा सरप्राइज गिफ्ट दा।
1: तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा अगले रविवार को।
0: भैया हमरा साथ तू चीटिंग कर लो ना, हमरा चाहिए, हमरा चाहिए।
1: अरे स्वाति, तुम बच्चे की तरह क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट दूंगा ना, पर अगले रविवार को, पक्का।
0: पक्का प्रॉमिस नहीं भैया?
1: हाँ पक्का प्रॉमिस। तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़े।
0: कार्यक्रम में अब आगू बढ़ी का कहाँ जाए भाई भैया, अब बाल श्रोता का विदा कहे के समय हो गेलो छै। तब जल्दी से सुविचार पढ़ो और बताओ कि हमरो आज के सुविचार की छै।
1: आज का सुविचार है, समुद्र की लहरें केवल शोर नहीं करती, वे हमें साहस और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। इस सुविचार का अर्थ है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता पूरे जहां में शोर मचा दे।
0: वाह भैया, बहुत सुंदर सुविचार छलै। आशा करे छिए कि बाल श्रोता का पसंद आइलो।

0: है।
1: जी हाँ साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम की स्तंभ का सिलसिला यहीं खत्म होता है।
0: तो साथी स्नी एकरे साथे अब कार्यक्रम यहीं समाप्त हो छे। तो आशा करे छे कि आज के कार्यक्रम में खूब मन लगलो होता है और खूब एंजॉयमेंट के साथे अपना के कार्यक्रम का सुन लो होबो। तो अब अपना के कार्यक्रम कैसनो लगला है जरूर बताइयो। आशा करे छे कि मजा ता आइले होता है। तो साथी सब अपना अपना ख्याल रखियो और प्यारा प्यारा मैसेज जरूर भेजियो।
1: जी हाँ दोस्तों, तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए। आप अपना कीमती मैसेज हमें जरूर भेजें, क्योंकि हमें आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का बेसब्री से इंतजार रहता है और आपके मैसेज को पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो जरूर आप अपना मैसेज भेजें। आप अपना मैसेज हमारे मोबाइल नंबर के जरिए भेज सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7542029695। तो अपना मैसेज याद से भेजें। तो साथियों, अब मिलेंगे आपसे इसी कार्यक्रम में हर रविवार सुबह 10 बजे। इसी जोश और उमंग के साथ आपके चेहरे की मुस्कान को बरकरार रखने के लिए हम फिर से हाजिर होंगे।
0: अब अपना ख्याल रखियो बाल श्रोता स्नी, खूब मन सब पढ़ियो लिखियो। ता अब अपनो प्यारी रेडियो दोस्त स्वाति
1: और अपने प्यारे रेडियो दोस्त ऋषि को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी जोश और मुस्कान के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
2: बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।

बाल किलकारी के आज के इस अंक के साथ ही बच्चों अब वक्त हो चला है आप सबों से विदा लेने का, तो ढेर सारे सुभिक्षाओं के साथ हम लेते हैं विदा। जय हिंद बच्चों।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल मंजूषा, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है लोकगीत, कलाकार हैं सृष्टि सुमन, इनकी आवाज में सुनिए ये देवी गीत।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

AIR at 90. अब सुनिए देवी गीत, कलाकार हैं सृष्टि सुमन।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें।

सुन रहे थे लोकगीत, कलाकार थी सृष्टि सुमन, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं और वक्त है कार्यक्रम नई फिल्मों से के तहत नई फिल्मों के संगीत को सुनने का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म नाम के इस गीत से, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए, बने रहें आकाशवाणी भागलपुर के संग।

0: के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं फिल्म बी हैप्पी का गीत सेंजुती दास और जतिंदर सिंह की आवाज में।

अभी आपने सुना फिल्म बॉर्डर टू का गीत सोनू निगम और पलक मुछाल की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर ने। धुन बनाई थी अनु मलिक और मिथुन ने। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल

Akashvani at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कंपेयरिंग पर आधारित फिल्म संगीत, शीर्षक है गुलदस्ता। गुलदस्ता कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीनू का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कोई शाख जुदा हो जाए गर दरख्त से तो पत्तों की शबनमी बूंदें भी आंसुओं में तब्दील हो जाती हैं, और फिर वही आंसू जब जज्बात के सूखे दामन को भिगो जाए तो फिर सिसकते अल्फाज भी क्यों ना दिल की आवाज बन जाए। इसलिए दोस्तों, जब आंसुओं में भीगी मेहंदी हाथों में रची हो और कलाइयों से लिपटी चूड़ियां भी गम की ठोकर से टूट टूट कर कम ही बची हों, तो खुशियों की दुल्हन का हर श्रृंगार भी आंसुओं में धुल जाता है, और जिसे दिल कहना न भी चाहे वो जुबां से निकल ही आता है।

जिस दहलीज को छोड़ पिया घर चली थी, उसी आंगन की सबसे हंसी और खूबसूरत कली थी। चली थी जिस आंगन को सजाने, वही आज वीरा है। फिर क्यों ना दिल यही कहे कि इससे तो कुंवारी भली थी।

कहते हैं दोस्तों कि हो मोहब्बत गर दिल में तो दूरी कोई मजबूरी नहीं, आंखों से आंखें हों बावस्ता तो मिलना भी कोई जरूरी नहीं। इसलिए कोई ये कहे कि आंखें हों पास पास तो जिंदा है हर एहसास, थभी है चाहत में जिंदा पहनकर खुशियों या फिर गम के लिबास।

दोस्तों, दिल जिसे चाहता है उसकी हर बात पर वो अपना इख्तियार समझता है, और इसलिए मोहब्बत के शोहबत में आते ही दिल उस बच्चे की तरह हो जाता है जिसे अपनी कोई भी चीज़ किसी को देना गवारा नहीं होता। फिर यहाँ तो बात दिल की है, जिसके एहसास का एक कतरा भी बिखर जाए तो महसूस होता है कि दिल गया, दिलवर गया। दिल गया, दिलवर गया, सुकून के साथ चैनो करार गया। गैरों पे जो नज़र उसने डाली, मानो वफा के साथ मोहब्बत और प्यार गया।

दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में कई रास्तों से इंसान गुजरता है। उन्हीं में से एक रास्ता मोहब्बत के गलियारों से भी होकर गुजरता है, जहां दिल के आंगन में फूल खुशियों के भी खिलते हैं और जहां सुए चमन में गम के भी कांटे मिलते हैं। दिल देकर दर्द पाना भी फितरत है जिसकी, वही हसरत मोहब्बत की पनाहों में भी मिलते हैं।

कहते हैं दोस्तों कि दिल वो आईना है जिसमें कोई अक्श तभी उभरता है जब मोहब्बत के गलियारे से कोई महबूब गुजरता है। लेकिन जब उसी महबूब का अक्स दिल के आईने पर पड़ी बेवफाई की धूल से धुंधली होने लगे और एहसास हो हाथ से हाथों के छूटने का, फिर तो आवाज़ आती ही है एक दिल रूपी शीशे के टूटने का। इसलिए ये कहना मुनासिब ही होगा कि जो एक नज़र के जुम्बिश से सब दिल की बस्ती लूट गया, जो एक नज़र के जुम्बिश से सब दिल की बस्ती लूट गया, वो जिससे आंखें चार हुई और हाथों से सागर छूट गया। दिल उसका भी था मेरा भी है, फर्क बस इतना ही रहा कि वो पत्थर था जो साबुत है और ये शीशा था जो टूट गया।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम गुलदस्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विज्ञान वाणी, प्रस्तुत करता है सौरभ कुमार। लेकिन पहले ये छोटा सा अंतराल।

0: AIR at 90.
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
3: और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान वाणी में। कार्यक्रम के आज के अंक के साथ हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो दोस्त पीयूष आनंद। श्रोताओं आप तो जानते ही हैं कि विज्ञान वाणी कार्यक्रम में हम बातें करते हैं विज्ञान के विभिन्न तकनीकों विभिन्न आविष्कारों के बारे में। विज्ञान जगत की हलचल पर आधारित हमारे कार्यक्रम का स्तंभ होता है विज्ञान समसामयिक की प्रमुख वैज्ञानिकों के योगदान और उनके प्रेरणादायी जीवन के बारे में आपको बताने के लिए हमारा कार्यक्रम का स्तंभ होता है विज्ञान रत्न और आप सभी के ज्ञान को परखने और आप श्रोताओं से जुड़ने का हमारा स्तंभ होता है माइंड टेस्ट। तो श्रोताओं इंतजार किस बात का, आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला और सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या कुछ हलचल रही इस हफ्ते विज्ञान की दुनिया में हमारे कार्यक्रम के स्तंभ विज्ञान समसामयिकी के तहत। भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को 2026 का प्रतिष्ठित विस्ले अवार्ड प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें इंडेंजर्ड पक्षी इंडियन स्कीमर के संरक्षण में उनके अद्भुत योगदान के लिए दिया गया है। श्रोताओं आपको बता दें कि इंडियन स्कीमर एक बेहद अनोखा और संकटग्रस्त पक्षी है जिसकी पहचान इसकी चमकीली नारंगी चोंच और पानी की सतह पर स्किमिंग करते हुए मछली पकड़ने की खास तकनीक होती है। भारत में इस पक्षी की 90% से अधिक वैश्विक आबादी पाई जाती है। भारत ने अपने

0: में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया जब स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम 1, जो देश का पहला निजी तौर पर बनाया गया ऑर्बिटल रॉकेट है, इसका उद्देश्य दुनिया के तेजी से बढ़ते बाजार में किफायती और ऑन डिमांड सैटेलाइट लॉन्च सेवाएं उपलब्ध कराना भी है। श्रोताओं, अभी हमने जाना कि क्या कुछ हलचल रही विज्ञान के क्षेत्र में इस सप्ताह विज्ञान समसामयिकी के तहत। अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ विज्ञान रत्न का। श्रोताओं, विज्ञान जगत अपने वैज्ञानिकों के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। ये वैज्ञानिक जो नए नए प्रयोग नए आविष्कारों के द्वारा पूरी दुनिया को विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रेरणादायी जीवन को बताने का ही स्तंभ होता है विज्ञान रत्न। श्रोताओं, विज्ञान रत्न में आज हम जानेंगे महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के प्रेरणादायी जीवन के बारे में। तो आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। स्वर है सचिन कुमार का।
1: थॉमस अल्वा एडिसन आज जो हमारे कमरे में विद्युत बल्ब प्रकाश दे रहा है, उसके आविष्कार का श्रेय महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है, जिन्होंने दुनिया को रोशनी का तोहफा दिया। विद्युत बल्ब के जनक के नाम से विख्यात थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो राज्य के मिलन नामक स्थान पर हुआ था। थॉमस अल्वा एडिसन अपने पिता सैमुअल ओगडेन एडिसन और माता नैन्सी मैथ्यू इलियट के सबसे छोटे पुत्र थे। उनका पैतृक परिवार डच था, जिनका पुराने समय से ही उपनाम एडिसन था। 4 साल की आयु तक एडिसन बोलना नहीं जानते थे। स्कूल में एडिसन का दिमाग अत्यंत भ्रमित रहता था और उनके शिक्षक उन्हें व्याकुल कहकर बुलाते थे। कुछ महीनों बाद ही उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। बाद में उनकी माता ने ही उनको घर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। आगे चलकर एडिसन ने कहा भी था, मुझे योग्य बनाने में मेरी माँ का ही हाथ है। वे मेरे विषय में इतनी निश्चित थीं कि मुझे लगा कि मुझे कुछ करना होगा ताकि उन्हें निराश नहीं होना पड़े। बचपन में ही किसी संक्रमण के दुष्प्रभाव से एडिसन के कान में कोई बीमारी हो गई, जिससे उन्हें सुनने में भी तकलीफ होने लगी थी। एडिसन को शुरू में मंदबुद्धि बालक समझा जाता था, परंतु लगातार मेहनत, अत्यधिक धैर्य, बेमिसाल याददाश्त, जिज्ञासु प्रवृत्ति और अद्भुत कल्पना शक्ति के बल पर एक दिन उन्होंने अपने आविष्कार से पूरी दुनिया को रोशन कर दिखाया। सन 1854 में पारिवारिक व्यवसाय में गिरावट आने के कारण उनका परिवार पोर्ट ह्यूरोन मिशिगन आ गया, जहां उन्हें जीवन के कुछ खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त हुए। यहाँ एडिसन ने रेलगाड़ियों पर अखबार बेचने का काम शुरू किया। अपनी आय वृद्धि करने के लिए वे फल और सब्जियां भी बेचा करते थे। इसके बावजूद भी वे निरंतर अध्ययन और अनुसंधानों में लगे रहे। अपने काम करने के बाद बचे हुए समय में वे प्रयोग और परीक्षण करते थे। एडिसन केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक सफल उद्यमी भी थे। इच्छा शक्ति का उपयोग करके उन्होंने अपने व्यवसाय को बढ़ाने का काम किया। एडिसन को सड़क पर भी अखबार बेचने का एकाधिकार मिल गया। अपने 4 सहयोगियों के साथ उन्होंने एक प्रेस की भी स्थापना की, जिसमें वे खुद का एक अखबार छापने लगे और उसे वे अन्य अखबारों के साथ बेचा करते थे। इस प्रकार उनका उद्यमी सफर शुरू हो गया और तभी उन्होंने अपने अंदर छिपे व्यवसायी को पहचाना। ये सफर लगातार चलता रहा और वे 14 सफल कंपनियों के संस्थापक बने, जिनमें से तो कुछ आज भी विश्व में व्यापार के क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं। अखबार बेचते हुए ही उन्होंने रेलवे स्टेशन पर टेलीग्राफ संचालक की ट्रेनिंग ली और कुछ दिनों तक ऑन्टेरियो के स्ट्रैटफोर्ड जंक्शन पर टेलीग्राफी का भी काम किया। प्रारंभ में उनके कुछ आविष्कार टेलीग्राफी के क्षेत्र में हुए, जिनमें स्टॉक टिकर प्रमुख है। लेकिन आविष्कारक के रूप में एडिसन को पहला पेटेंट सन 1869 ईस्वी में इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर के लिए प्राप्त हुआ था, परंतु इसे खरीदने में किसी ने रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद उन्होंने हार्मोनिक टेलीग्राफ का आविष्कार किया। एडिसन के टेलीग्राफिक सिद्धांत पर ही आधारित माइक्रोफोन और फैक्स मशीन जैसी वस्तु

0: में अस्तित्व में आई। टेलीफोन के रिसीवर में प्रयोग होने वाला कार्बन माइक्रोफोन, जो लगभग 100 वर्षों तक प्रयोग होता रहा, एडिसन का ही आविष्कार था। एडिसन एक आविष्कारक और व्यापारी थे। उन्होंने अनेक ऐसे यंत्र विकसित किए जिनसे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। वे भारी मात्रा में उत्पादन करने के पक्षधर थे और उन्होंने इस सिद्धांत को व्यवहार में लाया। इसके अलावा खोज करने के लिए विशाल टीम का सहारा लेने वाले वे पहले आविष्कारक थे, इसलिए उन्हें पहला औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय भी दिया जाता है। उनके आविष्कार और पेटेंट्स उस समय काफी प्रचलित थे। उनमें इलेक्ट्रिक लाइट, साउंड रिकॉर्डर और मोशन पिक्चर भी शामिल हैं। एडिसन के आविष्कारों में अधिकतर आविष्कार मास कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित हैं। फिल्म मीडिया में भी एडिसन ने उत्कृष्ट काम किए। उन्होंने आवाज की रिकॉर्डिंग और पुनरुत्पादन के लिए फोनोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया। उन्हीं के द्वारा बनाया गया काइनेटोग्राफ दुनिया का पहला मूवी कैमरा था। किंतु एडिसन का सबसे चर्चित आविष्कार इलेक्ट्रिक बल्ब ही है। काफी मेहनत के बाद एडिसन ने ऐसा बल्ब बनाने में सफलता प्राप्त की जो सस्ता और टिकाऊ था और जिसका बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन भी किया जा सकता था। सन 1878 में एडिसन ने एक ऐसे विद्युत प्रकाश तंत्र पर काम करना शुरू किया जो तत्कालीन गैस और तेल पर आधारित प्रकाश के स्रोतों से बेहतर हो सके। उनसे पहले के वैज्ञानिकों ने जो भी बल्ब बनाए थे उनमें अनेकों खामियां थी, जैसे कम अवधि का प्रकाश, अत्यधिक विद्युत का उपयोग और अत्यधिक खर्चीले उपकरण का उपयोग, जिसके कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं हो सकता था। अतः एडिसन को कम लंबाई वाले तार और ठीक ठाक आकार वाले एक ऐसे बल्ब का आविष्कार करना था जो कम बिजली भी खपत करे। इसका मतलब था उच्च रेजिस्टेंस और कम वोल्टेज का प्रयोग। अनेकों प्रयोगों के बाद एडिसन ने अंततः कार्बन फिलामेंट वाले बल्ब का आविष्कार किया। इसका पहला सफल परीक्षण 22 अक्टूबर 1879 में किया गया। इसके आकार प्रकार में सुधार करने के बाद एडिसन को इसका पेटेंट प्राप्त हो गया। यह पहला व्यावहारिक बल्ब था जिसका उत्पादन भी आसान था। बाद में एडिसन ने इलेक्ट्रिक पावर निर्माण कंपनी की स्थापना की, जो फैक्ट्री, व्यापार और घरों में विद्युत वितरण का काम करता था। ये डायरेक्ट करंट पावर डिलीवरी तंत्र था। एडिसन का ये विकास रथ लगातार चलता रहा। उनके समय में उन्होंने अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका के 1093 पेटेंट्स अपने नाम कर रखे थे और इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी में भी उनके कई पेटेंट्स हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एडिसन अपनी पत्नी के साथ वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी में ग्लेनमोंट नामक अपने निवास स्थान पर रहते थे। मधुमेह से उत्पन्न व्याधियों के कारण 18 अक्टूबर सन 1931 को अपने निवास स्थान पर ही इस महान वैज्ञानिक ने अंतिम सांसें ली। उसी घर के पीछे उन्हें चिर निंद्रा के लिए दफना दिया गया। थॉमस अल्वा एडिसन का हमेशा से कहना था, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है कि हमेशा एक और बार प्रयास करना, क्योंकि जब आप असफल होते हैं और अपने काम को छोड़ देते हैं तब आप सफलता के बहुत करीब होते हैं। सचमुच इन शब्दों को उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, जिया भी और अपने जीवन में इसे सही भी साबित करके दिखा दिया।
1: श्रोताओं, विज्ञान रत्न के बाद अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ विज्ञान मंजूषा का। श्रोताओं, मानसून के मौसम से पहले डेंगू बुखार की रोकथाम, नियंत्रण और जनता के बीच इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हर साल भारत में 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2026 में इसकी थीम रही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर डेंगू कंट्रोल, चेक, क्लीन एंड कवर, यानी सामुदायिक भागीदारी, जांच, सफाई और सुरक्षा। इसका उद्देश्य लोगों को मच्छरों के पनपने वाले स्थलों को नष्ट करने और अपने परिवेश को साफ रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। डेंगू के फैलाव की बात करें तो यह बीमारी मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलती है, जो मुख्य रूप से साफ रुके हुए पानी में पनपती है और दिन के समय सुबह और शाम को काटती है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, गंभीर सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, त्वचा पर लाल चकते और आंखों के पीछे दर्द माना गया है। इसके बचाव के उपाय की बात करें तो आप पानी जमा ना होना दें, कूलर गमलों और टायरों में पानी इकट्ठा ना होने दें, अपने आसपास साफ सफाई रखें और पानी

की टंकियों को हमेशा ढक्कन से बंद रखें, पूरी बाजू के कपड़े पहने और मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें। श्रोताओं, यदि आपको या आपके परिवार में किसी को भी डेंगू के लक्षण महसूस होते हैं तो आपको तुरंत ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि कुछ कछुए 250 साल तक भी जीवित रह सकते हैं? श्रोताओं, कछुओं और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। विलुप्त हो रहे कछुओं की प्रजातियों को बचाना, उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना, ये इसका उद्देश्य है। श्रोताओं, कछुए 20 करोड़ साल से भी अधिक समय से अस्तित्व में है, जो उन्हें पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवित सरीसृपों में से एक बनाता है। कछुओं को पानी के भीतर देखने की क्षमता उत्कृष्ट होती है और गोता लगाते समय लंबे समय तक अपनी ये सांस रोक सकते हैं। कछुए स्वस्थ समुद्री घास के मैदानों, प्रवाल भित्तियों को बनाए रखने और शैवाल की अत्यधिक वृद्धि को रोकने में मदद करके पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रोताओं, कछुओं की 300 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें छोटे मीठे पानी के कछुओं से लेकर विशालकाय समुद्री कछुए शामिल हैं। कछुओं की कुछ प्रजातियां 100 साल से अधिक जीवित रह सकती हैं, जिनमें गैलापागोस कछुआ 170 साल से अधिक जीवित रहकर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने का रिकॉर्ड रखता है। अधिकांश सरीसृपों के विपरीत कछुओं के दांत नहीं होते, इसके बजाय उनके पास चोंच होती है, जिसका उपयोग वे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ने के लिए करते हैं। लेदरबैक समुद्री कछुए सबसे बड़ी प्रजाति हैं, जिनका वजन 2000 पाउंड तक और लंबाई 6 फीट से अधिक हो सकती है। ठंडे तापमान में कछुए महीनों तक शीत निंद्रा में रह सकते हैं और अक्सर गर्मी पाने के लिए कीचड़ या रेत में बिल बनाते हैं। श्रोताओं, विश्व कछुआ दिवस का उद्देश्य होता है कछुओं के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे कि आवास का नुकसान, प्रदूषण और अवैध वन्यजीव व्यापार, इन सब के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह लोगों को इन प्राचीन जीवों के संरक्षण के लिए कदम उठाने और विश्व स्तर पर कछुओं और अन्य कछुआ प्रजातियों के संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी फैलाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। इसकी बात करें तो विश्व कछुआ दिवस की स्थापना 2000 में अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू यानी ATR द्वारा की गई थी, जो सुसान टेलेम और मार्सन थॉम्पसन द्वारा 1990 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। इसका मिशन सभी प्रकार के कछुओं और टर्टल को बचाना और उनका पुनर्वास करना है, साथ ही साथ वन्य जीव में उनकी सुरक्षा की वकालत भी करना है। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि इस सप्ताह मनाए गए विश्व कछुआ दिवस पर प्रेरणा लेते हुए हम और हमारे समाज के वो सभी लोग जो वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़े हुए हैं, वो कछुओं के संरक्षण के लिए भी काम करते रहेंगे। श्रोताओं, भारत का डीप टेक इकोसिस्टम अब केवल सॉफ्टवेयर आधारित क्षमता नहीं है, बल्कि इन क्षमताओं से हटकर सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्नत विनिर्माण जैसे रणनीतिक क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो गया है, जहां पैमाना, कौशल और आपूर्ति श्रृंखला पूंजी जितने ही महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डीप टेक क्या है जिसकी हम बातें कर रहे हैं। श्रोताओं, डीप टेक से तात्पर्य उन प्रौद्योगिकियों से है जो मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान और उन्नत इंजीनियरिंग पर आधारित है, जिनका उद्देश्य सुविधा आधारित समाधानों को सक्षम करने के बजाय जटिल और बड़े पैमाने की समस्याओं को हल करना है। श्रोताओं, डीप टेक से जुड़े प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ड्रोन, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उन्नत पदार्थ आदि क्षेत्रों में ये प्रमुखता से पाया जाता है। श्रोताओं, भारत की बात करें तो हालिया नीतिगत संकेत उपभोग आधारित डिजिटलीकरण से हटकर उत्पादन प्रेरित क्षमता केंद्रित वृद्धि की ओर संक्रमण को दर्शाते हैं। यह परिवर्तन डीप टेक को भारत के लिए एक आर्थिक साधन और रणनीतिक परिसंपत्ति दोनों के रूप में स्थापित करता है। श्रोताओं, भारत में डीप टेक को लेकर हो रहे काम की बात करें तो अगस्त 2023 में राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति कंसोर्टियम ने सार्वजनिक परामर्श के लिए NDTSP को सामने रखा था। इस नीति के मुख्य सुझाव थे अनुसंधान, विकास और नवाचार का पोषण, बौद्धिक संपदा व्यवस्था को मजबूत बनाना, वित्त पहुंच को सुविधाजनक बनाना, बुनियादी संरचना और संसाधन साझा करने का समर्थन करना, नियम, मानक और प्रमाण पत्र बनाना, मानव संसाधन आकर्षित करना और क्षमता निर्माण प्रारंभ करना। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट और प्रमोटिंग को बढ़ावा देना, नीति और कार्यक्रमों का इंटरलिंकेज सुरक्षित करना। यह नीति डीप टेक स्टार्टअप की चुनौतियों का समाधान करने, उन्हें विश्व की डीप टेक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने तथा सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। इसका उद्देश्य नवाचार और अनुसंधान में निवेश करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देकर डीप टेक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। नेशनल कंसोर्टियम को प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और इनोवेशन सलाहकार परिषद की सिफारिशों पर स्थापित किया गया है। यह भारत के डीप टेक स्टार्टअप पारिस्थितिकी के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय संगठन है। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के नेतृत्व में यह कंसोर्टियम सरकारी विभागों, उद्योग संघों, शोध संस्थानों और इनोवेशन केंद्रों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों को मिलाकर गठित किया गया है। श्रोताओं, डीप टेक स्टार्टअप आज विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीवन विज्ञान, कृषि, एरोस्पेस, रसायन विज्ञान, उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा।

0: लाइलाज बीमारी की देखभाल, एआई ड्रोन, एआई रोबोट डीप टेक के पहले ही उदाहरण हैं। भारत सरकार ने डीप टेक क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए हैं: ट्रांसफॉर्मेटिंग मोबिलिटी पर राष्ट्रीय मिशन, बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। इसके लिए इस क्षेत्र में काम करने वाले 10,000 से अधिक स्टार्टअप की पहचान की गई। तो श्रोताओं, क्या है डीप टेक, क्या है इसकी मुख्य विशेषताएं, इससे जुड़ा हुआ नियामक ढांचा, आइए जानते हैं इन सब बातों को विस्तार से एक वार्ता के माध्यम से। वार्ताकार हैं राज अनवित।
1: नमस्कार साथियों, आज हम डीप टेक यानी डीप टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि यह केवल वैज्ञानिकों, बड़ी कंपनियों या प्रयोगशालाओं तक सीमित विषय है, लेकिन सच्चाई यह है कि डीप टेक हमारे मोबाइल, अस्पताल, खेती, बैंकिंग, शिक्षा और रोज़मर्रा के जीवन तक पहुँच चुकी है। तो जाहिर सी बात है, पहला प्रश्न ये उठता है कि डीप टेक क्या है। तो डीप टेक ऐसी उन्नत तकनीकों को कहा जाता है जो कि विज्ञान, इंजीनियरिंग और शोध पर आधारित होती हैं। यह केवल साधारण मोबाइल ऐप या वेबसाइट तक नहीं होती, बल्कि ऐसी तकनीक होती है जो बड़ी जटिल समस्याओं का समाधान करती है। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आजकल बोलचाल की भाषा में AI से जाना जाता है, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, स्पेस टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी, ये सभी डीप टेक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न ये उठता है कि डीप टेक और सामान्य टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है। सामान्य तकनीक मुख्यतः सुविधा बढ़ाती है, जबकि डीप टेक समस्याओं की जड़ पर काम करती है। उदाहरण के लिए, सामान्य तकनीक हमारा ऑनलाइन जो खाना ऑर्डर करते हैं उसका उदाहरण है, और डीप टेक AI द्वारा बीमारी की पहचान करना। डीप टेक में अधिक रिसर्च, समय और निवेश लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, क्या डीप टेक केवल बड़ी कंपनियों के लिए है? तो नहीं, डीप टेक सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। आज डीप टेक का सबसे अधिक प्रभाव आम जनता पर पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, किसान मौसम की जानकारी मोबाइल पर पा रहे हैं, छात्र AI आधारित शिक्षा ले रहे हैं, मरीज ऑनलाइन डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं, छोटे दुकानदार डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। यानी डीप टेक धीरे धीरे हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन रही है। तो अगला प्रश्न, जाहिर सी बात ये उठता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हम लोगों ने जो उदाहरण देखे उनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे कि ये आम लोगों की मदद कैसे कर रही है। AI आज सबसे तेजी से बढ़ती डीप टेक है। इसके कुछ सामान्य उपयोग इस प्रकार हैं। सबसे पहला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। AI एक्सरे और रिपोर्ट देखकर बीमारी जल्द पहचान सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो AI आधारित ऐप छात्र की कमजोरी पहचान कर उसी अनुसार पढ़ाई करवा सकते हैं। अगला है भाषा अनुवाद के लिए AI का उपयोग। अब मोबाइल तुरंत हिंदी से अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में अनुवाद कर दे सकता है या देता है। बैंकिंग के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो ऑनलाइन फ्रॉड पकड़ने में AI काफ़ी मददगार है। इससे समय बचता है और सेवाएं अधिक सटीक बनती हैं। दूसरा उदाहरण डीप टेक का रोबोटिक्स था, और अब हम ये जानेंगे कि रोबोटिक्स आम लोगों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। रोबोट केवल फैक्ट्री तक सीमित नहीं है। आज अस्पतालों में रोबोट से सर्जरी हो रही है, गोदामों में सामान व्यवस्था रोबोट्स देखते हैं, खेती में ड्रोन और रोबोट का उपयोग हो रहा है। आप राहत कार्यों में भी रोबोट खतरनाक जगहों पर भेज सकते हैं। इससे काम तेज, सुरक्षित और सटीक होता है। अगला जो उदाहरण था डीप टेक का, वो बायोटेक्नोलॉजी था। तो अब हम ये देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का आम लोगों के जीवन में क्या योगदान है। बायोटेक्नोलॉजी ने स्वास्थ्य और कृषि दोनों क्षेत्रों में बड़ा बदलाव किया है। उदाहरण के लिए, वैक्सीन का निर्माण, बेहतर बीज, रोग प्रतिरोधक फसलें और नई दवाइयाँ। COVID-19 के समय वैक्सीन की तेज विकास बायोटेक्नोलॉजी का ही परिणाम था। इससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी। अगला उदाहरण डीप टेक का ब्लॉकचेन है, और अब हम ये जानेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है और इसका फ़ायदा क्या होता है। तो ब्लॉकचेन एक सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली है। इसमें डेटा को इस प्रकार रखा जाता है कि उसे आसानी से बदला नहीं जा सके। इसके उपयोग सुरक्षित डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन रिकॉर्ड, जमीन के दस्तावेज, सप्लाई चेन ट्रैकिंग, इन सब में की जाती है। इससे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी बहुत हद तक कम हो सकती है। अगला जो डीप टेक का उदाहरण था, हम ये जानेंगे कि वो किस तरीके से रोजगार के लिए खतरा है या नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या डीप टेक रोजगार के लिए खतरा हो सकता है। कुछ पुराने काम निश्चित रूप से कम होंगे, लेकिन नए अवसर भी पैदा होंगे। उदाहरण के लिए AI ऑपरेटरों की जरूरत पड़ेगी, डेटा विश्लेषकों की जरूरत पड़ेगी, रोबोटिक्स इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि नई तकनीकों को कैसे सीखना है, उसको सीख करके किस तरीके से उसे हम वो अप्लाई करना है। अब हम ये देखेंगे कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में डीप टेक का क्या उपयोग है। डीप टेक ग्रामीण भारत के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। उदाहरण के लिए ड्रोन से फसल की निगरानी की जा सकती है, मिट्टी का परीक्षण किया जा सकता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और स्मार्ट सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। इससे क्या लागत कम होगी और उत्पाद भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि डीप टेक से क्या खतरा हो सकता है या चुनौतियाँ, दोनों में से हम किस प्रकार उसे लेते हैं। हर तकनीक के कुछ चुनौतियाँ होती हैं, जैसे डेटा प्राइवेसी, साइबर अपराध, बेरोजगारी का डर, तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता। तो इसलिए तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न ये है कि क्या छात्रों को डीप टेक में के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, क्योंकि छात्र इस क्षेत्र के सबसे जो महत्वपूर्ण अंग हैं। तो छात्रों को AI और डेटा का मूल ज्ञान सीखना होगा।

0: सवाल एक बार फिर से सुन लें। वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? और आज का हमारा दूसरा सवाल है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? सवाल एक बार फिर से सुन लें, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? श्रोताओं, सवाल तो आपने नोट कर ही लिया होगा, अब नोट कीजिए हमारा पता और लिख भेजिए इन सवालों के सही जवाब हमें डाक या ईमेल द्वारा। हमारा पता है कार्यक्रम विज्ञान वाणी अनुभाग, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी भागलपुर, पिन 812001। और हमारा ईमेल है phairbhagalpur@gmail.com, यानी phairbhagalpur@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों और ईमेल्स का। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विज्ञानवाणी कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि विज्ञानवाणी का अंक आपको पसंद आया होगा। विज्ञानवाणी के माध्यम से आपको बहुत सारी विज्ञान के क्षेत्र में नई जानकारियां मिली होंगी और इन रोचक जानकारियों से आप विज्ञान के अपने ज्ञान को और बढ़ा पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो श्रोताओं, घड़ी की सुई इशारा कर रही है और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो इस वादे के साथ ये होगी आपसे फिर मुलाकात, इसी दिन इसी जगह इसी समय, यानी आकाशवाणी केंद्र भागलपुर पर। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त पीयूष आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञानवाणी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आकाशवाणी@90 के विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए भेंटवार्ता। मुझे याद है जरा जरा। भेंटवार्ताकार हैं शंकर मिश्र नाहर, भेंटकर्ता सौरभ कुमार और प्रस्तुतकर्ता हैं श्री पार्वती के।
2: श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आकाशवाणी अपना 90वां वर्ष मना रहा है, यानी 8 जून 1936 को आकाशवाणी अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। और इन 90 वर्षों की यात्रा आकाशवाणी ने किस प्रकार पूर्ण की है, इसको ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी अपना ये 90वां वर्ष मना रहा है। इस दौरान हम लोग आकाशवाणी भागलपुर में भी इसके तहत कई सारे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और उसी की श्रृंखला में हमारा जो कार्यक्रम है मुझे याद है जरा जरा, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम अपने आकाशवाणी में कार्य करने वाले अपने जो हमारे अधिकारी हैं, अपने जो हमारे कर्मचारी हैं, उन सभी की जो यादें हैं, उनके सभी के जो अनुभव हैं, उनके बारे में आप सभी को हम अवगत कराते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं आकाशवाणी के सेवानिवृत्त म्यूजिक कंपोजर श्री शंकर मिश्र नाहर। इनके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा और संगीत के जो लोग जानकारी रखते हैं या जो आकाशवाणी से संगीत का आनंद लेते हैं वो इन्हें जरूर ही जानते होंगे। तो सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: नमस्कार।
2: और आप काफी दिनों बाद आकाशवाणी में आए हैं, तो आपको आकाशवाणी में आकर कैसा लग रहा है?
3: आकाशवाणी में जैसे लग रहा है कि आज भी हम अपने ड्यूटी में हैं और अपने कार्य में लगे हुए हैं, वैसा ही भरा पूरा सब बहुत अच्छा लग रहा है आकाशवाणी। और सारे लोगों से मिलना जुलना भी हो रहा है, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं।
2: जी सर्वप्रथम आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपका जो नाम है शंकर मिश्र नाहर, तो ये जो नाहर शब्द है इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
3: ऐसा है कि हम लोग तो मिश्र हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन हम लोगों के जो पूर्वज थे, हमारे दादाजी ये लोग जो थे, वो दरभंगा में कार्यक्रम हुआ था, दरभंगा महाराज के दरबार में। तो दरभंगा महाराज को बहुत ही अच्छा लगा था हमारे दादाजी का और हमारे बड़े पिताजी का प्रोग्राम, बहुत अच्छा उनका गायन लगा था। तो उसी समय वो जो है नाहर की उपाधि वो लोग वो दे दिए। नाहर का मतलब होता है शेर, शेर का मतलब होता है कि हम जो है गाते हैं, हम लोगों के घराना में जो भी गाना बजाना होता है वो मतलब इस तरह से बंदिश होता है कि लोगों को ऐसा लगे कि हाँ सचमुच में जिनकी लीला कही जा रही है वो सब सब मतलब सब सामने आ रहे हैं। तो इसलिए नाहर की उपाधि हम लोगों को वहीं से मिला और हम लोग नाहर, हम सब भाई लोग जितने भी हैं, हमारे संतोष कुमार नाहर हैं, राजकुमार नाहर हैं, हम हैं शंकर मिश्र नाहर, तो हम लोग सब कोई जो है नाहर की टाइटल इसको लगाया, इसलिए शंकर मिश्र नाहर के नाम से।
2: जी, और आपने घराना की बात की, तो आप किस घराने से संबंध रखते हैं?
3: घराना तो वैसे हम लोग तो बनारस घराना से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों के घराना में हम चूंकि वंश परंपरागत कलाकार हैं और हमारी शैली जो है हमारे दादा हमारे पिताजी जो हमको सिखाए हैं उसी के आधार पर हमारी शैली है। तो उस शैली का नाम था कि कोई भी गाना को या कोई भी कविता को, किसी भी कविता को अपने उसको

0: उस राग में ढालते हुए गाएंगे और वो कविता जो है ऐसा होगा कि एक बार लय और ताल में जो चलेगा तो उसको हम 10 बार करेंगे, 20 बार भी करेंगे तो एक जैसा होगा। एक जैसा मतलब कि जैसे ईंटा का भट्ठा में जाइए तो आप उसका फर्मा होता है, उसमें जो है ईंटा मिट्टी दे करके बनाते हैं, 1 लाख ईंटा निकल जाता है। उसी तरह से हम लोगों के वंश परंपरागत में था शैली, और तो वो शैली जो है हम लोगों का था बंदिश की शैली।
1: जी, आपने काफ़ी अच्छी बात बताई, हमारे काफ़ी श्रोताओं को ये बात नहीं पता होगा बंदिश और इसके बारे में। साथ ही साथ आप बनारस घराने की बात की आपने, और आपने अपने बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, तो हम भी अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आपने जैसा कि हमारे श्रोताओं को अपने नाम के बारे में बताया, अपने घराने के बारे में बताया, तो हम भी अपने श्रोताओं को यह बताना चाहेंगे कि हमारे साथ आज मौजूद हैं शंकर मिश्र नाहर, जो कि आकाशवाणी से सेवानिवृत्त म्यूजिक कंपोजर हैं। उन्होंने आकाशवाणी में गायन शैली की 2 विधाओं में ग्रेड ए की उपाधि उन्हें मिली है, और वो है सुगम संगीत गायन और शास्त्रीय संगीत गायन में। तो हम आगे बढ़ेंगे और आपसे यह जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी में सेवा जो आपने प्रारंभ की थी वो कब की थी?
0: आकाशवाणी में सेवा तो वैसे हमारा, हम समझते हैं कि 45 से 50 साल हो गया, और जिस समय कि आकाशवाणी पटना से हम लोगों का कार्यक्रम होता था, हमारा वहीं से जो भी ग्रेड मिला था, भी हाई ग्रेड मिला क्लासिकल में, शास्त्रीय गायन में। लेकिन उसके पहले ये आकाशवाणी था ट्रांसमिशन, अलीगंज के पास जो ट्रांसमिशन है वहीं एक छोटा सा स्टूडियो बना हुआ था। तो उस समय हम जो है अपने छात्रों को, शिष्यों को लेकर के वहाँ जाते थे, युवावाणी में वगैरह में जो है रिकॉर्डिंग वहाँ हो जाती थी, और वो प्रसारण भी वहीं से, ट्रांसमिशन से ही होता रहता था। फिर कुछ वर्ष तक चलता चलते चलते चलते फिर आकाशवाणी आ गया, कचहरी में आ गया, ललित भवन के पास आ गया। तो यहाँ जो है थोड़ा सा बृहत रूप हुआ, और बृहत रूप से फिर हम लोगों का वहाँ रिकॉर्डिंग वुडिंग जो है युवावाणी का ही चलता रहता था, और ऐसे हमको अलग से बुला करके भी थोड़ी रिकॉर्डिंग हो जाती थी, उसका चेक मिल जाता था, ये सब चलता रहता था। लेकिन मेन हमारा जो है पटना आकाशवाणी से ही मेरा कार्यक्रम होता था बी हाई ग्रेड, और पटना आकाशवाणी में हम बी हाई ग्रेड पाए। और उसके बाद बिहार का जो नेशनल प्रोग्राम होता है, जैसे भारत का नेशनल प्रोग्राम है शनिवार को और मंगलवार को, उसी तरह से बिहार में पटना में जोनल हेड है वहाँ जो है नेशनल प्रोग्राम जो होता था सोमवार को होता था।
1: जी, स्टेट हुकअप का जो प्रोग्राम है,
0: और वो सोमबासरी उसको कहते थे। उस सोमबासरी में कम से कम नहीं तो 10-12 बार हम जो है सोमबासरी में हमको गाया गया, हम गाए, और मेरा मंगलवार ये नेशनल प्रोग्राम भी दिल्ली से प्रसारण हुआ। वहीं से हमारे सारे कलाकार लोग थे, सब अनवर हुसैन थे, महेंद्र सिंह थे, ये लोग थे, तो वहीं से हमारा जो है ये कार्यक्रम हुआ, और वो नेशनल जो है हमारा मंगलवार को नेशनल प्रोग्राम हुआ। आकाशवाणी से जुड़ने के पहले हम जब युवावस्था में थे तो हम बहुत उपाधि भी पाए। बम्बई में सुर श्रृंगार संसद की ओर से हमको सुरमणि की उपाधि मिली
1: जी।
0: फिर उसके बाद अभी जो है कौमुदी रत्न पटना में सुशील मोदी साहब थे, तो उनके हाथों से हमको कौमुदी रत्न की उपाधि मिली
1: जी।
0: और हम 17-18 देश जा जाकर हम प्रोग्राम 6-6 बार गए, 6-6 महीने के लिए गए, और वहाँ जा करके जर्मन हुआ, फ्रांस हुआ, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जितना भी कंट्री था वहाँ 6-6 महीने के लिए हम जाते थे, और वहाँ मेरा कार्यक्रम होता था। फिर ये सब तो भाग दौड़ होता रहता था, प्रोग्राम होता रहता था। फिर हम एक बार अचानक ये सोचे कि भाई ये तो भाग दौड़ है, जब तक शरीर है तब तक चल रहा है, क्यों नहीं हम कुछ सर्विस ऐसा करें। तो हमारे पास, हम ऐसे प्रयाग संगीत समिति से भी एमए हैं, प्राचीन कला केंद्र से भी एमए हैं, और गिटार में भी हैं, तबला में भी हैं, डांस में भी हैं, सब में है, हमारे पास सारी योग्यता है, बहुत सारा प्रमाण पत्र था। तो हम कहा कि क्यों नहीं हम यहाँ जो है, तो हमारे पहले यहाँ थे सुरेश मिश्रा जी, म्यूजिक कंपोजर। तो यहाँ जब आए तो हम म्यूजिक कंपोजर का ऑडिशन दिए, दिल्ली गया, और दिल्ली से हम वहाँ से हम म्यूजिक कंपोजर पास हो गए। तो यहाँ निहार रंजन नाग साहब थे
1: जी, जी,
0: तो वो हमको बुलाते रहते थे, और बुलाते रहते थे, तो यहाँ पर जो है हम बहुत सारा फीचर वगैरह जो है बहुत सारा बनाए।
1: तो आप मतलब लिखते भी थे या सिर्फ नहीं, म्यूजिक का काम करते थे?
0: लेखक दूसरे होते थे, आकाशवाणी उनको आमंत्रित करती थी, उनकी लेखनी को फिर हमको दिया जाता था, फाइल पर हम लेते थे और उसको, और उसके बाद उसमें 8-10 दिन का समय लगता था, फिर उसको हम जो है अपना म्यूजिक कंपोज उसको करते थे, धुन बनाते थे, और कौन कौन कलाकार को लेना है, कौन लेडी कलाकार, कौन जेंट्स कलाकार, कौन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, इन लोगों को लेना है, ये

0: हम एक लिस्ट बना करके हम नाग साहब को देते थे, नाग साहब उसको अप्रूव्ड करके फिर वो एसडी साहब उसको
1: जी
0: स्वीकृत करते थे।
1: जी
0: तो इस तरह से फीचर यहाँ बहुत सारा बना,
1: जी
0: एक जायसी बना, रसलीन बना, प्रभु ऊंच से नीच किए, ये
1: जी
0: बना, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर
1: हर
0: बरस
1: बरस मेले
0: मेले,
1: जी
0: ये तो मेरा इतना बढ़िया बना। इसमें सुरेश मिश्रा जो म्यूजिक कंपोजर थे उनको भी सिंगिंग में दिए थे, और श्यामानंद दे दोनों आदमी को हम जो इसमें गवाए, और म्यूजिक जो इतना बढ़िया था कि पटना में इसका बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ, पटना से भी इस प्रसारण हुआ।
1: जी
0: तो ये चल रहा था, तो फिर हम कहा कि नहीं, अब जो है अब इसका वैकेंसी निकलेगा तो हम जो है अब इसमें भी हम ट्राई करेंगे और हम जो है इसमें
1: जी
0: मतलब भागीदारी लेंगे। तो बहुत सारा अप्लाई अप्लाई हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में जो है हमारे इंटरव्यू में मतलब दिग्गज सितारवादिका थी, वो टॉप ग्रेड थी, कलकत्ते से आई हुई थी, उनका नाम कोई बंगाली थी भूल रहे हैं, और दरभंगा से आए थे, पंडित सियाराम तिवारी जी आए
1: जी
0: थे, ध्रुपद के पद्मश्री
1: जी
0: अवार्डेड,
1: जी जी
0: और दिल्ली से डायरेक्टरेट से भी जो है एडीजीएम मतलब और कौन कौन ऑफिसर लोग बहुत सारे आए थे, करीब 12-13 ऑफिसर्स लोग से यहाँ पर मेरा ऑडिशन हुआ, मतलब सामना सामनी हुआ।
1: जी
0: उसमें बहुत तरह का क्वेश्चन भी किया गया हमसे, ये भी पूछा गया घराना कैसे है, हम कहा कि भागलपुर घराना को मान्यता मिला है, भागलपुर घराना है इसलिए कि बंदिश के नाम से ये भागलपुर घराना को मान्यता दिया गया है, हालांकि हमारे पूर्वज उतने पढ़े लिखे हुए नहीं थे जो कि उसको ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकें, लेकिन हम लोग बनारस से ही जुड़े, हमारे मतलब मम्मियाँ ससुर हुए पंडित किशन महाराज,
1: जी
0: पद्मश्री अवार्डेड गुदई महाराज जिनको शांता प्रसाद कहते हैं, तो
1: जी
0: ये हम लोग सब कोई रिलेशन में आते हैं। पटना में भी हमारा घर था, वहाँ भी संतोष नाहर, ये लोग सब थे, राजकुमार नाहर हैं, ये लोग संगीत कुमार नाहर पहले यहाँ भी वो म्यूजिक कंपोजर रहे, तो ये लोग रहे, लेकिन हमारा बनारस से भी संबंध रहा, लेकिन हम लोगों की जो बंदिश है वो बंदिश एक
1: भागलपुर
0: अलग,
1: की ही
0: हाँ
1: है,
0: भागलपुर
1: भागलपुर
0: की
1: की
0: थी,
1: ही है
0: इसलिए इसको भागलपुर घराना,
1: जी
0: जबकि पंडित सियाराम तिवारी साहब बैठे हुए थे, महिला थी, टॉप ग्रेड सितारिस्ट थी, कलकत्ता से आई थी, हम उन लोगों के सामने बोले कि दरभंगा घराना नहीं बना और न कलकत्ता घराना बना, लेकिन भागलपुर घराना बना। इस पर बहुत तर्क उर्क हुआ हमारा, हम मतलब फिर हम चुने गए, चुने गए, फिर हम यहाँ ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद यहाँ इतना कंसर्ट हुआ बाहर बाहर, उस समय वीरेंद्र शुक्ल साहब थे
1: जी
0: एसडी थे, उसके बाद जना विश्वास जी आई,
1: जी
0: फिर उसके बाद ये शिव में महेश शाह
1: शिवमंगल
0: जी आए,
1: महेशा
0: फिर उसके बाद शिवमंगल सिम्हाना
1: शिवमंगल
0: आए, सब हमारे ही रीजन में सब लोग आए। तो म्यूजिक कंसर्ट जो होता था हम लोग दुमका में यानी झारखंड में पूर्णिया में ये सब जगह में खूब करते थे, कम से कम 13-14 कंसर्ट हम लोगों ने किया,
1: जी
0: और किशनगंज में ये ट्रांसमिशन का उद्घाटन हुआ था तो उसमें ये शहनवाज हुसैन साहब उद्घाटन किए थे, तो उसमें भागलपुर से सारे टीम को हम लोग ले गए थे और वहाँ भी फर्स्ट फर्स्ट
1: कार्यक्रम
0: क्लास
1: कराए
0: हाँ कार्यक्रम हुआ था। तो
1: जी
0: ऐसे ही चलता रह रहा है यहाँ, तो यानी फीचर सब, तो पहले तो हम लोग भी रिकॉर्डिंग करते थे, या लोकगीत का हो रहा है या शास्त्रीय संगीत का हो रहा है, सुगम संगीत का हो रहा है, तो उस समय मेल्ट्रॉन मशीन था,
1: जी
0: मेल्ट्रॉन पर ही हम लोग जो है कभी कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई कोई आके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नहीं कोई है तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बैठ के, ये होता था रहता था, और रात में 8-8 बजे तक 9-9 बजे तक हम लोग यहाँ पर स्टूडियो में रहते थे, इसलिए कि दूर दूर से जो कलाकार आते थे इनकी बुकिंग होती थी, झारखंड से सब लोग आते थे, झारखंड से तो बहुत सारा बाहा पीहू फिर ये सब जोहार ये सब कार्यक्रम खूब हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे, पीरपैंती से कहलगांव से ये सब जगह से जो भोजपुरिया लोग आते थे, तो इतना अच्छा 5-7 का ग्रुप रहता था, तो वो लोग अपना ढोलक नाल ये सब सब लेकर के और इतना अच्छा गाते थे, खूब रिकॉर्डिंग चलती थी, तो हम लोगों को समय का पता ही नहीं चलता था कि कितना बजा, जब तक हम रिकॉर्डिंग ख़त्म नहीं करेंगे, टेप को जो है स्टूडियो मतलब क्या लाइब्रेरी में नहीं जमा करेंगे तब तक जाएंगे नहीं, ऐसा होता था, और बहुत तन मन से हम यहाँ जो है लगे हुए थे। अब उस समय का चहल पहल वैसे आज भी वैसे ही चहल पहल है, लेकिन उस समय जो है 14-15 विभाग था
1: जी
0: और सब में सारे अधिकारी मतलब जो है कार्यक्रम अधिशासी लोग रहते थे, तो कार्यक्रम खूब होता था, ग्राम जगत का भी होता था, उसमें भी हम लोग सम्मिलित हो जाते थे,
1: जी
0: कोई कोई रिकॉर्डिंग करनी है कोई लोकगीत का ये सब का, तो उसमें भी हम लोग सम्मिलित हो जाते थे,
1: जी
0: चलता था ऐसे ही चल रहा था।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो अपने अनुभव बताए

0: और जो आपने यहाँ पे सेवा दी है 1997 से आप यहाँ पर फिर आ गए, तो सेवा के दौरान आपने जो रिकॉर्डिंग वगैरह बताया, तो इस दौरान आपको कई सारा अनुभव होगा जो कि आपको लगता होगा अभी भी कि उसमें हमने ऐसा किया, जो एक सुखद अनुभव होता है इस तरह के
1: हाँ,
0: कोई घटना अगर आप जो हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: हिजला मेला होता था
0: जी
1: और देवघर के

0: काम था कि मतलब कार्यक्रम को सफल करना, किसके बाद क्या करना है, किसके बाद कितने आर्टिस्ट यहाँ से जाएंगे, उन लोगों के लायक कौन कौन कलाकार के लायक, मतलब कौन कौन बजाने वाले हैं, उन लोगों का हमको सिलेक्शन करना है और उन लोगों को यहाँ से लेकर के जाना है। ऐसे तो जमुई में गिद्धौर में जो है दिग्विजय बाबू, स्वर्गीय दिग्विजय बाबू के रीजन में तीन तीन बार हम लोग जो है दुर्गा पूजा में हुआ गए
1: जी।
0: भारत के कोई ऐसे कलाकार बाकी नहीं थे जो कि वहाँ नहीं आए
1: जी।
0: और रविंद्र जैन साहब से तो मेरे तीन बार हमारा उनसे मुलाकात हुआ और एक ही मंच पर कार्यक्रम भी हुआ। रविंद्र जैन तो खैर म्यूजिक डायरेक्टर बहुत बड़े, कम से कम 100 फिल्म वो बनाए होंगे, चोरी चोरी सब ये, फिर आपको हीना, राम तेरी गंगा मेली, ऐसे ऐसे। तो जिस समय रविंद्र जैन साहब नहीं इसमें फिल्म में नहीं आए थे तो मारवाड़ी पाठशाला में एक बार प्रोग्राम हुआ था जिसमें मेरा भी था उनका भी था
1: जी।
0: तो वहीं से थोड़ा सा हम लोगों का संपर्क बढ़ा। फिर जमुई में भी आए, गिद्धौर में आए
1: जी।
0: तो गिद्धौर में भी आए तो फिर वहाँ हमारा उनसे बहुत और ज़्यादा घनिष्ठ संबंध हो गया
1: जी।
0: और फिर उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया में
1: जी,
0: ऑस्ट्रिया के वियना में उनका कार्यक्रम था और मेरा भी था
1: जी।
0: तो वहाँ पूरा गले गले हम लोग मिले और फिर उनका भी कार्यक्रम हुआ, मेरा भी कार्यक्रम हुआ। तो इस तरह से कार्यक्रम दिग्विजय बाबू जो कराते थे तो वो भारत का कोई ऐसा कलाकार बाकी नहीं था जो कि वहाँ नहीं आते थे। हम लोग 6-6 दिन के लिए यहाँ से जो बनाते थे जाते थे तो वहीं हम लोगों का यानी रहना सब कुछ वहीं होता था और कार्यक्रम वहाँ सफल करना था। सारे कलाकारों को, बजाने वाले कलाकारों को हम ले जाते थे यहाँ से
1: जी जी,
0: पूरी टीम जाती थी आकाशवाणी से
1: जी जी। तो आपके समय जो था और आकाशवाणी जो था एकमात्र माध्यम था कलाकारों को मंच प्रदान करने का, तो उस समय आकाशवाणी ने अपना जो रोल है वो किस तरह से निभाया, आपको इसके बारे में थोड़ा श्रोता को बताएं।
0: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नाम से ये आकाशवाणी है। बहुत ऐसे कलाकार थे जो कि आकाशवाणी के अंदर आ नहीं पा रहे थे, उनकी योग्यता थी लेकिन जब हम म्यूजिक कंपोजर बने तो उसके बाद जो है उसके बाद से बहुत सारे कलाकारों को हम यहाँ पर जो है अप्लाई कराए, उनकी परीक्षा हुई, बोर्ड में हमको भी बैठाया गया। चूँकि संगीत के क्षेत्र से हम थे, किस आदमी का मतलब गाना सुर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताल में हो रहा है, लय में हो रहा है कि नहीं, इसलिए हमको भी बैठाया जाता था। स्टेशन डायरेक्टर साहब बैठते थे और पैक्स जो है उस समय अरुण कुमार पासवान जी थे वो भी थे, फिर लक्ष्मी पासवान आए, फिर आपको जमुआर जी थे, शंकर राम जी थे, ये लोग सब थे। तो ये सब होता था, बोर्ड में बैठ करके मतलब सिलेक्शन किया जाता था। बहुत सारे कलाकारों को यानी ऑडिशन में इसको पास करवाया
1: जी।
0: इसलिए कि भाई कम से कम उन लोगों के घर में चूल्हा जले, खाना बने, बहुत गरीबी स्थिति में था तो भाई चलो कम से कम सरकार जब इतना कर रही है तो आप लोग उसका उपयोग कीजिए, उसका प्रयोग कीजिए, उसे पाइए उसको। और इस तरह से कलाकारों को यहाँ लाया। अब बहुत सारे कलाकार जो है यहाँ हो गए थे, उनका सारा रजिस्टर मेंटेन होता था और कार्यक्रम उन लोगों को दिया जाता था
1: जी। आपके समय में कई सारे प्रमुख प्रसिद्ध जो आर्टिस्ट है आकाशवाणी के द्वारा में जो रिकॉर्डिंग वगैरह होती थी, पहले दूसरे दूसरे स्टेशन से भी लोग आकर रिकॉर्डिंग कराते थे, तो आपके समय में कोई फेमस आदमी वगैरह कौन कौन से आए थे लगभग?
0: उस समय विजिटिंग आर्टिस्ट के नाम से बाहर से कलाकार जो आते थे उनकी बुकिंग होती थी, यहाँ करते थे हम लोग होता था। और उसमें गिरीश बाजलवार थे, फिर आप बनारस की हैं, लखनऊ की हैं, ममता कुलकर्णी शायद नाम था उनका, वो भी आई हुई थी। फिर शिवनाथ मिश्रा जी आए हुए थे, उनका सितार का वादन का हुआ था कार्यक्रम। और यहाँ थे स्टाफ आर्टिस्ट में गोपाल मिश्रा थे
1: जी
0: और श्यामानंद थे
1: जी।
0: लेकिन बाहर से जो कलाकारों को हम बुलाते थे तो उन लोगों की रिकॉर्डिंग जो होती थी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे स्वर्गीय बुलबुल महाराज जी, ए ग्रेड के तबला वादक
1: जी, जी।
0: अभय नारायण सिंह जी, ए ग्रेड के तबला वादक, ये लोग सब कैजुअल थे। और बलराम दास मिश्र, ए ग्रेड तबला वादक, इन लोगों को बुलाया जाता था और इन लोगों के कार्यक्रम में हम लोग रखते थे। सुगम संगीत का अलग सिस्टम था, सुगम संगीत में जो है ना ऑर्गन वाले को बुलाते थे, स्पेनिश गिटार है तो नाल है तो ढोलक है, पैड है, ये सब, और सिंगर लोगों को जो है, जो अच्छे सिंगर हैं जिनका अच्छा कार्यक्रम होता था तो उन लोगों को भी हम लोग मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसे तो नियम था कि बी ग्रेड को जो है आप 6 महीने पर एक बुकिंग दें, बी हाई ग्रेड वाले को

0: यानी साल में 4 बुकिंग, ए ग्रेड वाले को साल में 2 बुकिंग, ऐसा नियम था। उसी नियम के आधार पर हम लोग करते थे और एक से एक कलाकार लोग आते गए और यहाँ उनकी रिकॉर्डिंग होती गई, विजिटिंग आर्टिस्ट में चलता रहा
1: जी। तो यहाँ पे चूंकि संताल परगना का भी एरिया है तो संताली जो फोक म्यूजिक जो बोलते हैं आदिवासी संगीत, तो उसकी रिकॉर्डिंग की स्थिति आपके समय में कैसे थी? आप लोग मतलब वहाँ कैंप लगा कर रिकॉर्डिंग करते थे या उनको यहाँ बुलाते थे?
0: कैंप लगा के नहीं होता था, सब कलाकारों को यहाँ बुलाया जाता था, बुकिंग होती थी उनकी
1: जी।
0: 12-13 के ग्रुप में, उसमें महिलाएं मर्द सब लोग आते थे, उसमें ढोल नगाड़ा ताशा सब झांझ हुन सब लेकर के वो लोग जो है आते थे और यहाँ पर उन लोगों का रिकॉर्डिंग होता था। कई ग्रुप था वहाँ झारखंड का
1: जी,
0: हम समझते हैं कि 12-14 ग्रुप था जो कि झारखंड से वहाँ से आते थे लोग यहाँ कार्यक्रम। तो बाहा होता था उन लोगों का, सुखराय होता था, फिर आपको जोहार होता था
1: जी।
0: फिर और क्या क्या तो नाम था, ये सब उन लोग गाते थे यहाँ पर, हम लोग उसको हैंडल करते थे, बता भी देते थे कि आप लोगों को आकाशवाणी के हिसाब से गाना है और ये गाना है
1: जी।
0: तो वो लोग अपना उस शीर्षक दे देते थे, उसी के आधार पर उन लोगों का होता
1: जी,
0: था
1: जी, जी।
0: तो 12-14 ग्रुप था झारखंड का जो कि पूरा उन लोगों को बार बार बीच में बुलाते थे और उन लोगों का, चूंकि आदिवासी झारखंड को हम लोग ले करके ही चलते थे
1: जी जी चूंकि आकाशवाणी
0: हाँ।
1: भागलपुर आपको संताल परगना और अंग जनपद
0: दोनों का है तो
1: स्टेशन
0: इसीलिए हम लोग जो है दोनों को लेकर के चलते थे। यहाँ तक कि बहुत दूर दूर से गिद्धौर से जमुई से भी कलाकार लोगों को बुलाते थे, बहुत दूर दूर का इसका तो एरिया बहुत बड़ा था। बहुत दूर दूर से
1: किशनगंज से लेकर के पूरे 17 जिले
0: बुक करते थे और वो लोग आते थे यहाँ कार्यक्रम करते थे
1: जी।
0: आपका भोजपुरी
1: जी,
0: भोजपुरी में भी करीब हम समझते हैं 8-9 ग्रुप ऐसा था
1: जी
0: जो कि जब वो लोग गाते थे तो भोजपुरिया भाषा में और वो लोग गाते थे और उन लोगों के साथ जो नाल बजाने वाला और उसके ग्रुप में गाने वाले और झांझ बजाने वाले, यानी अगर आप स्टूडियो में चले जाते, हम लोग तो उस समय रिकॉर्डिंग में थे रहते थे, कोई चला जाता था तो जल्दी हटता नहीं था, इतना उन लोगों को अच्छा लगता था। और वो लोग ग्रुप में जो है गाते थे, आधा आधे घंटे की रिकॉर्डिंग होती थी उन लोगों का, और करीब हम समझते हैं 8-10 ग्रुप था आपका भोजपुरी गाने वाला का
1: जी।
0: सबको हम लोग मिला के चलते थे, सिंगल गाने वाले सुगम संगीत वाले भी हैं तो उनको भी लेके सुगम संगीत में कराते थे, भोजपुरी का भी एक टीम है तो उसको भी बुलाते थे, यानी पर डे रिकॉर्डिंग जो है हम लोगों का ये चलता रहता था, यानी सोमवार से लेके शुक्रवार तक
1: जी जी। और बात करें अगर अन्य भाषाओं में जैसे अंगिका की और भी अन्य भाषाओं
0: हाँ,
1: की, तो उसमें
0: हाँ,
1: रिकॉर्डिंग की क्या स्थिति है आपके समय थी?
0: अंगिका में भी करते थे तो पहले जितने भी कलाकार, पहले ऐसा नियम था ना कि पहले क्या नियम अभी भी है कि जो कलाकार गाना गाएंगे सुगम संगीत और लोकगीत
1: जी,
0: चाहे भोजपुरी में हो या अंगिका में हो, मैथिली में हो या मगही में हो
1: जी,
0: तो लोकगीत तो उन लोगों का स्क्रिप्ट को पहले चेक किया जाता था कि कौन सा गाना है, किस में कोई अभद्र शब्द तो नहीं है
1: जी, जी,
0: कोई खराब शब्द नहीं आकाशवाणी के अनुकूल नहीं
1: जी,
0: है हाँ, तो इसलिए स्क्रिप्ट को हम कार्यक्रम अधिशासी जो होते थे वो चेक करते थे, वो नहीं रहते थे तो हम चेक करते थे, लेकिन स्क्रिप्ट को चेक किया जाता था और उसमें टिक मार्क दे दिया जाता, 6 गाना है उनको तो 4 मिनट के हिसाब से अगर गा रहे हैं तो भी हमको 24 मिनट हो रहा है तो उसको 5 गाना किया जाए, बीच में अनाउंसर के लिए भी समय रहता था तो हम लोग 27 मिनट 26 मिनट 28 मिनट इसी के रेंज में हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे, तो रिकॉर्डिंग जो करते थे तो उसमें 4 गाना 5 गाना उन लोगों का होता था और स्क्रिप्ट के आधार पर गाना तो 8-10 लाते थे लेकिन उसमें जो गाना पसंद होता था उसमें टिक मार्क दिया जाता
1: जी,
0: था
1: जी,
0: कि यही सब आप गाइए।
1: और जैसा कि मैंने भी इतने दिनों में देखा है कि लोकगीत में खास करके मौसम परिस्थिति और आसपास का वातावरण सब कुछ को देख करके लोग गीत होता
0: हाँ,
1: है तो उसी हिसाब से फिर हम लोग रिकॉर्डिंग भी
0: करा था
1: हाँ, जी।
0: जैसे चैत गर्मी का मौसम है, चैत है, बैसाख है तो हम लोग ज़्यादातर चैती को पसंद करते थे और कहते थे कि 2-3 चैती आप गाइए, उसके बाद फिर कोई श्रृंगार रस का कोई गाना गा दीजिए, कोई देशभक्ति का गाना गा दीजिए, लेकिन 2-3 चैती को रखिए
1: जी जी, मतलब मौसम अनुकूल
0: हाँ,
1: समय अनुकूल हम लोग आकाशवाणी शुरू से प्रसारण
0: हाँ,
1: करते आ रहे हैं।
0: वर्षा ऋतु का समय आया तो उसमें भी हम लोग जो है भाई कुछ श्रृंगार रस का तो रखिएगा ही, कजरी वगैरह जो है
1: जरूर
0: आप इसको रखिए, तो उसमें लोकगीत में होता था 3 मासा 6 मासा 12 मासा
1: जी।
0: तो ये भी 12 मासा का मतलब है कि 12 महीने का वर्णन उसमें आ जाता था।

0: छः मासा का छः महीने का वर्णन, हाँ, तो इस तरह से हम लोग पहले उसको चूज कर लेते थे, देख लेते थे कि हाँ ये ठीक है तो इसको गाइए, समय अनुकूल है तो उसको
1: जी जी हम लोग साथ रिकॉर्डिंग करते थे। विवाह गीत है, जन्म संस्कार,
0: हाँ,
1: सब सब लोकगीत में भी है, आदिवासी संगीत,
0: कहा ना कि 30-40 इसमें प्रकार है
1: जी,
0: आपके लोकगीत में 30-40 प्रकार है, बहुत सारा, सिंदूरदान है, चकरी टिकैया है, तो उसके बाद सिंदूरदान के अलावे मड़वा है, यानी तरह तरह का बहुत सारा गाना, तो 30-40 प्रकार है
1: जी। और आकाशवाणी इन 90 सालों में जो आपने बताया कि लोक जो हमारी आस्था है, जो लोक संस्कृति है, उसको प्रिजर्व करने का भी कार्य किया है, क्योंकि ये जितने भी गीत हैं ये तो हमारे गांव के गीत हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स मतलब हमारे जो पूर्वज है वहाँ से गीत आ रहे हैं, इसका निर्माण जो हुआ है कई सौ साल पहले हुआ है, जितने भी संस्कार गीत हों या जो हम कजरी गाते हैं, जो चैती गाते हैं, खासकर बहुत सारे हमारे बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे भोजपुरी में आप भिखारी ठाकुर को देखेंगे या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मतलब हम लोग प्रिजर्व करते हैं, और जो लोग कलाकार जो गाते हैं उन सबको प्रिजर्वेशन का भी काम हम करते हैं, ताकि आगे की जो हमारा जो जनरेशन है उसको हम ये ट्रांसफ़र कर सकें।
0: गाने का जो स्क्रिप्ट हम लोग लेते थे तो सबसे पहले यही हम लोग बोलते थे कि पारंपरिक शब्दावली हो, पारंपरिक भाषा का ही गाना आप लोग लाइए। बहुत सारे लड़के लोग थे, लोकगीत पास हो गए, बी ग्रेड पास हो गए, अपने से गाना बना दिए, अब बना के उसमें हर तरह का शब्द उब्द भर के और गा के उसका टोन कोई भी फिल्मी टोन में उसको गा दिए, लेकिन उसको हम लोग वर्जित मानते थे
1: जी।
0: अगर आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर वो गाना खत्म हो गया तो वो गाना अगर चल रहा है तो उसको बंद कर देंगे रिकॉर्डिंग, मतलब मेल्ट्रॉन से उसको हटा देंगे कि भाई आप दूसरा गाना गाइए। आप पारंपरिक गाना को चुनिए, जो आपके बड़े बुजुर्ग लोग जो गाना बनाए हैं, जो गाते थे, जिस स्टाइल में गाते थे, उसको आप लोग कीजिए
1: जी, जी,
0: उस तरह से हम लोग चलाते थे।
1: और जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत में यहाँ पे आपके समय में और क्या क्या कार्य होते हुए हैं?
0: देखिए, शास्त्रीय संगीत में तो पहले कोई उसका स्क्रिप्ट होता नहीं है
1: जी जी,
0: और उसमें जो है किसी भी राग का अगर वो शुरुआत हुआ
1: जी
0: तो शुरू में पहले मूड बनता है, उसके बाद फिर मूड में अपना आलापचारी अपना किए, आलापचारी उरी करने के बाद, हाँ, क्लासिकल में भी दो विधा है
1: जी,
0: शास्त्रीय संगीत में भी दो विधा है, एक है ख्याल अंग और एक है ध्रुपद अंग
1: जी।
0: तो ख्याल अंग में जो होता है उसमें जो है यहाँ ख्याल अंग का ही ज़्यादा हम लोग प्रयोग करते थे, तो उसमें जो है थोड़ा आलाप होता है, आलाप होने के बाद बड़ा ख्याल का प्रयोग किया जाता है, बड़ा ख्याल जो होता है बहुत स्लो गति में उसको गाया जाता है, और जितना भी शास्त्रीय संगीत का जो भी गाना है और उसका जो भाषा है वो ब्रज भाषा, इसको कृष्ण के ही ऊपर में, कृष्ण लीला के ऊपर में ही जो है ज़्यादा ये गाना हम लोग का शास्त्रीय संगीत में है। तो ख्याल होता था, बड़ा ख्याल हुआ, उसमें थोड़ा तान उन लोग किए, आलाप किए, स्वर विस्तार किए, फिर छोटा ख्याल लाए, छोटा ख्याल में जो है गाए अपना, तो जिनका रियाज होता है, जो कि बहुत बढ़िया गाते हैं, तो वो छोटा ख्याल में वो रियाज जो है चमकता है
1: जी।
0: चमकने का मतलब है कि हम जो इतना मेहनत किए हैं तो वो साफ क्लियर एकदम तान में आ रहा है, स्पीड में भी लोग तान कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, हो रहा है। तो अब तो ऐसा होता था बड़ा ख्याल छोटा ख्याल लोग गा लेते थे गाने के बाद, तो फिर जो है तराना, तराना भी जो है ना वो मतलब फारसी भाषा में है, वो देम दन दे ना दे दे ना दे दोम दन न दे दे देम ना दे दानी दानी दानी ओ दानी दानी दा दानी दानी दन दे ना दे ना दन दे ना दे दे दोम द, ये अरबी भाषा, फारसी भाषा जो है ये भाषा में जो है लोग गाते थे। तो इसमें जो है जुबान और जीभ का काम इतना ज़्यादा, इस तरह से मतलब जो है वो जवान, और ये तराना थोड़ा कठिन है
1: जी,
0: लेकिन इसको भी लोग जो आर्टिस्ट हैं, जो मंझे हुए कलाकार हैं, वो तराना भी गाते थे
1: जी जी जी,
0: ये भी होता था तराना में। लेकिन और ध्रुपद धमार का अंग जो है वो तो पखावज और गाना, ये दोनों का एक तरह से युद्ध होता है
1: जी,
0: लड़ंत भिड़ंत होता
1: जी,
0: है
1: जी, स्टेजों तो पे भी देखने को मिलता
0: हाँ,
1: है कई बार।
0: तो वो ध्रुपद धमार घराना जो होता है ना, अभी भी है, मधुबनी में है, दरभंगा में है, ये सब जगह, जयनगर में, तो ये सब जगह में अभी भी ध्रुपद धमार की शैली है। रामचतुर मलिक
1: जी,
0: पद्मश्री अवार्ड, सिया राम तिवारी होइए गए, विदुर मलिक हुए, तो ये लोग सबको पद्मश्री मिला हुआ है, और ये लोग दिग्गज कलाकार थे, अब तो सब स्वर्गवास हो गए, लेकिन इन लोगों की पीढ़ी अभी तक चली आ रही है
1: जी। तो आप ग्रेड ए आर्टिस्ट हैं सुगम संगीत के भी, और सुगम संगीत में काफ़ी सारे आपने गायन भी किए हैं, इवन

0: वंदना की बात करें या फिर और जो नॉर्मल जो गीत वगैरह है वो
1: वंदना,
0: सभी गए
1: हाँ
0: हैं, तो इन
1: वंदना
0: सब के
1: होता
0: बारे
1: था।
0: में भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं, और ये भी बताएं कि सुगम संगीत का मतलब जो स्ट्रक्चर जो समय क्या क्या हुआ करता था और अभी में क्या क्या है।
1: सुगम संगीत में असल है कि भजन वगैरह जो होता है या गजल होता है,
0: जी
1: तो ये सब जो है गीत गजल भजन ये तीनों में हम ए ग्रेड हैं। तो ये जो है गजल तो किसी भी शायर लोगों का जो है लिया जाता था, तो उस शायर लोगों का गजल को लेकर के उसको फिर कंपोज हम लोग धुन में बनाते थे, वह गा फिर उसको सजा के उसको गाते थे। भजन में भी जो है सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं, नानक साहब हैं, बिंदु जी हैं, बहुत सारे लोग हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: तुलसीदास जी, तो इन लोगों के भजन संग्रह से भजन को हम लोग ले करके उसका धुन बना करके उसको हम लोग गाते थे। तो उसमें अब जो कलाकार हैं तो उसको सजाएंगे,
0: जी
1: मूर्ति तो बन गई
0: जी जी
1: है, मूर्तिकार मूर्ति बना दिए,
0: जी
1: अब उसमें जो है भाव कहाँ बनाना है, आँख की पुतली कहाँ बनाना है, लिपस्टिक कहाँ लगाना, ये सब तो सजावट जो होता है वो जो बड़े बड़े कलाकार होते थे उसको खूब सजाते थे। हम लोग भी कई एक ठो मंच पर ऐसे, हम तो चूंकि शहर में हैं हर जगह प्रोग्राम वोग्राम करते रहते हैं, तो भजन का गजल का ये सब का कार्यक्रम होता रहता है। अभी गोरखपुर दूरदर्शन से भी जो है हुआ मेरा सुगम संगीत का हुआ, हम अपना कंपोजिशन ही गाए,
0: जी
1: गजल में भी गाए भजन में भी गाए, हम किसी का नकल नहीं चाहते हैं, नकल नहीं गाते हैं, हम
0: जी
1: अपने कंपोजिशन को गाते हैं, तो सब होता रहता है, यहाँ भी गाते रहते हैं। हाँ ये
0: और
1: भजन तो मेरा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, काहे

0: ये भजन भी जो है, ये
1: जी
0: सबका कंपोज अपना सब करते रहते हैं और गाते रहते हैं,
1: जी
0: चलता रहता
1: तो
0: है।
1: आपकी सेवानिवृत्ति 2014 में हो गई और उसके बाद अभी 2026 है, 12 वर्ष बीत गए, फिर भी आप संगीत से इतने जुड़े हुए हैं, तो इस दौरान आप क्या-क्या करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए और क्या-क्या करें?
0: कलाकार कभी जल्दी जो है बूढ़ा नहीं होता है,
1: जी
0: इसलिए बूढ़ा नहीं होता है कि हमेशा वो चिंतन में अपने संगीत के ही धुन में ही बना रहता है, तो दूसरा कोई चिंता उसको नहीं भाता है।
1: जी
0: असल में हम लोग भी, हम भी जो हैं ऐसे तो बाहर का कार्यक्रम बहुत करते रहते हैं, प्रोग्राम होता रहता है, जहाँ से भी बुलाहट आई गए वहाँ कार्यक्रम दिए। वैसे हम यहाँ शारदा संगीत सदन चलाते हैं,
1: जी
0: संगीत विद्यालय मेरे पिताजी का स्थापना किया हुआ है। मेरे पिताजी भी जो थे पंडित स्वर्गीय केदारनाथ मिश्र जी,
1: जी
0: तो वो टॉप ग्रेड के आर्टिस्ट थे,
1: जी
0: लेकिन वो उनके मन में क्या आया कि हम तो टॉप ग्रेड के हैं, हम तो गा रहे हैं, जब हम मर जाएंगे तो फिर कौन कहाँ प्रचार प्रसार। तो वो संकल्प ले लिए कि नहीं, अब हम जो है शहर में जो है हर बच्चे बच्चे को संगीत सिखाएंगे, जो
1: जी
0: गार्जियन जो मतलब संगीत से जुड़े हुए होंगे उनके बच्चे को हम संगीत सिखाएंगे। मैं हम यह चाहते हैं कि घर घर में हारमोनियम तबला का आवाज़ सुनाई दे प्रैक्टिस में।
1: जी
0: तो उसी उद्देश्य से शारदा संगीत सदन की स्थापना किए पिताजी। तो पिताजी के स्थापना काल में जो है वो चलता रहा 1955 में,
1: जी
0: तब से संगीत मतलब बच्चों को संगीत सिखा रहे हैं। लड़के लड़कियां प्रयाग संगीत समिति से परीक्षा होती है इसकी, उसका डिग्री भी मिलता है। आज शारदा संगीत सदन में डिग्री के बदौलत आज 16-17 लड़के शिष्य लोग आज
1: जी
0: बिहार सरकार में संगीत शिक्षक के पद पर
1: जी
0: आ गए। और पिताजी के पुण्यतिथि पर हम जो है 14 साल पूर्ण रात्रि का संगीत सम्मेलन किया,
1: जी
0: पूर्ण रात्रि का। उसमें सारे विदेशों के कलाकारों को, रोशेला फेनेल्ली को बुलाया जो कि इटालियन लड़की थी डांस में, उसको भी हम बुलाए, और सारे जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं जो कि 5 लाख 6 लाख रुपए लेने वाले कलाकार एक सिटिंग का, उन लोगों को हम बुलाए, और अनूप जलोटा साहब को बुलाया। यहाँ
1: जी
0: यहाँ जो है शारदा संगीत सदन का 25वां वर्ष हुआ, तो उसमें अनूप जलोटा, सितारा देवी, बेगम अख्तर, बिस्मिल्ला खां, कौन कलाकार ऐसे नहीं जिनको नहीं बुलाया गया। तो ताकि संगीत का प्रचार, और अभी भी शारदा संगीत सदन को चलाते हैं, वहाँ लड़कों का क्लास होता है, लड़कियों का क्लास होता है, वहाँ शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत सिखाते हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है,
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि कलाकार कभी मरता नहीं
0: मरता
1: है,
0: नहीं।
1: कलाकार हमेशा जिंदा रहता है, और
0: हाँ
1: कलाकार कला है जो उसको हमेशा जिंदा रखती है।
0: हाँ
1: और आपके जो अनुभव, और भी कुछ ऐसा जो आप हमारे श्रोताओं को अपने अनुभव बताना चाहें?
0: देखिए, वैसे तो विदेशों का अनुभव भी है कुछ हमारे पास,
1: जी लेकिन
0: विदेश।
1: आकाशवाणी में जो आपने सेवा दी उस दौरान।
0: अच्छा, आकाशवाणी में, आकाशवाणी में तो यहाँ पर जो है हम लोग संगीत को जो है जितने भी कलाकार लोग थे उन लोगों का हम कार्यक्रम जो करते थे, तो हम सबको ले जा करके, अच्छा कार्यक्रम होता था, हम सबको मिठाई खिलाते थे, हम खुश होते हैं। इसलिए होता था कि कलाकार, अरे नाहर साहब जो है इतना मेरे लिए कर रहे हैं, तो हम उनके लिए कुछ अच्छा चीज़ लेके चलें, प्रोग्राम करें, ऐसा करें, ये एक ठो होता है। बाहर से जो भी कलाकार आते थे उन लोगों का आतिथ्य हम लोग बहुत बढ़िया से निभाते थे, और उनकी रिकॉर्डिंग उडिंग होती थी। यहाँ शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोकगीत, तीनों को हम बराबर लेकर के चलते थे।
1: जी
0: यानी आज सुगम संगीत का रिकॉर्डिंग है तो कल लोकगीत का होगा, परसों शास्त्रीय संगीत का, इस तरह से रिकॉर्डिंग हम लोग करते थे, और दिन दिन भर रिकॉर्डिंग चलती रहती थी।
1: जी और जैसे आपके समय में और अभी के समय में कलाकारों की बात की जाए तो भागलपुर में कलाकार हैं, मुंगेर में भी कलाकार हैं, और पूर्णिया जो इलाका है उस इलाका, और कहाँ कहाँ मतलब कि जो कलाकार जो संगीत कला के प्रति इनका ज़्यादा रुझान है और मतलब इसमें अपना जो 100% देते हैं, मतलब जहाँ पे प्रतिभा ज़्यादा है
0: हाँ,
1: इसमें
0: कहीं
1: इस।
0: भी प्रोग्राम अगर होता है, तो जैसे पूर्णिया में कार्यक्रम हुआ हमारा, वो पूर्णिया प्रशासन की ओर से मेरा कार्यक्रम रखा गया था, तो पूर्णिया मतलब जयंती मनाया गया था, कुछ ऐसा ही था, तो प्रशासन की तरफ से तो हम कहा कि भाई हम यहाँ से कलाकार को नहीं ले जाएंगे, आप पूर्णिया के ही कलाकारों को दीजिए बजाने वाले। तो हमसे पूछा गया तो हम बताए, उनका नाम सब बताए कि आप इनको तबला में इनको बुक कीजिए, ऑर्गन में इनको बुक कीजिए, पैड में इनको बुक कीजिए, गिटार में इनको बुक कीजिए। तो उन लोगों को प्रशासन की तरफ से उन लोगों को पेमेंट हुआ। कहीं भी हम जाते हैं, अब हम पूरे टीम को लेकर के जाएंगे, तो फिर जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो कराने वाले हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा खर्च पड़ जाएगा। तो आप अपने शहर में अपने ही कलाकारों को बुक कर लीजिए। तो इसलिए इसे ऐसे चलता रहता है। और कलाकार वैसे भी कभी मरते नहीं हैं, कलाकार जो भी होते हैं कार्यक्रम अपना देते हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, नहीं होता है तो चार बच्चे को ट्यूशन करके सिखाते हैं, उससे अर्जन होता है, पैसा होता है तो उससे अपना परिवार चलाते हैं
1: जी। और जहाँ तक बात आकाशवाणी की जाए तो आकाशवाणी ने मतलब जिस हिसाब से आपका अनुभव रहा है उसके बारे में आप हमको बताएं कि कलाकारों को मतलब प्लेटफॉर्म दिया और मतलब कलाकारों को मतलब आगे बढ़ाने में कितना योगदान दिया है।
0: उन लोगों को जो फीचर में हम बुलाते थे बराबर, फीचर में बराबर बुलाते थे, उनकी रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग

0: लोगों को हम बुलाते थे और फीचर वगैरह में जो है स्टेशन डायरेक्टर साहब से निवेदन करके हम लोग डबल बुकिंग भी दिलवा देते थे, हो जाता था, ताकि कलाकार लोग को अच्छा अर्न हो जाए। कंसर्ट में भी जो है जाते थे, जहाँ भी जाते थे तो कंसर्ट में उसके लिए पहले हम लोग रिहर्सल कर लेते थे। आप बहुत अच्छा आपका हो रहा है, ठीक है, आपको हम सेलेक्ट कर, आपका अच्छा नहीं हो रहा है तो भैया हम हाथ जोड़ते हैं, इस बार आप नहीं जाएंगे, सेकंड बार आप जाएंगे, इस तरह से कर करके कलाकार को चुने चुने हुए कलाकारों को ले जाते, तो कलाकार में भी सब प्रतिभा था।
1: जी,
0: सब
1: जी, जी। और संगीत रूपक के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
0: संगीत रूपक तो यहाँ इतना इतना बना, लेकिन सब तो मेल्ट्रॉन टेप में पड़ा हुआ है यहाँ। और संगीत रूपक में बहुत सारे जितने भी जैसी हुए, मोहम्मद मीर हुए, फिर प्रभु ऊंच को नीच बनाए, फिर
1: वसंत ऋतु पे,
0: वसंत ऋतु पर, वर्षा ऋतु पर, कजरी पर,
1: जी।
0: ये सब हम कहा ना कि यहाँ करीब 20-25 मेरा फीचर बना हुआ है और हर मौसम का बना है।
1: जी।
0: पहले वैसे थे अधिकारी लोग थे, नागदा ये लोग थे, तो लोग कहते थे कि भाई जो लेखक जो स्क्रिप्ट लिखते थे तो किन्हीं के ऊपर, किन्हीं की जीवनी पर, तो गुलाम मीर के ऊपर हुआ या मोहम्मद जायसी के ऊपर हुआ, इन लोगों के मतलब तरह से उन लोगों के जीवन शैली पर जो है बनता था, और ऐसा फीचर बनता था कि एकदम जैसे जस्ट लाइक फिल्म।
1: जी,
0: आप आंख से नहीं देख रहे हैं लेकिन कान से आपको एकदम फिल्म का मजा मिल रहा है। डायलॉग भी चल रहा है बीच बीच में, महिलाओं के द्वारा, जेंट्स के द्वारा डायलॉग भी चल रहा है और बीच बीच में म्यूजिक है, संगीत भी हो रहा है, जैसे फिल्म में होता है वैसा होता था।
1: जी जी,
0: बहुत लोग फीचर सुनने के लिए पहले तो गांव देहात में लोग, किसान लोग जो है क्या नाम है, ट्रांजिस्टर ये सब लेके खेत में चले जाते थे।
1: जी।
0: खेत में जा करके वहां पर सुनते थे लोकगीत, ग्राम जगत, ये सब तो सुगम संगीत खूब सुनते थे।
1: जी।
0: वहां लगा दिए हैं रेडियो और अपना कुदाल चला रहे हैं, हल चला रहे हैं और सुन रहे हैं गाना, समाचार, ये सब जो है बहुत इसका मतलब कि संगीत का बहुत ज्यादा।
1: जी जी जी। और भागलपुर आसपास में आज भी कई जो हमारे किसान बंधु हैं वो अभी भी रेडियो सुनते हैं।
0: हाँ?
1: जी, और जाते भी हैं। तो आप थे हमारे साथ शंकर मिश्र नाहर और म्यूजिक कंपोजर आकाशवाणी भागलपुर से सेवानिवृत्त, और यहीं पर उन्होंने आपने यहाँ सर्विस ज्वाइन की थी। आप ग्रेड ए श्रेणी में शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत दोनों में।
2: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG परीक्षा शुल्क वापसी की प्रक्रिया शुरू की। अभ्यर्थियों से पंजीकरण पोर्टल पर 27 मई तक मांगा बैंक डिटेल्स। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण दंड स्वरूप करने को बताया अनुचित। देवघर जिले के 2 शिक्षकों का तबादला आदेश किया रद्द। स्वास्थ्य विभाग विशेष तंबाकू नियंत्रण और जन जागरूकता अभियान करेगा शुरू। स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से किया जाएगा लागू। और झारखंड में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी। रांची समेत कई जिलों में आज हीट वेव चलने का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने या एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। इबोला वायरस के फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इस रोग का कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने आवेदन शुल्क वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी नीट यूजी 2026 के रजिस्ट्रेशन पोर्टल बैंक डिटेल्स भर सकते हैं। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि एक बार बैंक डिटेल्स जमा होने के बाद किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। बैंक डिटेल्स जमा करने की सुविधा 27 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर 27 मई से 11 जून तक विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक को लेकर पेश है।

0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास कार्यों को गति देने के लिए कल से विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। अलग अलग दिनों में होने वाली बैठकों के लिए अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को पत्र जारी किया है। माना जा रहा है कि बैठकों के जरिए सरकार सभी विभागों की जवाबदेही तय करेगी और जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। पहले दिन जल संसाधन और पेयजल विभाग के साथ वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: झारखंड हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण दंड के तौर पर नहीं किया जा सकता है। कल एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने देवघर जिले के दो शिक्षकों के तबादले के आदेश को निरस्त करते हुए मूल पदस्थापन पर बहाल रहने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि विभाग को शिक्षकों के खिलाफ कोई शिकायत है तो उन पर अलग से कार्रवाई की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग पूरे राज्य में विशेष तंबाकू नियंत्रण और जन जागरूकता अभियान चलाएगा। यह अभियान विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई से लेकर 26 जून तक चलेगा। हमारे रांची संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है।
2: स्वास्थ्य विभाग की ओर से झारखंड के सभी जिलों में लगभग एक माह तक चलाया जाने वाला विशेष तंबाकू नियंत्रण और जन जागरूकता अभियान विशेष होगा। इसके तहत स्कूलों और कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा और तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड भी लगाया जाएगा। रेलवे स्टेशन, न्यायालय और सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू निषेध संबंधी सूचना पट लगाए जाएंगे। कोटपा 2003 और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध कानून के तहत जिलों में विशेष छापामारी अभियान भी चलाया जाएगा। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: रांची के 36 केंद्रों पर आज यूपीएससी की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा शाम 7 बजे से 30 मिनट तक प्रभावी रहेगी। सभी केंद्रों में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि देश की बेटियां सशक्त और आत्मनिर्भर बनकर समाज और राष्ट्र का भविष्य बन रही हैं। उन्होंने शनिवार को लोहरदगा के प्राचीन गुरुकुल शांति आश्रम में आयोजित 7 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आर्य वीरांगना शिविर के समापन समारोह में यह बातें कही।
3: स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि देश के बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। अगर बच्चे स्कूल नहीं जा पाए तो स्कूल उनके दरवाजे पे आए। आज एकल विद्यालय के रूप में देश में लाखों लाख एकल विद्यालय उनके गांव के झोपड़पट्टी के सामने एकल स्कूल चल रहा है।
1: मंत्री ने बताया कि नई दिल्ली में 28 जून से 7 जुलाई तक आयोजित प्रशिक्षण शिविर में लोहरदगा की 80 बेटियां भाग लेगी। इन बेटियों को संसद भी दिखाया जाएगा। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में 49वें एकल ऑन व्हील्स के प्रथम बैच का कल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों और सेवा बस्तियों के बच्चों और महिलाओं तक डिजिटल शिक्षा पहुँचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अत्याधुनिक बस के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जाकर 3 माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड ने CSR के तहत आरोग्य मित्रा प्रोजेक्ट के माध्यम से धनबाद सदर अस्पताल को हेल्थ ATM और पोर्टेबल ECG मशीन उपलब्ध कराई है। आरोग्य मित्रा प्रोजेक्ट सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर अमित चौधरी ने बताया कि इसका उद्देश्य ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों तक त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है।
4: इस मशीन का उद्देश्य बेसिकली 45 प्लस पैरामीटर्स का इंस्टेंट डायग्नोसिस होता है। इसमें जैसे कि अपने बेसिक प्राइमरी लेवल का हेल्थ चेकअप है, हाइट, वेट, BMI पैरामीटर्स, ब्लड शुगर हो गया, हीमोग्लोबिन है, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, ये सारे टेस्ट इसके थ्रू हो जाते हैं।

0: सबसे बड़ा फायदा इस मशीन का ये है कि तुरंत ही इसके द्वारा रिपोर्ट निकल जाती है।
1: गिरिडीह सेंट्रल जेल में कल देर रात उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में दो दर्जन से अधिक अधिकारियों ने छापामारी की। छापेमारी में पुलिस को कोई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है या नहीं, इसकी सूचना अब तक नहीं दी गई है। गिरिडीह जेल में बड़े नक्सली और अपराधी बंद है। ग्रामीण विकास विभाग और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने रामगढ़ जिले में हर घर सुरक्षा अभियान के तहत विभिन्न प्रखंडों में सामाजिक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम किया गया। बैंक सखियों और सामुदायिक कैडरों ने केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रति लोगों को जागरूक किया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,75,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने आज राजधानी रांची में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार आज से अगले दो दिनों तक राजधानी रांची के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG परीक्षा शुल्क वापसी की प्रक्रिया शुरू की। अभ्यर्थियों से पंजीकरण पोर्टल पर 27 मई तक मांगा बैंक डिटेल्स। झारखंड हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण दंड स्वरूप करने को बताया अनुचित। देवघर जिले के 2 शिक्षकों का तबादला आदेश किया रद्द। स्वास्थ्य विभाग विशेष तंबाकू नियंत्रण और जन जागरूकता अभियान करेगा शुरू। स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध की सख्ती से किया जाएगा लागू। और झारखंड में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी। रांची समेत कई जिलों में आज हीट वेव चलने का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकरंग में सुनिए विवेकानंद ठाकुर के गाए लोकगीत। लेकिन उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा अंतराल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: AIR at 90.
1: लोकरंग कार्यक्रम के आरंभ में विवेकानंद ठाकुर की आवाज में आइए सुनते हैं देवी गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग, कलाकार थे विवेकानंद ठाकुर। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण।

अंग दर्पण कार्यक्रम सुनय वाला सब भाई बहन का गहरू के नमस्कार। श्रोता भाई बहन, हमरा सब के लेल ऊर्जा जे छे उ मूलभूत आवश्यकता छे। ऊर्जा विभिन्न रूपम छे, शक्ति जकरा कहे छो, हमरा सनी भोजन करै छे तो शरीर के ऊर्जा मिले छे, पेड़ पौधा के जे छे ऊर्जा जल से खनिज लवण से यानी धरती से ओकरा प्राप्त होय छे, जतय जीव जंतु छे कोनो कोनो प्रकार से भोजन करे छे ओकरा ऊर्जा मिले छे। लेकिन कुछ जे निर्जीव चीज छिके ओकरो ऊर्जा के जरूरत होय छे, तभी उ चलै छे। जेना कि जतय भी गाड़ी छे, मोटर छे, ओकरा सबके चलै लेली जे ऊर्जा के जरूरत होय छे, कोनो बिजली से चलै छे, कोनो पेट्रोल से चलै छे, कोनो डीजल से चलै छे, आरो भी प्रकार कई प्रकार के ऊर्जा होय छे। अपनो सनी खाना बनाय छे त हौ गैस से चलै छे, कोनो LPG गैस से चलै छे, कोनो CNG से, कोनो प्राकृतिक कई प्रकार के आरो व्यवस्था छे जेकरा से चलै छे। आज के युग में उद्योग, परिवहन, कृषि, शिक्षा आरो घरेलू कामों में ऊर्जा के व्यापक उपयोग होय रहलो छे। ऊर्जा के जे प्रमुख स्रोत छे ओकरा में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल यानी कि जल से जे ऊर्जा प्राप्त होय छे, सूर्य के प्रकाश आरो पवन सनी शामिल छे। एकरा में कोयला, पेट्रोलियम आरो प्राकृतिक गैस जेहनो जे स्रोत छे ऊर्जा के हौ सीमित मात्रा में उपलब्ध छे। एक आरो एक रहे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलो जाय छे। एकरो अत्यधिक उपयोग भविष्य के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर सके छे। यही लेली यह ऊर्जा संसाधन के बचत आरो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के प्रयोग करना बड्डी आवश्यक भए गेल छे। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उ ऊर्जा स्रोतों के कहलो जाय छे जे प्रकृति में सीमित यानी कि कम मात्रा में उपलब्ध छे आरो एक बेर प्रयोग होय गेला के बाद फेनु जल्दी से प्राप्त नहीं करलो जा सके छे। ओकरे हम सनी कहे छे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। एकरो निर्माण जे होय छे ना श्रोता बंधु, हौ बहुत बड्डी बड्डी दिनों में होय छे, मतलब कि लाखों बरस लगी जाय छे ओकरा बनय में। कोयला हो गेलौ, पेट्रोलियम हो गेलौ, प्राकृतिक गैस, डीजल आरो पेट्रोल, परमाणु ईंधन है सनी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण छिके। एकरो जो बेसी दोहन के मतलब भले कि हमरा जरूरत छे तनीटा कुछ प्रयोग करे के, लेकिन हमें बल नाव से बिना काम है के मोटरसाइकिल इन्ने उन्ने दौड़ाए रहल छे, पैदलो जहाँ जावा सके छे वहाँ कारस गेलिए, तो ओकरा में की होय छे कि बेसी हमरो पेट्रोल खर्च होय रहल छे, बेसी डीजल खर्च होय रहल छे, जकरो की जरूरत नहीं छे। अगर हौ उतनाटा बचतै तो हम ओकरा भविष्य के लिए संरक्षित राख पारबे, भवि आबे वाला जे निकट भविष्य के जे हमरो पीढ़ी छे ओकरा हम हौ सौंपा पारबे। तो अहि लिए कहलियौ कि दोहन यानी बेसी उपयोग या बिना काम के या अनावश्यक उपयोग हमरो पर्यावरण के नुकसान पहुँचा रहलो छे। एकरा से वायु प्रदूषण भी होय छे। जतना गाड़ी चलतै, जतना गाड़ी मोटर जतना चलते उतना ज़्यादा प्रदूषण होते, ई तो एकदम छे कि ओकरा से धुआं निकलबे करते आरो ओकरा से प्रदूषण होते। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन आरो जलवायु जेहनो समस्या जे परिवर्तन जेहनो समस्या तेजी से बढ़ी रहलो छे। अहि लेली अभी हर जगह छे कि भाई इलेक्ट्रिक वाहन के जे विद्युत से चार्ज होके चले वाला वाहन छे ओकरो प्रयोग करना चाहिए, या जे बैटरी से चले छे ओकरो प्रयोग ज्यादा करे के मतलब जोर देलो जा रहलो छे। और जत्ते ज्यादा धुआं होते गाड़ी से, जत्ते ज्यादा धुआं निकलते तो हो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथेन, कई प्रकार के गैस जे हानिकारक छे आरो अपनो वातावरण के गर्म करे छे, गर्म ही नहीं करे छे अत्यधिक गर्म करे छे। और जब अपनो वातावरण गर्म होते तो एकरा से की होय छे कि गर्मी तो बढ़ते छे, सबके नुकसान होय छे, मानव सहित तमाम जे जंतु जगत छे ओकरा नुकसान होय छे। एकरो साथ साथ जे ग्लेशियर छे यानी कि बर्फ छे, जे जल तीनों रूप में हमरा पास छे, ठोस, द्रव और गैस, ओकरा में जे सबसे बेसी छे वो जे ठोस रूप में जे पर्वत के रूप में छे हौ पिघलै छे,
और जते पिघले छे तो तते नुकसाने छे। यही लेली एकरा प्रयोग कम करना चाहिए। एकरा अंधाधुन उपयोग से ई संसाधन तेजी से कम भी भए रहल छे। कोयला आरो पेट्रोल के जरला से कार्बन डाइऑक्साइड आरो कुछ दोसरो हानिकारक गैस भी निकले छे। तापमान बढ़ला के कारण प्राकृतिक आपदा बढ़ी जाए छे। ईंधन जेना कि बाढ़ के समस्या आवे छे, और बाढ़ जब आवे छे तो कते समस्या होय छे। ईंधन के कीमत बढ़ला से आम जनता भी प्रभावित हो रहल छे, आरो ओकरा आर्थिक संकट भी झेल पड़े छे। अखनी देखो अमेरिका आरो ईरान इजराइल सनी में जे छे लगभग 3-4 महीना से युद्ध के स्थिति बनलो छे, युद्ध चली रहलो छे, जेकरा से कि भारत समेत दुनिया के ढेरी देश में एलपीजी गैस के समस्या उत्पन्न हो गेलो छे। यही ला ईंधन के बचत वर्तमान आरो भविष्य दोनों लेली आवश्यक छे। जो हम सब आय विवेकपूर्ण तरीका से ईंधन के उपयोग करबे तभी आवे वाला पीढ़ी के लिए पर्याप्त ईंधन उपलब्ध कराब सकबे। जीवन ये ईंधन के जे छे बचत से पर्यावरण संरक्षण होय छे, आर्थिक बचत होय छे, आरो ऊर्जा भी जे छे कि सुनिश्चित होय छे कि भाई हाँ कुछ बचल हाँ। भविष्य के ऊर्जा संकट के देखते हुए अपनो देश के जे हमरो अभी यशस्वी प्रधानमंत्री जी छे नरेंद्र मोदी जी आदरणीय हुनी भी अभी कुछ ही दिन पहले पूरा देशवासी से अपील करलके कि ऊर्जा बचाव, जितना संभव हुआ पारा उतना पब्लिक गाड़ी वाहन के प्रयोग करो, आरो जेना कि बस ट्रेन ऑटो टोटो ये सब के प्रयोग करो। वाहन सनी के नियमित रख रखाव से भी ईंधन के खपत कम हुए छे। अनावश्यक बिजली के प्रयोग नहीं करना चाहिए। जरूरत नहीं रहला पर पंखा बल्ब टीवी है सनी जे भी उपकरण छे बिजली से चले वाला ओकरा बंद रखना चाहिए। एलईडी बल्ब के प्रयोग करना चाहिए, एकरा से भी की होय छे कि ऊर्जा बचे छे। सौर ऊर्जा के उपयोग करना चाहिए, और एक है गाड़ी में जहाँ 2-4 लोग जावा सको जहाँ भी यात्रा करे से तो वहू से बचत होय छे। हमें सनी अनवीकरणीय ऊर्जा के जगह पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के जँ अपनेबे तो ओकर वो भी भविष्य के लिए बहुत अच्छा छे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, ई सब ई तरह जानकारी जे अनवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन के बचत के संबंध में अपना सनी के देलिए। और अब कार्यक्रम में बढ़े छे आगू, और एक सुनै छे सुंदर रंग शिव भजन।

0: बहुत ही बढ़िया। भोला हो तोय सुतले रहो, दुख हर भो तोय कहिया। हर भक्त के एक अलग अलग अपनो हिसाब से हुनी भगवान से बात करे छे। मनो के जे इच्छा होय छे, जे मनकामना होय छे, ओ प्रकट करे छे और खुली के भगवान से अपनो आराधना करे छे। तो बहुत ही बढ़िया है। शिव भजन के लिए कलाकार वासुकी प्रसाद यादव जी के बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम बढ़े छे आगू और एक सुने छे सुंदर रंग अंगिका कहानी।
1: अजान देखे सन्नो के नींद चक से टूटी गई। झट से खटिया से उठले और कोठी सानी में धरलो। बोढ़नी उठा कर एंगन बथान बोढ़ा लगले। सगरे बोढ़ा रो बाद बोढ़नी धरी खुरपी कोदरा लेकर खेतों तरफ सिधियाए गेले। होगरो खेत बीच बहिहारी में छेले। बीचों में सतगछिया आमी के बगीचा। हेकरो पहला एक गली टपेले पड़े छेले। अभी गली में लात धरल छे कि होकरो दशा देखी सन्नो के मन भिनभिनाए गेले। जिन्न तिन्न कूड़ा कचरा पसरलो, गोबर भिनाड़ी धरलो और बच्चा बुतरू के घिनेलो, गरतरो फेंकलो। इतने ने पेशाब टट्टी से रास्ता इतना घिना गेलो छे कि नाक न दिलो जाए। रास्ता के ई दशा देखी सन्नो के मन भिनकी उठले। एक बारगी कुहरी उठले। ई गली के लोग कहियो नहीं सुधरते। सब दिन यह रंग घिनेलो रहते। जिन्न तिन्न टट्टी पेशाब करता रहते और बीमारी का पसारता रहते। मतलब के केकरा समझावा। कुछ कहो तो उल्टा के करो रंग एहनो जवाब दे देता हूँ कि मुँहो रो बात मुँहे रही जेता हूँ। के अपनो मुँह खराब कर एहनो ख्याल ऐथे ओकरो मन खट्टा हो गेले। हिया कचोटा लगले। तैयो मन मसोसी नाको मुँहो में कपड़ा ठूसी उ आगू बढ़ी गेले। अभी ठामे दूर उ गेलो छले कि देखे छे गली के किनारी में देवाल थामी भिक्कू मड़र धोती उठाए ठरे ठर पेशाब करी रेलो छे। जे टगरी का बीच रस्ता में आवी गेलो छले। देखी का सन्नो तक कठुआ गेली। लाजो से मुड़ी घिरा लेलकी। सोचा लागली हद हो गेले। जब बुढ़े जवनका का जरियो धग धर्म नहीं रेले तब बच्चा बुतरू से की उम्मीद कर लो जाए। बच्चो त वह सीखते जे बुढ़वा जवनवा का जवनका का करता देखते। ई रंग में केना सुधरते गांव समाज और देश। बेचारी के मन कल्पित हो गेले। हिंचा होले कि ओहरी का चुपचाप निकली जाऊं। जब सभ्य का यह अच्छा लागे छे तो हमारा एक खराब लगला कैला से की फर्क पड़े वाला छे। फेनू हम भी कहना झंझट मोल लाऊं। हमारा की दरकार छे। तखनिये होकरा अपनो फर्ज याद अले। सभ्य यह रंग एक दूसरा से ओहरी का चलते केकरो से कोई मतलब नहीं रखते तो गांवो समाजों में मिल्लत केना रहते। ई रंग में तो गांव समाज भंक्ति नहीं जेते। ई सोची अपनो फर्ज बुझता हुआ सन्नो ने भिक्कू मड़रो का टोकी दिल के। देखो कक्का ई तो ठीक नहीं कर लो। तो ही बतावो ई तोरा अच्छा लागल हम। यही ठिया तो रहे छो और यही ठिया तो पेशाब कर लो करभो तो घर द्वार गंधे तो ने केना बर्दाश्त करे छो ई सब। सन्नो के ई रंग उल्हाना सुनी भिक्कू के करे जो एक बैगेट टहकी उठले। लागले हुकरा पर कोई लुत्ती फेंकी दिल रह। सुनते बुढ़वा उखड़ियत गेले। बेटी जात होकर बड़ो पुरानो से मुंह लगा छे। दुनियादारी के कत्तो समझ छो तोरा जे तू हमरा उपदेश दैले चलो छे। फिर हुकरा पर नजर कड़ा करते बोले तो कहे छे गली में पेशाब नहीं करो तो की घर है अंगना में।

0: करी लिए हमें घिने लग नहीं घिनाए छे एकरम बेजाय की छे हाँ जो साफ सुथरा जगह पर पेशाब करो तब तो बोले पड़े छे फिर तू हमरे कहने कहवे आरु सभ्य तक करे छे ओकरा कहने नहीं बोले छे सबका बोले तब न जानियो कहता कहता बुढ़वा तिरसी उठले कुछ पल लेली सन्नो सगदम हो गेली फेनु में हुनका समझेता हुआ कहल के रास्ता छकेन कक्का रास्ता घिनेलो रहतो तो फेनु केना चलबो अच्छा ई बताओ ई गली घिनेले केना आपने आप तक घिनाए नहीं गेले शुरू शुरू में तो यो साफे चले तो रह सबने घिनेलो अपना का घसीटता जानी भिक्कू फेनु तिल मिलाए उठले कहन छो सन्नो तो हमरा बीचो में नहीं घसीटे अच्छा नहीं हो तो खाली हमरे कहने सने छे कहता कहता बुढ़वा के मुंह से फेन निकले लागले जेकरा झट गमछा से पोछी लेल के खाली तोरे नहीं कहलियो सबका कह लिए आरु फेनु तोरा नहीं कहब तो केकरा कहवे तोरा तो नजरी से देखी ले लियो कहता कहता सनुओ की बोली कर्रो हो गेले मतर भिक्कू मड़र कहाँ दम मारे वाले छले तना बोली पड़े तब बैठली रही न यही धसना गिरा कर देखता रही सांझे सांझ के पेशाब करे छे आरु के टट्टी तब सन्नो ने मुंह घुमचा कर कहल की आरु हमरा को काम छे यह एक ठो काम बचलो छे बैठी के पहरा दो तब फेनु कथी ले चपर चपर करबो लाट गवर्नर बने लेली तब बने लाट गवर्नर बहुते नाम हो तो कड़ा नजर से घूरता भिक्कू मर्र सन्नो पर कटाक्ष कर लेके को काम धंधा नहीं मिले छे तो करते कि जिन्ना तिन्ना बैठी का पंचायती करते जकरा तेकरा आगो बकर बकर करते अरे छुच्छे सान जमेते नंबरी कहलेते कना अब तोरा के ना बुझाइयो कुछ बुझेल चे थे नहीं छो बस एक हूट धरी लेला छो सन्नो ने समझा के कोशिश कर लके तो की समझेबे तोरे बुद्धि समझ जिये मरे नहीं छे हमरो अकल छे हमरा ज्यादा समझा रे कोशिश नहीं करे बुझले कहता कहता बुढ़वा अपनो घरों दी सीधे ले मतर जैता जैता सन्नो का एक करो चुनौती दे दिल के हम सब घिनैये दिलिए तो जरा साफ करी दिखा दे तब बुझियो खाली गाले बजेला से नहीं हो भिक्कू मड़र त घोर सीधिया गेले मतर सन्नो के ईरंग के चुनौती दे कर होगरों मनो में खलबली मचाए दिल के रोइया रोइया भबकी उठले दिल खदबदावा लगले तखनिये में होकरो चुनौती का कबूल करता करो रंग फैसला करी लेल के हाँ ई गली का साफ करी दिखाए देवे आज जनानी कत्ता समझदार और ताकतवर छे आज जनानी का कमजोर नहीं समझो बहुते कुवत छे होकरा अंदर फेनु में मोने मोन होकरा धौसाए के कहल के तब देखबे हम के ई गली का घिनावे छे धरेला पर होकरो एको ओज नहीं रहते आरु फेनु मुहों नाकी में कपड़ा ठूसला धीरे धीरे बैहार सिधिया गेले सन्नो नारी शक्ति और विकास नामों के एक संगठन से जुड़लो छिले भिक्कू रो बात होकरो मनो में ईरंग गत्ती गेले कि वे गली रो सूरत बदले के ठानी लेल के फेनु की छिले संगठन से जुड़लो अपनो सब तो सखी का बुला लेल के और भिड़ी गेले गली साफ करे लेली को हाथों में खुरपी लेकर घास छिले छिले तो को कोदरा से कचरा उठाकर डलिया भरी छिले आरु को डलिया उठाई कर दूर ले जाए कर फेंके चले तनियोटा शरम संकोच ने कि कौना की सोचे छे कौना की कहे छे यह तो ओकरो लक्ष्य छे फेनु की सोची कर पाछू हटते घंटे दू घंटा में गली साफ सुथरा होकर चमका लागले देख भैया का देखी का आंख फाटी गले देखे वाला में भिकुओ मड़र छिले जे गुज गुज देखे तो छिले मतर कुछ बोले नहीं छिले बोलबो की करते करो रंग जवाब जे मिली गले उ दिन सन्नो के चेहरा पे जे सुकून और खुशी रो लकीर देखले ओकरो को जोड़े नहीं छले सन्नो के खिस्सो अजबे छे एक गरीब किसान रो बेटी खेती करे का गुजारा हो छले एकलौता भाई पिठी पर तीन तीन बहिन सन्नो बहिनी में सबसे बड़ी छले ओकरा पिठी पर आरजू और मिष्टा मतलब दुर्भाग्य कहलो जाए कि वो तीनों का माए बाबू के ज्यादा लाड़ दुलार नहीं मिले पड़ले अभी हौस समार ले चले कि जमीन जगहों के दुश्मनी में ओकरो बाबू का दुश्मन गोली मारी दिल के ओकरो माए रो माथा पर दुखों रो पहाड़ टूटी पड़ले बेचारी पति रो अकाल मौत बर्दाश्त नहीं करे पड़ल के और एनहो बीमार पड़ले कि साल घूरते वो दुनिया से विदा हो गए अब तो तीनों टूअर हो गए भाइयों चले तब बिहा होते अपनो अलग गृहस्थी बसा ले के छोड़ी दिल के तीनों का भाग भरोसो अब तीनों के ऊपर बड़का मुसीबत की खाते की पहनते, कौन काम करी गुजारा करते, मत ऐनो मुसीबतों में सन्नो न हिम्मत नहीं हार लके, वे सोची ललके मुसीबत है में इंसान रो पहचान हो छे, जब सगो भाई ने साथ नहीं दिल के तो दूसरा पर कत्ता भरोसो करवो, जे होते आप नहीं से करवे, केकरो आगू मोस्तोरो हाथ नहीं पसारवे, जब तक मुसीबत आना होते ऐते मतर हमू पाछू नहीं हटवे, ई ठानी का मैं दोनों बहन का भरोसो देता कहल के तो सब घबरावे न, हम छे नहीं हमारा रहता तो अपनों का टूअर टापर नहीं बुझियन, होकरो बाद भाई से अपनों हिस्सा बांटी कर खेती बाड़ी करे लगले, धीरे धीरे होकरो मेहनत रंग आलक है और गृहस्थी की गाड़ी बढ़िया से चल लगले, जखनी होकरो माय बाबू गुजरले तखनी तीनों बहन स्कूली में पढ़े चले, माय बाबू के गुजरला रो बाद कुछ समय तक पढ़ाई एकदम में रुकी गले, मतलब सन्नों के सूझबूझ और हिम्मत से फेनू सबके पढ़ाई शुरू हो गेले, हेकरा साथ खेती बाड़ी के कामों चलता रहले, खेतों में जब उकुदरा पारे तो दिखवैया के आंख फाटी जाए, लोगा दांतों तर अंगुरी दबाए ले, कुछ का होकरो बेबसी पर ममतो आबे चले तो कुछ दोषारोपण करे से बाज नहीं आबे, मतर सन्नो इस सब पर कोई ध्यान ही नहीं दे, के की कहे छे और की सोचे छे, होकरा पर बस कामों रो धुन सवार चले, होकरो साफे कहना चले कोई हमरा खाए ले नहीं दे छे जे हम होकरो तरवा तर रहबे, शुरू शुरू में तो पीठ पीछू लोगा होकरा बहुते कुछ कहल के, मतलब होकरो लगन और संकल्प देखी कभैया के मुंह अपने आप बंद हो गेले, वो अपनो धुन में लागलो रहले, सन्नो के मेहनत और सूझबूझ के ही नतीजा छले कि तीनों बहन बारी बारी से मैट्रिक पास करी गले, होकरो बादो पढ़ाई नहीं रुकले, सन्नो ने दोनों से साफ कही दिल के जत्त तोरा सबका पढ़ना छो पढ़ा, खर्चा में कमी नहीं हुआ देवो, फेनू की छले बहारंग दोनों बहन बारी बारी से कॉलेजों में नाम लिखा ले के, ई बीच सन्नो बच्चा सबका ट्यूशन पढ़ावा लगले, अपने दुआरी पर सबका घंगोरी का जुटावे और सबका बिठाए मनो से पढ़ावे, मौका मिलला पर वह दोनों बहन पढ़ाई ले भिड़ी जाए, इतना बढ़िया से पढ़ावे कि बच्चा वहाँ ला वहाँ जाए ले मार करे, थोड़े दिनों में बच्चा इतना हवा लगले कि अटौन नहीं हुआ लगले, बुझ दुआरी पर स्कूले खुली गले, एकरा से तीनों के मनोबल तो बढ़वे कर ले, साथ घरों के दिक्कतों कम हो गले, समय जैसे देर नहीं लगले, सन्नो ने दोनों बहनी का बीए कराए कर अपनों गोड़ों पर थारो करी दिल के, ई बीच सन्नो ने एक काम आरो शुरू करी दिल के, सिलाई कढ़ाई के जनानी के साया ब्लाउज सीए में होकरो जोड़ ने, हेकरो अलावा बच्चा रो फ्रॉक और पैजामो बढ़िया से सीए छले जे...
1: जी बहुत ही बढ़िया कहानी सुनल के, ये कहानी के लिए अभय कुमार भारती जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये कार्यक्रम के अब समय भी समाप्त हो छे, अपना सब दिए हमरा इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि शिक्षण कार्य में लापरवाही करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। ऐसे में अपने

जिम्मेदारियों से लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई, शौचालय, मिड डे मील, बेंच टेबल और एक्स्ट्रा क्लास की भी व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जांच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि नए नियमों के तहत ये केंद्र वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल और डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर की जांच भी शामिल है। इसका उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना, व्यवस्था में तकनीक के उपयोग और वैश्विक मानकों के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बढ़ावा देना है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आज पटना के 79 केंद्रों समेत राज्य के विभिन्न केंद्रों पर सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे शुरू हुई और पूर्वाहन 11:30 बजे समाप्त हो गई। दूसरी पाली की परीक्षा अपराहन 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। इस दौरान विभिन्न केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सेना की खुफिया एजेंसी और राज्य पुलिस की एसटीएफ टीम ने पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से जाली नोट का नेटवर्क चलाने वाले गिरोह के सरगना सुशील तिवारी उर्फ दया तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में जाली नोटों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सुशील तिवारी की गिरफ्तारी के लिए कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां लगातार काम कर रही थीं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के दक्षिणी भागों में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। अधिकतर स्थानों पर पारा 40 डिग्री के पार हो गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में लू चलने की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रदेश के दक्षिणी भागों में अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। इधर राज्य के उत्तरी भागों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आंधी, बारिश और वज्रपात की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। प्रतियोगिता में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया। लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हत्याकांड के पीड़ित को सहायता राशि का चेक प्रदान किया, साथ ही अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता राशि प्रदान की गई। अररिया जिला अंतर्गत झमटा गांव में परमान नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने की जांच शुरू कर दी गई है। पटना और पूर्णिया से विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर दरार वाले हिस्से की जांच की है। इधर जिले में पॉक्सो कानून को लेकर जागरूकता अभियान सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य चलाया जा रहा है। भागलपुर जिले में महात्मा गांधी के आगमन के 100 साल पूरे होने के अवसर पर 8 और 9 अगस्त को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर आज बैठक की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप

0: सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर तालीम मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि तदरीसी कामों में लापरवाही बरतने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटना में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए जनाब तिवारी ने कहा कि रियासत में तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए महकमा मुसलसल काम कर रहा है। ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई, बैतुलखला, मिड डे मील, बेंच और टेबल के साथ साथ इजाफी क्लासों का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। मरकज़ी हुकूमत वज़न और पैमाइश की जांच सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जांच मराकज GATC के रोल की तौसी करेगी। इसके लिए 2013 के जाब्ता में तरमीम की गई है। वजारत उमूर सारफीन ने कहा कि नए जाब्तों के तहत ये मरकज़ वज़न और पैमाइश के 23 ज़ुमरों की तस्दीक कर सकेगी। इनमें पेट्रोल और डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर की जांच भी शामिल है। इसका मकसद व्यापार को शफाफ बनाना, निज़ाम में तकनीक के इस्तेमाल और आलमी मेयार के मुताबिक खुद इन्हसार भारत के अज़्म को फ़रोग देना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज इब्तदाई इम्तहान का आज पटना के 79 मराकज़ समेत रियासत के मुख्तलिफ मराकज़ पर कामयाबी के साथ इनाकाद किया जा रहा है। पहली नशस्त का इम्तहान सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ और 11:30 बजे दिन में ख़त्म हुआ। दूसरी नशस्त का इम्तहान दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। इस दौरान मुख्तलिफ मराकज़ पर तहफ़्फ़ुज़ के बेहतर इंतज़ाम किए गए हैं। आर्मी की खुफिया एजेंसी और रियासती पुलिस की STF टीम ने मशरक़ी चंपारण के मोतिहारी से जाली नोट का नेटवर्क चलाने वाले गिरोह के सरगना सुशील तिवारी उर्फ दया तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार जराइम पेशा पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में जाली नोटों से मुंसलिक कई मामले दर्ज हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट स्वर्ण प्रभात ने इसकी तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि सुशील तिवारी की गिरफ्तारी के लिए कई मरकजी और रियासती सतह की एजेंसियाँ लगातार काम कर रही थी। रियासत के जनूबी हिस्सों में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। बेशतर मकामात पर पारा 40 डिग्री को पार कर गया है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक रोहतास का डिहरी रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा, जहां का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद अजला में लू चलने का इम्कान जाहिर किया है। इसके साथ ही रियासत के जनूबी हिस्सों में ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। दूसरी तरफ रियासत के शुमाली हिस्सों में हवा का कम दबाव बनने की वजह से आंधी, बारिश और आसमानी बिजली गिरने के हालात बने हुए हैं। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार अजला में कुछ मकामात पर आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मुंबई में दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान कलकत्ता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। जीतने वाली टीमों को प्ले ऑफ में जगह मिलेगी। टूर्नामेंट में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया था। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सरबराह और मरकजी वजीर चिराग पासवान ने वैशाली ज़िला हेडक्वार्टर हाजीपुर में मुनक़दा एक प्रोग्राम के दौरान कत्ल के वाक़े के मुतासरीन को इमदादी रकम का चेक पेश किया। साथ ही दीगर फलाही स्कीमों के तहत भी इमदादी रकम फराहम की गई। अररिया ज़िला के तहत झमटा गांव में परमान नदी पर बने पुल में दरार पड़ने की जांच शुरू कर दी गई है। पटना और पूर्णिया के से माहिर इंजीनियरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर दरार वाले हिस्से की जांच की। दूसरी तरफ ज़िला में पॉक्सो कानून को लेकर बेदारी मुहिम महफूज बचपन महफूज मुस्तकबिल चलाई गई। भागलपुर ज़िला में महात्मा गांधी की आमद के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर 8 और 9 अगस्त को एक प्रोग्राम का इनाकाद किया जाएगा। इसके तैयारियों के सिलसिले में एक मीटिंग मुनक़द की गई। तकरीब का इनाकाद गांधी शांति प्रतिष्ठान की जानिब से किया जाएगा। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद 2:15 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे

0: हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान है। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि आधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
0: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
1: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है। ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बाद में दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
0: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शांसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई

0: ले अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल विनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत।

नमस्कार श्रोताओं, सभी सुनने वालों को मीनू का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, दिल की बातें कभी खतों में उतरती हैं, कभी चिट्ठियों की खुशबू बन जाती हैं, और अब तो ईमेल के जरिए दूरियों को भी बेहद करीब ले आती हैं। कोई अपनी पसंद का गीत भेजते हुए किसी अपने को याद करता है, तो कोई पुराने लम्हों को फिर से जीना चाहता है, तो कोई किसी खास के नाम एक प्यारा सा नगमा समर्पित करता है। हमारे पास आए हैं ऐसे ही ढेर सारे प्यार भरे खत, सजी हुई चिट्ठियां और दिल से लिखी गई ईमेल से लेकर हम हाजिर हैं संगीत की उस खूबसूरत महफिल के साथ, जहां हर गीत किसी की मुस्कान है, किसी की याद और किसी के दिल की धड़कन। तो आइए सुरों, एहसासों और यादों के इस प्यारे सफर की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं वो सदाबहार फिल्मी गीत जो सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंच जाते हैं। और इस पहले गीत के लिए जो फरमाइश की है आप सबों ने, उनके नाम हम आपको बता दें। आप हैं अहमदाबाद गुजरात

गुजरात से करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और प्रदीप कुमार मंडल। बसुआरा फुंसिया से आप हैं पवन सिंह, सदानंद सिंह, नितेश कुमार, सचिन कुमार और छोटू कुमार। प्रयागराज से आप हैं महेश सिन्हा। महादेव घाट अमरेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। पाकुड़ झारखंड से आप हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसु, तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। आप सबों के पसंद पर, आप सबों की फरमाइश पर लीजिए सुनिए फिल्म शारदा का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। आपके साथ साथ हम भी इन प्यारे प्यारे एहसासों में डूब जाते हैं, तो आइए सुनें।

दोस्तों, कभी कभी किसी के लिखे गए दो बोल ही दिल की पूरी कहानी कह जाते हैं। कुछ ऐसे ही एहसास लेकर हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे से खत आए हैं, जिनमें किसी एक ने तो अपने ख़ास के नाम इस खूबसूरत गीत की फरमाइश भेजी है। लिखा है, जब भी ये गीत सुनते हैं दिल अपने जज्बात खुद ब खुद दिल के जज्बात खुद ब खुद गुनगुनाने लगते हैं। तो आइए मोहब्बत के इन्हीं मीठे एहसासों को शुरू में महसूस करते हैं और सुनते हैं फिल्म राधा का संगम का ये गीत, जिसके लिए फरमाइश भेजी है आप सबों ने। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर, बक्सर, हरिद्वार से। और आप हैं अमरपुर पेंड्रा, छत्तीसगढ़ से, दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लक्ष्मी श्रीवास्तव। आप हैं शिवाजी चौक छत्तीसगढ़ से, अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और दिशा श्रीवास्तव। आप हैं, आपने ये फरमाइश भेजी है गुड़िया मौजी उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी। तो आइए सुनते हैं आप सबों के दिल के इस एहसास को गीतों के जरिए, जो आपने फरमाइश के रूप में हमें भेजी है, और महसूस करते हैं।

दोस्तों, हमारे पास एक बेहद प्यारा और दिल को छू जाने वाला खत आया है। खत लिखने वाले श्रोता ने बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा है कि जिंदगी में खुशियां दौलत से नहीं, किसी अपने के साथ से पूरी होती हैं। सच है दोस्तों, जब कोई हर हाल में साथ निभाने वाला मिल जाए तो फिर किसी और की कमी का एहसास ही नहीं होता, है ना? और उनके इस खूबसूरत एहसास के साथ भेजी गई है एक बहुत ही प्यारे से गीत की फरमाइश, जिसके बोल हर उस दिल की आवाज़ लगते हैं जिसने सच्चे साथ और मोहब्बत को महसूस किया है। तो आइए दोस्तों, खतों की महक

रोशन, डोलू, बैजानी चौबे टोला से आप हैं वर्षा, वंदना, कन्हैया, मेघा साहनी, निहाल, साक्षी, चीकू, पवन, कुल्लू मंडल, सोनू, नीतू, मीतू, इशु और आप हैं राजा। दिल्ली शहर मोरीगेट से आप हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतरेगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षनपुर से आप हैं विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से आप हैं दुर्गाराम साहू। तो आइए आप सबों की पसंद पर सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एहसास लिए ये गीत, आप भी सुनिए हमारे साथ।

दोस्तों, हमारे पास एक बेहद प्यारा और दिल को छू जाने वाला खत आया है। खत लिखने वाले श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीत सिर्फ सुर नहीं होते, वो किसी अपने की याद, किसी मीठी नोकझोंक और दिल की खूबसूरत एहसासों का आईना बन जाते हैं। उन्होंने अपने इस प्यारे से खत में उस खास इंसान का जिक्र भी किया है जिससे दूर होकर भी हर पल दिल की बातें जुड़ी रहती हैं, और शायद यही वजह है कि उन्होंने इस सदाबहार गीत की फरमाइश भेजी है जिसके बोल सुनते ही चेहरे पर मुस्कान और दिलों में मोहब्बत उतर आती है। तो आइए दोस्तों, खतों की खुशबू, यादों की नरमी और प्यार भरे जज्बातों के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा जो प्यार की मीठी सी शरारत और दिल की सच्ची बातों को बड़े प्यारे अंदाज में बयां करता है। और लेकिन उससे पहले जिन श्रोताओं ने और किसी खास श्रोता ने, उन सबके नाम बता दूं जिन्होंने इनकी फरमाइश की है। मुजाहिदपुर पूरब टोला से आप हैं मोहम्मद राजू खान, मोहम्मद जहांगीर खान, शबनम, जानम, खैरू भाई, रूबी बेगम, अरबाज खान, अयाज खान और महमूदा खातून। आप हैं बूढ़ानाथ रोड भागलपुर से गोपाल प्रसाद साह और इनके परिवार के सदस्य, ग्राम बाद से राजू, सुमन, हिमांशु, छोटी, बाबू, कंचन, डब्लू, बबली, फूलन और बबलू। पटेल नगर पंजाब से आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। तो आइए सुनते हैं आपके इस प्यारे से एहसास को जो गीतों की शक्ल में आप तक पहुंच रहा है, और साथ ही इस एहसास को हम भी एहसास करते हैं।

तो दोस्तों, सुरों, यादों और खूबसूरत एहसासों से सजी हमारी आज की ये महफिल या आज का ये हमारा कार्यक्रम यूं कहें कि अब यहीं समाप्त होने को है। उम्मीद है कि खतों, चिट्ठियों और ईमेल्स के जरिए भेजे गए आपके मनपसंद गीतों ने आपके दिलों को जरूर छुआ होगा। किसी की किसी धुन ने किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी होगी, तो किसी गीत ने पुरानी यादें ताज़ा की होंगी, किसी नगमे ने शायद किसी को किसी अपने की याद दिला दी होगी। दोस्तों, संगीत की यही खूबसूरती है कि ये बिना कुछ कहे दिल की बातें कह जाता है, दूरियों को करीब ले आता है और उदास पलों को भी मोहब्बत की उन पलों में भी मोहब्बत की मिठास खोल देता है। बस इसी प्यार और अपनेपन के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे कि अपने खत, प्यारी चिट्ठियों और दिल से लिखी हुई ईमेल्स हमें भेजते रहिए, ताकि गीतों और जज्बातों का ये खूबसूरत सिलसिला यूं ही चलता रहे। तो अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम, नए गीतों और नई फरमाइशों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मीनू को इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए असमिया भाषा में सामुदायिक गान शिक्षा पाठ।

0: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हैं ना असमिया भाषा गीत?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
1: माती रे।
0: ए माती रे मोरो मोते,
1: मोरो मोते।
0: माती के,
1: माती के
0: सुमीलो,
1: सुमीलो।
0: माती के सुमीलो, माती के सुमीलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माती ते,
1: ए माती
0: ते, ए माती ते जीवन, ए माती ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना। ये ए माती ते जीवन सोबी, जीवन
1: सोबी।
0: जी कैसे? ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना। तो जीवन सोबी आकी, आकी दोबारा आकी, आकी आकी मोसीलो,
1: मोसीलो।

0: पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आकाहार, ये जो ना आका आकाश श को बोलते वहां ह की तरह से, तो आकाश ये ख और ह के बीच में है, आका खार भी नहीं आका हार भी नहीं, आकाहार आकाहार लिखो, दूर आकाहार, रोहन कियोनु लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर ख नहीं बोलना ह, खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर, मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे,
1: लागे लागे
0: इसके आ गया है आहा आहा, फिर मातिर बुकुत, मातिर बुकुत, मौनोर मालोती, बूटोलो मौनोर मालोती बूटोलो, इसके बाद फिर वही आ जाएगा एई माती रे मोरो मोते, फिर दूसरा अंतरा है मोनोर कोरोनी रे, हुरोर हुरोर पापोरी रे, पापोरी रे आजी, इतना हो गया ना आगे हुकुमार, थापो नाहुजुवा, हुकुमार थापो नाहुजुवा, आगे लिखा है ना
1: जी,
0: हुंदोर खुदीनोर, खुदीनोर नहीं खनी ख, खुदीनोर
1: खुदीनोर,
0: नौतून
1: नौतून
0: दृष्टि
1: दृष्टि,
0: ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके, दृष्टि दृष्टि शनि सही बोलना, दृष्टि
1: दृष्टि,
0: कौनो
1: ना हुआ,
0: आगे ना जी, अच्छा ठीक है, अब गाना सिखाना शुरू करते हैं, स्वर दीजिए जरा।

अभी आप सुन रहे थे असमिया भाषा में सामुदायिक गान शिक्षा पाठ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अब से लेकर शाम 5 बजे तक मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। और शाम 5 बजे से इन्हीं मीटरों पर आप सुनेंगे आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम।

ये गीत आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और इस गीत की फरमाइश की हंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचेतन कड़वासरा, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और इसी गीत की फरमाइश की लीला बेन, स्मिता बेन, भारती, निधि, सेजल, मनाली ने। ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से। और अब आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग। आज के प्रोग्राम में सुनिए उषा सक्सेना का लिखा नाटक चंदन वृक्ष।

0: कीजिए, हमें भी बाहर जाना है।
1: मोगी भी कॉल लगने वाली है। जोड़ी।
2: हाय फ्रेंड, क्या चल रहा है?
1: फिलहाल तो चाय और सब होते चल रहे हैं। अब आप आ गए हैं तो
2: चल चलो तुम्हें उधर बैठते हैं खिड़की के पास।
3: वहाँ क्यों?
2: अरे भाई आज शनिवार की शाम है, कोई डिनर के लिए जाएगा, कोई लोकल गार्जियन के यहाँ, कोई पिक्चर जाएगा और कोई शॉपिंग के लिए।
4: तरह तरह की ड्रेसेस और साज सज्जा देखने को मिलेगी।
2: आया जी।
1: हाँ बिटिया,
2: हमारी चाय यही दे देंगे ना?
1: लाई है बिटिया,
2: चल बैठ। सुन,
3: अरे यार तुम्हारी बकबक से तो मेरा सिर दर्द करने लगता है।
2: तो ले चाय पी, एकदम गरम है।
4: अरे सुमी जरा रेशमा का जूड़ा तो देख।
3: कहाँ? ओहो जूड़ा, अरे ये तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है।
2: वो दिन वो
3: कहाँ?
4: तूने शायद शैम्पू किया है।
2: वाह कितने खूबसूरत बाल है।
3: एकदम वर्षा की घनघोर घटाओं की तरह।
2: सुमन सुमी वो देख, वो देख सुमन देखो
3: कहाँ।
2: अरे कितनी अच्छी लग रही हैं।
4: सच में
2: सफेद शरारा सूट और हवा में लहराती सफेद चुन्नी, क्या बात है।
3: अरे यार ऐसे लग रहा है जैसे कोई हंसनी धीरे धीरे तैरती हुई चली जा रही है।
2: मैं तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से। न कोई थ्रिल है न कोई एक्साइटमेंट
3: है। क्यों नहीं? अरे तुम तो हो थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता रूप, गोरी गोरी दुबली पतली प्यारी सी बालिका, जैसे
2: कटनार की गली, यही कहेगी ना। ले समोसा खा।
3: गरम गरम खिला रहे हो।
2: हाँ तो फ्रेंड मिस सुमी आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रही है। ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है।
1: चंदन?
2: वैसे ये भी चंदन जैसी है।
1: हाँ,
2: पर जरा सुदाब से बच कर है ना माय डियर फ्रेंड।
3: रीमा तू नहीं सुनेगी।
2: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना। तो शुरू हो जाइए मिस सुमी।
3: अरे यार समोसा खाने में
2: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा, कम ऑन।
3: और रीमा अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन, कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। कभी चाहता है इसे आंखों में आंज लूं, शब्दों में बांध लूं, मन में समेट लूं, कल्पना से संवार दूं कर्णु वंदन है वृक्ष चंदन।
2: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई, मैं तो चली। चलेगी सुमी?
3: आज नहीं, भैया आते होंगे उनका इंतजार करूंगी।
2: ओके बाय बाय फ्रेंड
1: बाय।

0: अरे नमस्ते भाई साहब।
1: अरे तू रीमा, लगता है संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं, नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई।
0: कबूतरी? What do you mean? You mean सुमी? देखिए भाई साहब, आप मेरी दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चों जैसी मासूम है, हंसती है तो सुरीले तार झंकृत होते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुहकती है, और चलती है तो
1: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा है।
0: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
1: अरे भाई गजगामनी कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
0: अच्छा भाई, तो भाई आप उसकी इतनी बातें क्यों करते हैं? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
1: चक्कर और उससे? अरे बाबा डर लगता है। आती है तो कहती है, डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है सुनिए। क्या करूं तुम्हारी दोस्त है, झेलना पड़ता है उसे। लिखती है, कितना मोहक कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कड़कण।
0: अच्छा और क्या कहती है?
1: कहती है, खिलती कलियां झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं, जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
0: और आप कहिए तो प्रपोज कर दूं?
1: नहीं रीमा, बहुत भोली है वो, अदखिली अनछुई उर्स में नहाई पावन कली की तरह, जिसकी पलकों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
0: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन होगी अपने भैया के साथ।
2: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आए हैं।
0: अरे भैया आप, घर में सब लोग ठीक तो हैं?

0: और डैडी की तबीयत?
1: बहुत अच्छी, घर में सब लोग अच्छी तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
0: तार वो तो नहीं मिला। खैर अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
1: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
0: रिजर्वेशन?
1: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
0: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
1: मैं तुम्हारी वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊंगा।
0: लेकिन भैया अचानक ये सब क्या हो रहा है, मैं इतने दिन क्लासेस कैसे मिस करूंगी? साफ बताओ ना भैया क्या बात है।
1: तो सच कह दूं? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
0: ब्याह?
1: इसी माह की 25 तारीख को तेरी शादी, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
0: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
1: ये मजाक नहीं सुनी, सच है। घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
0: वाह भैया, मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।
1: देख सुमी, परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आखरी का रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, 2 बार बाहर भी हुआ है।
0: ओ भैया,
1: सब ठीक ही है। और देख, रही तुझसे पूछने की बात, तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है, बड़े बूढ़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
0: हाँ, तभी तो आप भुगत रहे हैं। रईस घराने की लाडली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया और आपकी जिंदगी।
1: सुमी बस प्लीज, दुख तिरक मत छेड़, सब अपना मुकद्दर है। पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनके घर वालों से मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, और लड़के की बहन मंजू वो तो बहुत ही प्यारी। अच्छा सुन, मैं चलता हूँ, तू तैयार है ना?
0: सामान बांध लो, सब लाड साहब हैं, उसे बिना पूछे सब कुछ तय हो गया। कहते थे एमए कराएंगे और अब बीए भी नहीं कर पाऊंगी, लड़का इंजीनियर है। अरे तो कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना था। चल बेटा चढ़ जा सूली पर, एक खत तो लिख दूं रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेरने वाले हैं, मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को। पहले से आ जाना, नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुनील
2: विजया जी, चलिए भैया जी आ गए हैं।

0: सुमी देख तेरी बारात आ गई।
1: सुमी मैं भी तेरा दूल्हा देखा।
0: नहीं नहीं मुझे छोड़कर मत जाओ।
1: क्यों?
0: मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
2: अरे घबराहट कैसा? सभी का ब्याह होता है। अरे शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले, बिल्कुल अप्सरा लग रही है।
0: छोड़ मुझे रीमा, शीशे में भी मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे लिपटे हुए सांप दिखाई दे रहे हैं। मेरा क्या होगा रीमा?
2: सब बढ़िया होगा। अरे कुछ दिनों के लिए बस अपनी कविताएं भूल जा, अब तू एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है ना।
0: ठीक है।

0: मैं भी चलूं?
1: अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों? शोमी के आने तक रुक जाती बेटी।
0: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती, पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
1: अच्छा बेटी ये बताओ कि शोमी का दूल्हा तुम्हें कैसा लगा?
0: अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया वही मोती।
1: हाँ
0: सुमी खुश रहे, बस यही कामना है मेरी। अच्छा।

0: भाभी घूंघट हटा दीजिए और पीछे टिक कर बैठिए। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है, पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है ये। इसे कह दो मंजू इसे आईएस बनना है, आईएस समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है, है ना भाभी?
2: अरे दीदी ना जोड़ी की आती तार जोड़ी है।
0: आइए भाभी अब उधर बैठे, आइए भैया
2: तुमने चलो।
1: नहीं मैं आंगन में जा रहा हूँ भाभी, ताई जी और बुआ जी के पास।
0: मुबारक हो लल्ला जी।
3: अरे भैया दुल्हन है कि एकदम चांद का टुकड़ा,
2: किस्मत वाले हैं हमारे भी भैया।
0: सच्ची हो जी, चाय पी लीजिए भैया। थक गई मैं,
2: आप लोग
0: अरे आप लोग भी चाय पीजिए।
1: क्या कहा, मैं थक गया हूँ, इतनी जरूरी मीटिंग बुला रखी है मैंने, ऑफिस का सारा काम पड़ा है, ये कितनी सारी फाइलें निपटानी है और तुम कहती हो मैं थक गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़की को पिला दो जो मेरे कमरे में बैठी है।
0: वो भाभी है भैया, अभी परसों ही तो तुम्हारे साथ उनका ब्याह हुआ है, हम लोग ही तो उन्हें विदा करा कर लाए हैं। कितनी प्यारी है भाभी।
1: भाभी अच्छा मजाक है, किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। ये भी भाभी है, ये भी भाभी है। कितनी सारी भाभियां हैं, चारों तरफ भाभी भाभी भाभी। वाह लो लो चाय पियो, लो लो भाभी तुम भी पीनो, तुम भी पीनो, तुम भी पीनो।
3: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई, हे भगवान और बहू का क्या होगा? डॉक्टर ने कहा बुआरी के चांद की बहू आते ही ग्रहण लग गया, हाय क्या होगा।
4: अरे बंदी भी तो पागल के साथ।
1: क्या कहा, मैं पागल हूँ? पागलों की बारात है। मैं पागल, मेरा मनुआ पागल, पागल मेरी प्रीत रे। अरे ये मुझे क्या पहना दिया है, हार अंगूठी, ये लो ये लो ये लो, लूटो लूटो, पागल का ब्याह हुआ है, झूमो नाचो गाओ।
3: भैया भैया ये क्या कर रहे हो भैया? भाभी बुआ पकड़िए इन्हें, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ।
1: छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। देखो देखो मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं
5: हूँ, क्या
1: मैं पागल नहीं।
3: बाबूजी बाबूजी बाबूजी बाबूजी,
5: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
3: भैया को फिर दौरा पड़ा है बाबूजी, अनशन बोल रही हैं।
5: क्या कह रही,
3: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कपड़े फाड़ रही हैं, चाची बुआ साबुन ही पकड़े हुए हैं।
5: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ,

0: ट्रेजेडी। हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया उन्हें बहुत प्यार करती थी और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। 10 दिनों तक ना सोए और ना ही किसी से बात की। उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा। इलाज किया गया, ठीक हो गई, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
1: वहाँ ठीक रहते हैं?
0: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करते हैं।
1: और डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
0: उम्मीद दिलाते रहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक रहते हैं, तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
1: नहीं मंजू जी, अभी भूख नहीं।
0: तो लेटकर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ, शायद बाबूजी आ गए हैं।
1: वाह, कितनी सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का। रईस घराना, शानदार हवेली, 4-5 गाड़ियां, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति। अरे डैडी, इससे अच्छा होगा अगर आप मेरा गला घोट देती। जीते जी मुझे मारने की क्या जरूरत थी डैडी? रीमा, रीमा तो सच कहती थी, इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प लिपट गए हैं। बड़ा डर लग रहा है मुझे।
0: भाभी सो गई मेरी भाभी, कैसा निश्चल भूला चेहरा है, कुछ घंटों में ही कुंभला गया है। किस सम्मोहन ने बांध दिया है मुझे इस मासूम ने, मुझे ही कुछ करना होगा। लगता है बाबूजी आ गए हैं। भगवान, भैया ठीक हो गए हूँ। बाबूजी क्या हाल है भैया का?
2: क्या बताऊं बेटे, बहुत ही वायलेंट हो गया था।
0: है?
2: हाँ, अगर सावधानी ना बरती जाती तो शायद शायद वो नर्स का गला ही खोल देता।
0: बाबूजी,
2: हाँ, उसे इंजेक्शन देने जा रही थी और वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है मुझे?
0: पाप क्या होगा बाबूजी?
2: क्या कह सकता हूँ मैं, फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा।
0: नहीं।
2: राजेश बेटा।
3: जी बाबूजी।
2: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
0: लेकिन बाबूजी, भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी, भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया।
2: उस समय तो ठीक था बेटा, डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
0: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकती है और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
2: अरे बेटे की मोहब्बत को तुम लोग क्या समझोगे?
0: ठीक कह रहे हैं आप, उसके लिए एक क्या कई सुमी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
2: मंजू, मंजू,
0: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो?
2: चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप में आता है पढ़ देती है।
0: सच कह रही हूँ, इसलिए आप सहन नहीं कर सकती। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी मुझसे छोटी, उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
2: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं। सोचता हूं उसे उनके साथ भेज दूंगा, शायद उसका वहां मन बहल जाए। जब रितेश ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
0: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आराम कीजिए।
2: ठीक।
3: अरे आगे आप लोग, सुमी भी आई है। डिनर कैसा रहा? सुमी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? रितेश कहाँ है?
4: मम्मी प्लीज, ये सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगे। सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
3: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखूं तू? हाँ, अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर ले जा बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
4: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठिए।
1: चंदन
3: बेटा
1: छोड़ना,
3: सोया बेटा। क्या हो गया मेरी सुनी बेटी?
4: आए डॉक्टर साहब, देखिए कितनी तेज बुखार है।
3: हाँ देखिए डॉक्टर साहब कितना तेज बुखार है।
5: इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई इसको तो बुखार है। ऐसा करता हूँ मैं इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ, और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा, चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
3: ठीक है ठीक है,
5: और घबराने की कोई बात नहीं है।
3: ठीक है, जा बेटा दवाएं ले आ।
4: थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सुमी सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे।
3: ठीक है,
4: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आइए।
3: हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
4: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
3: धोखा? कैसा धोखा?
4: हाँ मम्मी धोखा, वो बात यह है कि रितेश को पागलपन के दौरे पड़ते
3: हैं।
4: कई महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा, वो तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
3: अच्छा,
4: उसके ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी, नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
3: नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा राकेश, मेरी मासूम बच्ची सुमी, ये क्या?
4: देखिए मम्मी, इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैंने और डैडी ने तय कर लिया।
3: क्या?
4: सुमी अब वहां नहीं जाएगी। रितेश वायलेंट हो जाता है ममा, तो जान पर भी हमला करता है। अब हम सुमी को नहीं खोना चाहते। अमित एक बार सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे, रीमा उसकी केयर करेगी, और रही ससुराल वालों की बात तो उनसे हम निपट लेंगे।
3: अच्छा।
4: अब ठीक है ममा, आप सुमी के पास जाइए।
3: ठीक है। वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ते हुए। वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का, लेकिन अंदर अंदर छटपटाती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था? भाग्य ने दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों चुना? अगर रीमा और डॉक्टर राजन न होते तो क्या होता मेरा? मैं तो टूट चुकी थी। मैंने उन्हें बदले में क्या दिया? रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प। आखिर आखिर वो क्यों तप रहे हैं एक टूटे हुए इंसान के लिए? मुझे
1: मुझे हर वक्त समझाते रहते हैं, पर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं?
6: अंदर आ सकता हूं?
1: ओ, आप आइए आइए, बैठिए ना। रीमा का कोई खत आया? कैसी है वो? और जीजा जी और बच्चे तो ठीक है ना?
6: सब ठीक है, तुम कैसी हो सुमी?
1: अच्छी हूँ। सुना है आप बाहर जाने वाले हैं?
6: यहाँ रहकर भी क्या करूंगा सुमी? एक बात कहूँ सुमी, जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है, हर लम्हा बोझिल हो जाता है। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो, तोड़ दो सुमी। आज आखिरी बार कह रहा हूं।
1: कैसे तोड़ दूं? ये दुनिया, ये समाज मुझे जीने देगा?
6: समाज, समाज, फिर वही समाज। क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घुटन, तनाव और दुख, तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें, और लोग भी जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हार गए हैं हम भी, क्या मिलेगा शिलाओं से टकराने से? चलता हूं, गुड बाय सुमी।
1: राजन!
6: सुमी
1: रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत थक गई हूं।
6: सुमी,
1: और राजन हो?
6: ओ सुमी, मैं जीत गया सुमी, मैं जीत गया। शायद चंदन वृक्ष से सांप हट गए हैं
1: और बिखर गई है मादक गंध।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थी उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। बेचारा

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं जिस धरती का बंजारा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
0: क्या? 1993 फिल्म साहित्य।

0: साहेबा।
1: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवां भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड 1।
2: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार बम्बई आ गए थे ऑलरेडी। तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है। यहाँ कोलीवाड़ा में जहाँ हम थे
3: जी,
2: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
3: साइन में,
2: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T-157
3: जी।
2: तो टी मतलब होता है टट्टी,
3: अरे
2: ओरिजिनल टट्टी थी वो।
3: ओह गॉड।
2: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई, होली आई, कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया, छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था
3: जी
2: कि फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टेड बाय रमेश तलवार, म्यूजिक बाय कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
3: जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है,
2: ना ना वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड में लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा था उनके दिल में, उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मैं मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सौतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सिलेक्ट हो गया और मद्रास एवीएम में जो है उसकी शूटिंग थी।
1: एपिसोड 2 में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
2: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तेफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
3: बिल्कुल।
2: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृषि साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे, एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आंख से, तो मैं काफी
3: आगे
2: चलूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनमोहन जी, यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई। उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रखो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी चार असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा पांचवा असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
3: जी।
2: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ।
3: Yes.
2: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म, अच्छी फिल्म देखी हुई है पांच आने में। फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला एक आने का टिकट, वहां जाता पांच आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, ठन्नी में
3: काम बन जाता था।
2: काम बन जाता।
3: कौन कौन सी फिल्में देखी
2: सब होगी? कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो मैंने देखी है। बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे, यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया इसको जबरदस्ती 5 बार से जोड़ कर कोने में बैठा सब आगे चले। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने
3: जावेद साहब ने,
2: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया बोलने के भाई एक प्रोजेक्ट है करेंगे आप? बोले जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए
3: हाँ
2: फिर बोलिए। और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं, आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा। मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
3: हाँ बिल्कुल
2: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
3: वो भी आपके दोस्त।
2: तो अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिंपल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी।
3: जी जी।
2: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में।
3: हाँ।
2: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है ये उनके जहन में था। और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त है। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था। खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग वही पुलिस और सिपाही। और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
1: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना।
2: करते करते 1 साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
3: बाप रे।
2: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में। और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में। और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
3: हाँ हाँ।
2: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म 1-1.5 साल लेट भी हो गई
3: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
2: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
3: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत याद
2: देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
3: बिल्कुल। और थी भी वो
2: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
3: बड़ी स्टार कास्ट,
2: अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े

0: रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे। नया न्यू कमर था राइटर,
0: जी जी जी
1: उन्हीं का नाम है, राइटर है, राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा अगर सागर सरदी कर ले। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्टेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
0: हाँ।
1: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव एक्टर

0: तो चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है। अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूँ जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबाना आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
1: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक।
0: खूबसूरत
1: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे। तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा बांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश जी कहूँ पूछ लूँ, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा। तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, अच्छा है प्ले तो बहुत अच्छा था। और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर का।
0: जी जी,
1: मैंने कहा ये जो इधर टेंटम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा, मैंने नाटक में नहीं होता।
0: जी जी,
1: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
0: जी,
1: नाटक में अमेरिका में बैठे तो मैं क्या करूँगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता है वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती हैं, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उस जगह मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल में मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने उसके।

0: चवन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का, और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर तेरा नाम मेरा नाम न्यू कॉमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला, ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको शूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? पहले जिया जी के पास पूछते हैं, अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहे हैं, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं अमित जी से भी बात कर लेती है, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज में। बोले सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया और उन्होंने कुछ कहा, ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे। मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे अपने, ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहें और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती हैं, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटें कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है। रिहर्सल हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो, जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सब ने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सब ने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उन्होंने रमेश जी आप ही करिए।
2: अरे वाह,
1: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था, ये आप ही करिए कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, करिए आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो मेरे से करनी शुरू हो गया और फिर हमें अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
2: वाह वाह वाह,
1: उन्होंने कहा रोल मेन जिया जी का लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में, आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतजार होता है, क्योंकि वो जज थ्रो आउट प्ले में और मेरा कभी कभी बीच में आता समय 3-4, तो सब ने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, आल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी, वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली। क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुँह मांगा दाम मिल, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, फिर डायरेक्टर को भी उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई। तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैं तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? प्ले करूँगा, जरूर करूँगा। कब करना चाहोगे? कौन सी है स्क्रिप्ट? सुनाओ। और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना, और वो प्ले अच्छा है, आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो ये चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना, इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गुरड़िया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट पर बाद में सुनाऊंगा। क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ।

बात जो भी मिशन प्रोड्यूसर हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जय जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जय जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। वो मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी, लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला। शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूँगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूँगा और पोइट लगूँगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए। लेकिन जो फिर तो उनके राइटर्स उस प्ले के, वो चाहते थे कि वो रोल करें खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूँगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले। शबाना जी को ये थोड़ा करूँगा कि अब आपके साथ ये करेंगे। तो उन्होंने फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, तो हम थे कि राइटर ने। ठीक है, शौकत भाभी ने अपना अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही हैं, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने कहा शबाना इस पे हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहें कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा, अच्छा बनेगा? मेरे को उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशों का मसीहा भी किया है हमने, और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए, जावेद साहब से कहिए लिखे। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोले मैं नहीं कहूँगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी? आप अपने ढंग से, आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनके उनकी स्क्रिप्ट को फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए। तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया, और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए, तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करनी पड़ती है, शबाना की और वो, तो आप किसी और भी, तो आप कमलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट रहे हैं, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेस और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिलके, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है शाम का, उसमें कैरेक्टर का नाम शाम है, तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना सुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती तो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी रात में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सचदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो साहब मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में, ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब, जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिगमिलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नज़दीक नज़दीक की है, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिश हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी, वो बन गया। जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली, वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला, और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया, रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता, बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है, और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
0: वाह वाह,
1: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है, और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कंवलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी हैं उसकी।
0: जी जी जी, काबुली वाला भी चल रहा है।
1: काबुली वाला अलग है, काबुली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमल राज की बेटी वो आई परीक्षित सानी के संग आई थी, उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा, वो करके मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीजें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और परीक्षित सानी से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज सानी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करनी, वो टाइम अलग था, अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है, तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी कबार कर
0: मैंने देखा है, क्यूट प्ले है वो।
1: हाँ, बहुत अच्छा। तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

0: स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है और उसका हमने एक वर्चुअल स्टेज पे क्या हो सकता है उतना करके जमा लिया अपना, और चलता है। लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हैना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबलीवाला लौट आया इन्हीं करेक्टर को लेके लिखा था, और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबलीवाला जो एक्टरों के साथ अच्छे, ये सोलो पढ़ती है काबलीवाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एक आध बात कर लिया, फिर लुबना सदीकी ने एक आध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो दिन बार मेरे साथ कर लो और स्टेज पे पढ़ो, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और ये उसके सारे बीज जो है काबलीवाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबलीवाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है, और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहां गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा हूं। तो वो पोर्शन हमने काबलीवाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका वो तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।

0: थी रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवां भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: धारा में आज
2: उजाले।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के ठीक 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सौरभ कुमार।

0: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी कार्यक्रम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप सभी अपने परिवार के साथ इस सुहानी शाम का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, मई का महीना अपने साथ तेज़ धूप और बढ़ती गर्मी लेकर आया है। सुबह से ही सूरज की तपिश लोगों को परेशान करती है। दोपहर होते ही गर्म हवाएं यानी लू वाली हवाएं चलने लगती है, जिससे सभी का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अधिक से अधिक पानी पीना, हल्के और सूती कपड़े पहनना तथा धूप में सिर को ढक कर घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, गर्मी केवल असुविधा ही नहीं बढ़ाती बल्कि हमारे पर्यावरण की स्थिति की ओर भी संकेत करती है। पेड़ों की लगातार कटाई और बढ़ता प्रदूषण तापमान को और अधिक बढ़ा रहा है। इसीलिए हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना होगा। एक छोटा सा पौधा लगाना भी आने वाले कल को बेहतर बना सकता है। अब समय है आज के कार्यक्रम की रूपरेखा जानने की। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रमंडल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के बारे में। उसके बाद होगा स्तंभ डेली ट्रिविया, साथ ही फिल्मी गीतों में सुनाएंगे आपको पुराने नगमे। और रविवार के खास स्तंभ आइए जाने संविधान में हम चर्चा करेंगे संविधान और महिलाओं के अधिकार के बारे में। और फिर अंत में समसामयिक की फन फैक्ट और समापन बातचीत के साथ संपन्न होगा हमारा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सीता और गीता का ये गाना।
1: अरे अरे ए ए ए

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: दोस्तों, आज की इस विशेष चर्चा में हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे के बारे में। यह दिवस वैश्विक स्तर पर हर साल मार्च महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों भारत में यह दिवस विशेष रूप से हर साल 24 मई यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। यह दिन उन देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। यह दिन इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का, जिनका जन्म 24 मई 1819 के साल में हुआ था, उनके जन्मदिन के भी याद में मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिवस उन देशों के बीच मित्रता, सहयोग, समानता और शांति का प्रतीक माना जाता है जो राष्ट्रमंडल संगठन के सदस्य हैं। इस संगठन में भारत सहित 50 से अधिक देश शामिल हैं। राष्ट्रमंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच शिक्षा, खेल, व्यापार, संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। भारत भी इस संगठन का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और समय समय पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। दोस्तों, राष्ट्रमंडल दिवस केवल एक औपचारिक अवसर नहीं बल्कि यह हमें एकता और सहयोग का संदेश देता है। आज के समय में जब दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, तब देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग बेहद आवश्यक हो गया है। युवाओं के लिए भी यह दिन प्रेरणादायक है क्योंकि यह हमें सिखाता है कि विविधताओं के बावजूद हम सब एक साथ मिलकर बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा, तकनीक, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में देशों के बीच आदान प्रदान युवाओं को नए अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रमंडल खेल भी इस संगठन की एक खास पहचान है, जहां विभिन्न देशों के खिलाड़ी खेल, भावना और भाईचारे का परिचय देते हैं। भारत ने भी इन खेलों में शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया है। तो आइए दोस्तों, इस राष्ट्रमंडल दिवस पर हम सभी एकता, शांति, सहयोग की भावना को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: दादी, कौन सा प्लांट है?
3: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
1: दोस्तों, अब बारी आती है अगले चर्चा की ओर बढ़ने की, जिसका विषय है अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2 मई 2024 को यह दिवस हर साल 24 मई को मनाने की आधिकारिक घोषणा की थी। इसका उद्देश्य दुनिया के लोगों को मारखोर नामक दुर्लभ वन्यजीव के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। मारखोर मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक जंगली बकरा है, जिसकी पहचान उसके लंबे और घुमावदार सींगों से होती है। मारखोर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में यह मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में देखा जाता है। बढ़ते शिकार, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक आवास के नष्ट होने के कारण इसकी संख्या लगातार कम होती गई। इसी चिंता को देखते हुए वन्यजीव संरक्षण के लिए कई प्रयास किए गए। दोस्तों, जैव विविधता हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी एक प्रजाति का अस्तित्व खतरे में पड़ता है तो इसका पूरा प्रभाव पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। इसीलिए वन्य जीवों की रक्षा करना केवल सरकार की ही नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। आज के युवा पर्यावरण संरक्षण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पेड़ लगाना, वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता रखना और लोगों को जागरूक करना छोटे छोटे कदम हैं जो भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस हमें यह संदेश देता है दोस्तों कि प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा करके ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और सुंदर पर्यावरण बना सकते हैं। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ स्तंभ चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अब सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म दूसरा आदमी का ये गाना।

दोस्तों, गीत के बाद अब बारी है हमारे दैनिक स्तंभ डेली ट्रिविया की, जिसमें हम आपसे आकाशवाणी संबंधित एक प्रश्न पूछेंगे, जिसमें आज का प्रश्न है, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। तब तक के लिए यूं ही बने रहिएगा अपनी रेडियो दोस्त मानसी के साथ। दोस्तों, आज रविवार के खास स्तंभ में पेश है आइए जाने संविधान को, जिसमें हमने विषय चुना है संविधान और महिलाओं के अधिकार। भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है। महिलाओं को भी संविधान में सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की बात कही गई है, जबकि अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर की गारंटी देता है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए समय समय पर कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा कानून, दहेज निषेध अधिनियम और बाल विवाह निषेध कानून महिलाओं के अधिकारों को मजबूत बनाते हैं। सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के माध्यम से भी महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित किया जा रहा है। दोस्तों, आज समाज में महिलाओं की स्थिति पहले की तुलना में काफ़ी बदल रही है। महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति, सेना और प्रशासन जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। मित्रों, वे न केवल अपने परिवार बल्कि देश की प्रगति में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। हालांकि आज भी कई स्थानों पर महिलाओं को भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है, इसलिए आवश्यक है कि हम संविधान में दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूक हों और महिलाओं के सम्मान तथा समानता को अपने व्यवहार में अपनाएं। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लें जहां हर महिला सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सम्मानित महसूस करे। इसी संदेश के साथ स्तंभ आइए जाने संविधान को यहीं विराम देते हैं और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

मित्रों, अंतराल के बाद सुनाते हैं आपको फिल्म संगीत किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आराधना।

तो दोस्तों, गीत के बाद बारी आती है दैनिक स्तंभ सम सामयिकी की। स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार पूर्वी क्षेत्र को नंबर 1 राज्य।

राज्य घोषित किया गया। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत भारत में कुल चीता की आबादी 53 हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा केंद्र सरकार को 2.86 लाख करोड़ का ऐतिहासिक लाभांश हस्तांतरण क्वाड, विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में बैठक और भारत इथोपिया के बीच WTO परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर शामिल हैं। IPL के दूसरे क्वालिफायर मैच में सनराइज हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल्स में जगह बनाई। आज के समसामयिक ज्ञान से बस इतना ही दोस्तों। मित्रों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने स्तंभ डेली ट्रिविया के अंतर्गत आकाशवाणी संबंधित एक प्रश्न पूछा था आपसे कि आकाशवाणी संगीत सम्मेलन किस वर्ष से शुरू हुआ था, जिसका सही जवाब है वर्ष 1954 से। दोस्तों, डेली ट्रिविया के बाद अब बारी आती है स्तंभ फन फैक्ट के अंतर्गत आकाशवाणी संबंधित एक रोचक जानकारी जानने की। क्या आपको पता है मित्रों, आकाशवाणी केवल भारत ही तक ही नहीं बल्कि विदेशों के लिए भी 11 भारतीय और 16 विदेशी भाषाओं में कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, जो दुनिया भर में भारत के दृष्टिकोण को पहुंचाता है। यह दुनिया के सबसे विविध प्रसारण संगठनों में से एक है, जो 23 भाषाओं और 179 से अधिक बोलियों में कार्यक्रम का प्रसारण करता है। आधुनिक समय में आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रसार भारती ऐप और यूट्यूब पर भी लाइव सुने जा सकते हैं। आज के लिए फन फैक्ट सेगमेंट में बस इतना ही। पेश है आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत, SP बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म एक दूजे के लिए से।

मित्रों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी का लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी। उम्मीद है कि आज का यह विशेष प्रस्तुतिकरण आपको जरूर पसंद आया होगा। आज के कार्यक्रम में हमने

रोचक विषयों पर चर्चा की, बढ़ती गर्मी और बदलते मौसम के प्रभावों से लेकर समाज और संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों तक हर विषय में हमने जीवन से जुड़े संदेश देने का प्रयास किया। साथ ही दोस्तों, आज के फिल्मी गीतों ने भी कार्यक्रम को बेहतरीन बना दिया। दोस्तों, जीवन में ज़रूरी होती है पॉजिटिव सोच। मित्रों, अगर आज के कार्यक्रम का कोई भी भाग आपको पसंद आया हो तो आप अपनी राय हमें पत्र, ईमेल या संदेश के माध्यम से भेज सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड नंबर 812001। हमारा ईमेल एड्रेस है phair@gmail.com। दोस्तों, बदलते समय के साथ हमें अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदार बनना होगा। छोटी छोटी आदतें जैसे पानी बचाना, पेड़ लगाना, दूसरों का सम्मान करना और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना हमारे भविष्य को और भी बेहतर बना सकता है। युवाओं की ऊर्जा और सोच ही देश को आगे बढ़ा सकती है। यदि युवा जागरूक और पॉजिटिव रहेंगे तो समाज में अच्छे बदलाव निश्चित रूप से आएंगे। इसलिए दोस्तों, हमेशा सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहिए। और अब दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो दोस्त मानसी को। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ खुशियां बांटते रहें। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात कुछ नई जानकारियों और बातों के साथ। तब तक के लिए शुभ संध्या और नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म बैंग बैंग से। इस गीत को गाया है ऐश किंग, शिल्पा राव, शेखर रवजियानी ने। इस गीत को लिखा है अन्विता दत्त ने और संगीत है विशाल और शेखर का।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: श्रोताओं कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म बर्फी का गीत। आवाज है निखिल पॉल जॉर्ज की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म एक विलन रिटर्न से। इस गीत को गाया है राघव चैतन्य ने, कुणाल वर्मा ने इसके बोल लिखे हैं, कौशिक गुड्डू का संगीत है।

Akashwadi at 90. श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज़ में फिल्म टाइगर जिंदा है का ये लोकप्रिय गीत।

इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में अब आइए जान लें आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद संध्या ठीक 6 बजे आप सुनेंगे आज कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकगीत में गायिका कविता सिन्हा की प्रस्तुति। आज संध्या 7:52 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार अभय कुमार सुमन की प्रस्तुति। 8 बजे रात्रि में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवार्षीय संगीत सभा में कलाकार पंडित हारा शंकर भट्टाचार्य से सितार वादन। प्रस्तुति है आकाशवाणी कोलकाता की। प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

अब कल के कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, कल प्रातः 5:48 पर आरंभ होगी हमारी कल की सभा। कल संध्या 5 बजे आप सुनेंगे राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2025 समारोह का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रातः 5:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलियान। 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। प्रातः 6:35 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में एक वार्ता सुनेंगे आप। विषय है एक्जिमा का होम्योपैथिक उपचार। वार्ताकार हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरित मानस गान। 7:00 से 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत आप सबसे पहले सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में डॉक्टर अजय राय की प्रस्तुति। तत्पश्चात 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संस्कृत वार्ता में एक वार्ता। विषय है साधुता की परिणति। वार्ताकार है ब्रजेश कुमार पाठक। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस दौरान आप जानेंगे कुछ जरूरी सूचनाएं जैसे रेल सूचना, मौसम सूचना, कल का इतिहास और कल के समाचार पत्रों की कुछ प्रमुख सुर्खियां।

प्रातः 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में गायक कलाकार चेतन कुमार चौबे की प्रस्तुति। 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर कार्यक्रम लोकगीत में कलाकार रेखा देवी की प्रस्तुति सुनेंगे आप। दिन में 11:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत की खास पेशकश गुलदस्ता। 12:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेंगे आप। 1:00 आप सुनेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में गायिका पूनम कुमारी की प्रस्तुति। 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन।

कल दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से, 3 आप सुनेंगे कार्यक्रम बांग्ला गान। श्रोताओं पुनः आपको बता दें, संध्या 5 कल आप सुनेंगे राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2025 समारोह का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, 6 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी, 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकगीत में गायक कलाकार विश्वनाथ ठाकुर के गाय लोकगीत, संध्या 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम सुल्लरी में गायक कलाकार अनिल कुमार आनंद की प्रस्तुति। रात्रि 8 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीकंधा, 8:15 पर आप सुनेंगे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, रात्रि 10 आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में कलाकार अमजद अली खान से सरोद वादन राग श्याम कल्याण और राग झिंझोटी में, और 10:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम को, कार्यक्रम है पसंद आपकी। कार्यक्रम विवरण में अभी आपने जाना आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी, प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को सोना का नमस्कार
1: और सबका गैरू का भी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार गैरू भाई, और बताइए क्या हाल समाचार है?
1: सब बढ़िया चली रहा छो, एकदम धीरे धीरे ठीक से चलिए रहा छे। बस खाली देखिए रहा छो सोना भाई, गर्मी कहना छो एकदम तीव्र रंग के।
0: वो तो है गैरू भाई, और ऐसे में हमें सावधानी भी बरतनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कभी बारिश है तो कभी धूप है। मौसम में आर्द्रता ऐसे में बढ़ जाती है और पसीना ज्यादा होने लगता है और लू भी ज्यादा लगने की संभावना बढ़ जाती है। शरीर में पानी का अभाव होने लगता है। ऐसे मौसम में नींबू पानी, आम पना, नमक चीनी पानी, फलों का रस, नारियल पानी, बेल का पानी पीना बहुत ही आवश्यक है। मतलब कि खाना कम खाइए, गरिष्ठ भोजन कम लीजिए, लेकिन शरीर में पानी की मात्रा बराबर बनी रहे इसके लिए थोड़ी थोड़े देर पर पानी लेते रहिए। इससे शरीर का जो पानी का स्तर जो पसीना से निकल जाता है वह बना रहता है ना?
1: बहुत बढ़िया बात बतेलो। कहने का भी इतने इतने रौद हो गलो छे आरो बहुत जे दिक्कत हो रहलो छे त की कहलो जाए, बिना पानी के तो कोई मतलब कामे नहीं चलता।
0: आरो
1: इतना दिन भर पसीना एकदम छरछर चूते रहे छे सोना बहन, कि लागे छे कम से कम 1-2 लीटर 3 लीटर तो नहीं निकली जता होते।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एकदम बिल्कुल अपना सही बतेलो कि आम का पकाए का ओकरा

0: पानीम घोरी के तनटा नमक दे के एकरा दिनों में एक दो बार जरूर लेना चाहिए हो। नींबू पानी सबसे बेहतर छे। आरु घरों से निकले लगो तो पूरा बढ़िया से भोजन करी के निकलो। आरु जो भोजन जैसे नए बनलो छे या थोड़ा विलंब छे तो की करना चाहिए हो, वही समय में सत्तू के शरबत पी भी लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, खाली पेट हमेशा धूप में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि खाली पेट लू लगने की संभावना ज्यादा रहती है। और साथ ही साथ देखिए गैरू भाई, पर्यावरण को जो प्रदूषित हो रहा है लगातार, जिस वजह से ये जो गर्मी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हम स्वयं ही इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। आज तापमान जो इतनी ज्यादा बढ़ रही है और धूप और गर्म वायु का जो हम जो सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं अगर ढूंढा जाए तो हम ही जिम्मेदार हैं। ऐसे में अभी भी अगर हम समझदारी नहीं दिखाते हैं, पेड़ों को कटने से नहीं बचाते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित होने से नहीं बचाते हैं, तो एक दिन हमें ही बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा।
0: एकदम एकदम सही कहलो सुनो बहन। देखो किछे सबसे बेसी तो जे ई अंधाधुन अभी जे छे कि गाछ वृक्ष के कटाई हो रहलो छे आ ओकरा कंक्रीट के जंगल बिछैलो जा रहलो छे, यानी कि मकान बिल्डिंग पर बिल्डिंग ठोकी रहलो छे लोग, लेकिन गाछ वृक्ष लगावे के नाम नहीं ले रहलो छे। तो जब गाछ वृक्ष नहीं लगेबो तो अभी देखो अभी एहनो रौदा में बात चली रहलो छे, नहीं अपनों से करी रहलो छो, लेकिन एहनो रौदा में कन्हे कुछ रह, लेकिन जो तनी देर गाछो तरह में जाए के 5 मिनट खराब है जा बैठी जा तो देखो कि लागे छे कत्ते बढ़िया एकदम राहत के सांस ले छे लोग। एहि लेल जरूरी छे सोना बहन कि अभी तो अब देखो है अब मई महीना खत्म होय वाला छे, है ना, जून जुलाई जे ई महीना होते है बरसात के जे समय आबि रहलो छे, एकरा में भरपूर पौधारोपण सब लोग मिली के करो ताकि जे छे है तापमान में कमी आवे आरो ई उमस भरी गर्मी आरो
1: देखिए गैरू भाई
0: निजात मिला।
1: ये अगला सप्ताह जो बोल रहे हैं कि नौतपा है, ये जो गर्माहट, ये नौतपा, ये सब हम झेल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस विषय पर गंभीर नहीं हो रहे हैं। कई प्रजाति जो है हमारे जो पारिस्थितिकी को जो संतुलित बनाकर रखता है, ऐसे कितने पशु, कितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इसके हिस्से हैं, लेकिन हम है कि उनको अनदेखा कर देते हैं, गाछ वृक्ष जंगल को काट देते हैं। कई जंतु की प्रजाति ऐसी है जो विलुप्त हो चुकी है और कई विलुप्त प्राय है। ऐसी ही एक प्रजाति के बचाव के लिए विश्व प्रयासरत है। आज अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है और मारखोर को बचाने और संरक्षण करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। पता है गैरू भाई, यह दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित एक वैश्विक दिवस है और यह दिवस जंगली पहाड़ी बकरी की एक प्रजाति है,
0: मतलब अच्छा अच्छा अच्छा
1: समझिए, और मारखोर और उसके प्राकृतिक आवास के संरक्षण की महत्व को ये मान्यता दे रहा है कि हम मारखोर को संरक्षित करें। जैसे बकरा होता है ना गैरू भाई, तो बकरे का ही जंगली प्रजाति होता है और बारह सिंघा की तरह, बारह सिंह तो नहीं है, इसके एक ही सिंह होते हैं और जो बहुत स्प्रिंग की तरह घुमावदार होते हैं और बहुत लंबे, मतलब 1 से 1.5 फीट लंबा इसका सींग होता है और यह एक बकरे की प्रजाति है और जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान, चित्राल जिला, कलस घाटी और हुंजा घाटी के साथ साथ नीलम घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में पाया जाता है। मारखोर भारत, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। मारखोर जो है वह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, जहां इसे पेंचदार सींग वाले बकरे के नाम से भी जाना जाता है। मारखोर शब्द फारसी शब्द है, मारखर से लिया गया है और इसका अर्थ है घुंघराला, क्योंकि इसके सींग जो होते हैं ना गैरू भाई, वो बहुत पेचीदा और घुंघराले होते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं। इसकी यह उप प्रजाति केवल जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों में ही पाई जाती है।
0: बहुत बढ़िया जानकारी दलो सना बहन, और निश्चित रूप से एक के कोई भी प्रजाति के बचाना जैसे कि ये प्रकृति के संरक्षण के लिए, पर्यावरण का समृद्ध करे के लिए
1: और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी जरूरी है
0: और जैव विविधता का बनावे के लिए भी जरूरी छे।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बढ़िया ये सब बात बतेलो आरो जे छे कि अब कार्यक्रम में आगे बढ़े छे आरो कुछ जरूरी संदेश के सुने छे।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आगे सैलरी? अब नहीं झुमके? ना, पहले बचत,
4: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि हाँ, लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 870001424।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 870001424।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
8: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
7: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जी,
1: संदेशों के बाद आप सभी श्रोता भाई बहनों का फिर से एक बार हमारे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में स्वागत है।
0: हाँ, बहुत बढ़िया बात कलो जैसे कि सोना बहन, आरो देखो कि एहनो जब समय के अभी बात करी रहलो रही है कि पूरा एकदम गर्मी के मौसम चली रहलो छे, एकदम तिबलो तिबलो, एहनो में जब जनता सांझ हो जाए छे आरो गाय गोरु सनी माल मवेशी सनी जब एकदम वापस आवल लाय छे जकरा गोधूली बेला कहे छो, चिड़िया चुनमुन भी अपनो गाछी पाबी का बसेरा लगाए दे छे, हाँ अपनो मजलिस लगाए दे छे, तब अपनो जे माय दाय छे जे गांव में एकदम वहूँ दिन भर काम करल के कहीं कोई खेत में कहीं आरु जगह पर, तो जब सांझ का बैठे छे ने तो गोर हाथ धोए के जब संझा बिरिया होय छे
1: धूप दीप के साथ और घंटी मंजरे के साथ जो भजन आरंभ होता है,
0: यह बात हम कहले चाह रही है,
1: दिशा में गूंजता है, बड़ा ही प्यारा बड़ा ही अच्छा लगता है। कहीं भी चले जाइए गुरु भाई, आज भी शहरों में भी गाँव में भी मंदिर मंदिर जहाँ मिला नहीं कि जितनी भी माता बहने हैं अपने सुमधुर संगीत से पूरा वातावरण को भक्ति पूर्ण करके गुंजायमान कर देती है।
0: हाँ, वही माँ अपनो जे छे कि आज हर जगह भगवान शिव के मंदिर तो लगभग बनिए गलो छे और हर जगह चर्चा के साथ साथ की हो छे भगवान शिव के भजन भोलेनाथ के एकदम बहुत चलता रहे छे अच्छा सा, तो कहना नहीं अभी अपनो कार्यक्रम में जे छे कि एक ठो बढ़िया रंग शिव भजन जे छे कि अपनो श्रोता सुनी का सुन लो जाए।
1: बिल्कुल, आइए सुनते हैं प्यारा सा शिव भजन।
0: बिल्कुल सुन।

0: जोगिया। बहुत ही प्यारा सा शिव भजन हम लोगों ने सुना और हमारा तो मन भक्ति से परिपूर्ण हो गया।
1: बिल्कुल, जब अपनो सुनिक भाग लो तो श्रोता भाई बहन के तो बिल्कुल होलो होते, लेकिन है।
0: और देखिए, हम जो बात करते हैं कि हमारे जो युवा है जो अभी गांव घर में है, तो उनको एक अपना जो कार्य शाला से जोड़ना होता है। कोई ज़रूरी है नहीं कि हम हमेशा पढ़ाई करके कहीं नौकरी ही करें, कुछ हम कौशल को भी सीख सकते हैं और अपने घर में अपने गांव में रहकर भी हम कुछ आमदनी भी कर सकते हैं। इसी विषय पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे शालिनी कुमारी की पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से मुख्य धारा और ग्रामीण युवा इस संदेश के बाद।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: एक सौ 25 करोड़ जनसंख्या में से लगता 34 करोड़ अर्थात जनसंख्या का 70% लोग गांव में रहते हैं। भारत की कुल आबादी का एक तिहाई भाग 15 वर्षों से कम आयु का है। साथ ही 20% जनसंख्या 15 वर्ष से 24 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 तक लोगों का औसत आयु 29 वर्ष होगा और उनमें से 65% लोग 35 वर्ष की आयु से कम होंगे। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि भारत युवाओं का देश बन गया है और इन युवाओं के माध्यम से ही मानव संसाधन का सदुपयोग संभव है और भारतीय अर्थव्यवस्था की भावी दशा एवं दिशा निर्धारित की जा सकती है। प्रश्न यह है कि ग्रामीण युवाओं को देश की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। वस्तुतः वर्तमान उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में ग्रामीण युवाओं को अहम भागीदारी बनना होगा। प्रतिभागी बाजारी अर्थव्यवस्था में मानवीय संसाधनों की सक्रिय सहमति से ही GDP वृद्धि दर की स्थायित्व और निरंतरता प्राप्त हो सकती है। युवा शक्ति ही भारत के भावी आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकते हैं। ग्रामीण युवाओं की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें समस्त सामाजिक और आर्थिक विकास संबंधी समस्त योजनाओं से जोड़ना सर्वथा लाभकारी होगा। एक अनुमान के अनुसार भारतीय जनसंख्या का 55% लोग 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। युवाओं में असीम ऊर्जा, उत्साह तथा आदर्शवादी भावना विद्यमान है। देश में आर्थिक सुधार कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विदेशी निवेश, विदेशी व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने, रोजगार सृजन मूलक कार्यक्रमों को सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकता है। ग्रामीण युवाओं को आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास से संबंधित अवसरों के साथ साथ अनेक चुनौतियां भी उपस्थित हो गई हैं। इस चुनौतियों से निपटने के लिए सभी तरह के विकास संबंधी परियोजनाओं के संचालन में युवकों की अहम भूमिका हो। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों,

0: में बढ़ती भी विषमतर है, जो गरीबी और अमीरी के बीच अंतर को बढ़ा रहा है। कृषि क्षेत्र में घटती हुई उत्पादकता दर एक प्रमुख चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में अत्यधिक कमी आई है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई समस्याएं उभर कर आ रही हैं। विकास संबंधी इन प्रमुख अवरोधकों से निपटने के लिए ग्रामीण युवाओं के विकास की मुख्य धारा में लाभ होगा। युवा वर्ग की केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित निम्न कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदार की संभावना है। पहला, राष्ट्रीय संसाधन विकास एवं प्रबंधन NROM। दूसरा, ग्रामीण औद्योगिकरण आम उत्पादन और बाजार तक पहुंच RRIM। ग्रामीण विकास के लिए प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधन TRD+PTD। ग्रामीण अवसंरचना विकास योजना RTDS। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा वंचित समूहों और निःशुल्क व्यक्तियों में सशक्तिकरण की योजना EWSCTDS। मानव संसाधन विकास योजना HRDS। डिजिटल इंडिया के प्रभावी होने, युवाओं की भूमिका, प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्रों के सफल संचालन में भी अहम, जैसे प्रौद्योगिकी प्रसार कार्यक्रम संचालित करने के लिए बुनियादी स्तर के गैर सरकारी संगठनों का अभिचिन्ह उत्प्रेरण एवं नर वर्किंग तथा उनके लिए परियोजनाओं की व्यवस्था करना, प्रसार में संलग्न और सरकारी संगठनों की सहायता करना, समाव्यप्ता अध्ययन प्रशिक्षण प्रलेखन बाजार गठन आदि जैसे सभी संबंधित कार्यों में सहायता प्रदान करना, पंचभावी राज्य संसाधनों संस्थानों तथा शासन की स्थानीय एजेंसियों के साथ संलग्नता की को विकसित करना, स्वैच्छिक संगठनों की पहुंच क्षमता बढ़ाना और सशक्त बनाना। इसके अतिरिक्त चूंकि भारतीय युवा अधिक प्रतिभाव न हो एवं मेहनती होते हैं, इसलिए उन्हें सूचना तकनीकी के क्षेत्र में अधिक से अधिक लगाया जा सकता है। विगत वर्षों में केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा युवाओं के कौशल विकास तथा उद्यमिता विकास के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड NCDC, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण NCVT, कौशल विकास प्रोत्साहन योजना SDTIC, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY आदि संस्थाएं युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी की बातों को उन्होंने हमारे समक्ष रखा और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए इन्हें देते हैं धन्यवाद। और फिर से सुनते हैं एक प्यारा सा लोकगीत 12 मासा।
2: बिल्कुल।

0: बहुत ही बढ़िया जे छै कि है लोकगीत जे छै कि सुनै ले मिललै, जेकरा में कि 12 मास के पूरा एकदम विस्तृत चर्चा लोक संगीत गीत संगीत जे छै कि अपनो सनी के संस्कृति में ही नहीं बल्कि रग रग में बसलो छै सोना बहन, बुझलो न। आरो आप चाहे विवाह हुआ कि याति कोनो जनेऊ हुए, मुंडन संस्कार हुए, यहाँ तक कि मतलब 16 संस्कार जे होय छै आरंभ से ल करै के आखरी तक वहूँ में अपना यहाँ गीत के परंपरा छै।
1: बिल्कुल, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने यहाँ पारंपरिक गीत जुड़े हुए जो हमारी मिट्टी की खुशबू को लिए हुए होते हैं, है ना।
0: खेती है बारीक बात करो सोना बहिन, तो चाहे रोपनी हुआ कि कटनी हुआ कि दौनी हुआ कि घरों के में खम्हारी सलौनी के जे छे कि जमा करे के समय हुआ, हर जगह की लोढ़ा हुआ, हर समय कोनो न कोनो गीत जरूर गैलो जाए छे।
1: इसका एक कारण यह भी है गरु भाई कि गीत संगीत जो है ना हमारे मन को सुकून देता है और हमें आंतरिक ऊर्जा प्रदान करता है। इस आंतरिक ऊर्जा से हमें नई स्फूर्ति मिलती है और हम काम करने के लिए नई ऊर्जा प्राप्त होती है और हम अपने जो मेहनत जो पड़ता है ना उस जो मेहनत के वजह से थकान होता है उस थकान को हम भूल जाते हैं। और अब थोड़ी सी जानकारी मौसम के बारे में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वही तरफ हमें इशारा कर ही रहा है कि किसान भाई बंधु का कि जब खेती गृहस्थी करे छे थोड़ा मौसम के सही जानकारी होना चाहिए कि कहनो समय में की करना छे, आरो पशुपालक भाई बहन सनी का भी। तो चलो देखो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं भारत मौसम विज्ञान के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कि आगामी 27 मई तक के जे छे कि दक्षिण बिहार के जिला में अगला 2 दिन तक जे छे कि मौसम शुष्क आरो ओकरो बाद के कुछ जिला में 1-2 स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी जे कि 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा एकरम चले पड़ा आरो एकरो आरो हल्का वर्षा के भी संभावना छे, एकरो अनुमान छे। हालांकि अरवल, जहानाबाद, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय ये सब जिला में जे छे कि अभी आबे वाला 2 दिन तक हीट वेव चले के संभावना
1: मतलब बहुत जोरों की लू चलने की संभावना। बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत एकदम सावधानी बरते के जरूरत छे। अधिकतम तापमान 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना छे। सापेक्ष आर्द्रता भोरे भोर जे छे 70-75% आरो दोपहर में 20-25% रहे के संभावना छे। पूर्वानुमान के अवधि में 10-14 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वा हवा चले के संभावना छे। आरो जे कुछ समसामयिक सुझाव छे, सामान्य सलाह छे, वो ई छे सोना बहन कि लू जेकरा अभी हीट वेव कहे छे के स्थिति में फसल में नमी के कमी, पत्ती के झुलसना, फूल फल गिरना आरो पशु में दूध उत्पादन कम हो सके छे। भोरे आरो सांझ के हल्का सिंचाई करे के सलाह देलो जाए छे, मल्चिंग अपनाना चाहिए और दिन में उर्वरक कीटनाशी के प्रयोग छिड़काव नहीं करे के सलाह देलो जाए छे। कने के तर रौदा रहे छे जे भी दबो तुरंते गायबे भैस्थों को फायदे नहीं होता, उड़ीज था है कि नहीं। आरो पशु सनी जे पशुधन छे चाहे गाय बैल बकरी छे घोड़े भले भैंस भले एकरा सनी के छायादार स्थान में पर्याप्त स्वच्छ पानी जे छे कि साफ पानी उपलब्ध करेलो जाए के सलाह देलो जाए रहलो छे। गर्मा मूंग और उरद जे देर से बुनलो गेलो छे, मूंग भी कि ग्राम फसल में डेयरी कैटरपिलर के प्रकोप के नियमित निगरानी करे के सलाह देलो जाए छे। और प्रकोप दिखाई देला पर मिथाइल पैराथियोन 50 EC प्रति 2 मिलीलीटर पानी में घोली के जे छे ओकरा छिड़काव करे के सलाह देलो जाए छे। अब कुछ जे छे सब्जी बागवानी आरो पशुपालक भाई सनी के तो है दे दो कुछ सलाह जे छे कि सुनो बे।
1: पशुपालक तो पशुधन हमारा जो है कि वो कृषि का रीढ़ समझिए, है ना, क्योंकि दूध के आधार पर जो हमारे बच्चे जो है जो भी समाज के वो बढ़ते हैं पलते हैं और ये हमें पशुपालक भाई से ही और भाई बहनों जो पशु रखते हैं उसी से मिल पाता है। इसलिए जरूरी है कि पशुपालन भाई बहनों को भी कुछ समसामयिक सुझाव दिया जाए। ब्याने वाले जो पशु हैं उसको प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन अवश्य दें। दूध देने वाले पशु को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन एवं भैंस का 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से अवश्य दें। हरा चारा 20 से 25 किलो प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। तो यह तो हुई कुछ समसामयिक और मौसम संबंधी सूचना। और आइए फिर थोड़ा सा वातावरण को संगीतमय बनाएं और सुने एक प्यारा सा लोकगीत।
0: जी

0: बाबा, बहुत ही प्यारा सा झुमाने वाला कृषि गीत हम लोगों ने सुना। चलो चलो गोरिया नदिया के पार। और आइए अब थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले कृषि संबंधित हमारी पूर्व प्रसारित वार्ता बाग लगाने की तैयारी के माध्यम से जिनकी जानकारी दे रहे हैं
1: डॉक्टर उमाशंकर जायसवाल।
0: आइए सुनते हैं और जानते हैं।

90. बाग लगाने की तैयारी। किसान भाइयों, साधारणतया बाग लगाने की तैयारी का अभिप्राय ऐसे बागों से है जो बहुवर्षीय होते हैं। बागों की सफलता उससे प्राप्त होने वाली अच्छी उपज एवं आय पर निर्भर करती है, और इसका सीधा संबंध

आग लगाने के लिए स्थान का चुनाव करना आवश्यक है। कारण ये जगह ऐसी जगह हो जहाँ सामान्यतः ऊंची हो, जल का निकास अच्छी तरह हो, मिट्टी बलुई दोमट अच्छी मानी जाती है। जहाँ परिस्थिति अनुकूल नहीं है वहाँ आवश्यक परिस्थिति बनानी पड़ती है। इसके दूसरे कारक जलवायु जो काफ़ी प्रभावी हैं। हमारे प्रदेश में ज़्यादातर आम, लीची, अमरूद, नींबू आदि के बाग लगाए जाते हैं, किंतु इसकी वृद्धि एवं उपज के लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छे माने जाते हैं। इसमें 10 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान का उतार चढ़ाव पेड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। यदि अधिक हो जाए तो इसके विपरीत लक्षण एवं पौधों को क्षति पहुँच सकती है। वर्षा के अधिक होने से पेड़ों के फूलों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, फफूंद एवं जीवाणुओं से फैलने वाले रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। अन्य प्राकृतिक आपदाएं और मौसम का बदलाव का भी ध्यान आवश्यक होता है। गर्म हवा से फूलों का झड़ना एवं परागण क्रिया प्रभावित होती है। दूसरी बात जो आपके लिए है कि बागों के लगाने के लिए वहाँ की मिट्टी को भी ध्यान में रखना चाहिए। फल वृक्षों का प्रथम आहार वहाँ की मिट्टी ही है, अतः जिस तरह के फल वृक्षों का बाग लगाना है उसके अनुरूप उसकी मिट्टी है या नहीं अनिवार्य रूप से देखना चाहिए। मिट्टी के गुणों जैसे अम्लीय एवं क्षारीय या मिट्टी की प्रोफाइल की जानकारी अवश्य करनी चाहिए, ताकि मिट्टी की निचली सतह कंकरेली नहीं हो, बलुई मिट्टी में पोषक तत्वों एवं सिंचाई की अधिक आवश्यकता होगी, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। बाग लगाने के पूर्व मिट्टी जांच करा लेनी चाहिए ताकि फलोत्पादन की लागत कम हो और आय अधिक मिले। किसान भाइयों, जहां पर बाग लगाने की तैयारी कर रहे हैं वहां पर सिंचाई जल एवं संसाधन की उपलब्धता आवश्यक रूप से हो। बागों के लिए कार्य करने वाले कृषि मजदूरों की आवश्यकता वहाँ पर उपलब्ध हो, यातायात की सुविधाएं तथा वहाँ आप बाग लगा रहे हैं और उसकी भी फल वृक्ष के बाग पहले से हों पर ध्यान देना आवश्यक है। अकेला किस्म का बाग वर्जित है। बाग लगाना एक कला है जहाँ आपकी सूझबूझ एवं बाग के लिए रेखांकन विधियों को अपनाना आवश्यक होगा। रेखांकन विधि के लिए किसान भाइयों, सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके लिए जितने भी प्रकार हैं उनकी विधियों में सबसे पहले वर्गाकार विधि है। इसमें पौधों से पौधों की दूरी और कतार से कतार की दूरी समान होती है। दूसरी विधि है आयताकार विधि, जिसमें इस विधि में पौधों से पौधों की दूरी कतार की दूरी से कम होती है। त्रिभुजाकार विधि, इसमें वर्गाकार विधि की ही तरह पौधे लगाते हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि कतार में दो पौधों के बीच में पौधा लगाते हैं जो एक त्रिभुज के आकार में दिखाई पड़ता है। इसके बाद आता है षटभुजाकार विधि, इसमें एक रेखांकन में 6 पौधे लगाते हैं और एक पौधा मध्य में लगाते हैं। जहाँ पर जमीन की कमी होती है वहाँ पर यह विधि अपनाना ज़्यादा श्रेयस्कर है, क्योंकि इसमें 15% तक अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। इसके बाद एक और विधि है जिसको कि हम पंचकोण विधि कहते हैं। इसमें पौधे वर्गाकार विधि की ही तरह लगाए जाते हैं एवं एक पौधा वर्ग के मध्य में लगाया जाता है। यह पौधा अस्थायी रूप से लगाया जाता है जिसे बाद में निकाल दिया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि कभी कभी जो पेड़ पौधे मर जाते हैं तो एक ही उम्र के पौधों को पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उस पौधे को स्थानांतरित करने के लिए ये लगाया जाता है। और एक पौधा यदि आपको एक उम्र का मिलता है तो आपका बाग एक जैसा अवस्थित हो जाता है। एक विधि और है कंटूर विधि। यह विधि हमारे यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है, ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अपनाई जाती है। अब आप अपने बाग के लिए गड्ढे की खुदाई करना चाहेंगे जिसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई 1x1x1 मीटर मतलब 1 घन मीटर के आकार का करेंगे। खुदाई के समय 1 फीट तक के ऊपरी मिट्टी को अलग रखें।

और भीतरी मिट्टी को अलग रखेंगे। ऊपरी मिट्टी को अलग रखने का अभिप्राय सिर्फ यह है कि इसमें ही ज़्यादा उर्वरा शक्ति होती है, इसलिए इसको हम अलग रखते हैं और गड्ढे की खुदाई अप्रैल मई के महीने में कुछ करके कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देते हैं, ताकि उसमें जो भी कीट, उसके अंडे या लार्वा सभी नष्ट हो जाएं। उस धूप में और गड्ढों की भराई के समय ऊपरी मिट्टी के साथ 10 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद, 1 किलो नीम की खली, 2 मिनट जमीन के लिए 5 किलो बालू, 1 किलो हड्डी का चूर्ण एवं कीटनाशक धूल 250 ग्राम एक साथ मिलाकर गड्ढों की भराई करनी चाहिए। और गड्ढों की भराई करने के समय ध्यान रहे कि वो आपके बंद मुट्ठी की तरह उभरी हुई हो, ताकि एक वर्षा होने पर उसकी मिट्टी की तरह अच्छी तरह से बैठ जाए, ताकि आप जब पौधे लगाएं तो उस पौधों को लगाने के बाद जड़ों को मिट्टी प्राप्त हो सके। इस तरह आप बगैर सिंचाई के पौधे नहीं लगाएंगे। ऐसी संभावनाएं भी हो सकती हैं कि गड्ढों की मिट्टी में से पौधों का संपर्क टूट जाए और पौधों का मरना निश्चित हो जाए। ऐसी कुछ आवश्यक पहलू हैं जहां आप अपनी सूझबूझ से बाग के लगाने की तैयारी कर सकते हैं। किसान भाइयों, बाग के लगाने की तैयारी के साथ आपको ध्यान रखना है कि आप कब क्या करेंगे। पौधे लगाने का उचित समय जुलाई और अगस्त का महीना है, जबकि बरसात होती रहती है, उसमें पौधे आसानी से लग जाते हैं। पौधों के जड़ों का मिट्टी का पिंड कभी भी टूटना नहीं चाहिए। यदि वो पिंड टूटता है तो उस पौधे को लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको ध्यान रखें कि जब भी आप पौधा किसी भी नर्सरी से लेके आएं, तो लाने के वक्त उसका मिट्टी उसके जड़ों के साथ जुड़ा रहे, इसका ध्यान देंगे। इसमें बागवान भाइयों के लिए एक आवश्यक बात है कि पौधा लगाने के 3 माह पश्चात से ही संतुलित पोषक तत्वों का उपनिवेशन करना अनिवार्य है। जब तक उसे प्रथम आहार अच्छी तरह से नहीं देंगे तो उसकी वानस्पतिक वृद्धि और उसका विकास रुक जाएगा। इसीलिए प्रथम वर्ष से ही आप उसमें कंपोस्ट 5 किलोग्राम, यूरिया 225 ग्राम, स्फुर जिसको आप फॉस्फोरस कहते हैं 500 ग्राम एवं पोटास 150 ग्राम प्रति पौधा देना आवश्यक है। इतनी मात्रा हर वर्ष जोड़कर पौधों में उपनिवेशित करना चाहिए, जो 10 वर्ष के पश्चात एक निश्चित मात्रा ही देनी चाहिए। 5 वर्ष के पश्चात 100 ग्राम सुहागा एवं हर 2 वर्ष पर 250 ग्राम जिंक सल्फेट देना आवश्यक है। यदि ये सारी चीज़ें आप किसान भाई समझ लें तो आप जिस बाग को लगाने की तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए उपयुक्त होगा। इसीलिए आप बागान लगाने वाले किसान भाई बहनों को बाग लगाने की तैयारी इसी प्रकार करनी चाहिए।

0: संदेशों के पहले हम लोग सुन रहे थे जानकारी बाग लगाने की तैयारी के विषय में, और इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी का समय यही समाप्त होता है। लेते हैं आप सभी श्रोता भाई बहनों से विदा, सबको सोना का नमस्कार
1: और सबका गैरू के भी नमस्कार।

आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी, प्रस्तुत करता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कल से 11 जून तक राज्य में विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर करेंगे विभागवार समीक्षा। विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी ने धर्म और संस्कृति मुद्दे पर कांग्रेस को दिया जवाब, कहा सरना सनातन और हिंदू एक ही संस्कृति और परंपरा का हिस्सा। CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में जारी की नोटिस, कहा विद्यार्थियों की अतिरिक्त राशि लौटाई जाएगी। राज्य भर में जारी भीषण गर्मी के प्रकोप से आम जनजीवन प्रभावित, गढ़वा पलामू और चतरा में लू का अलर्ट। और रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के तीसरे दिन कई प्रतिस्पर्धाएं आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर कल से 11 जून तक विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास कार्यों को गति देने के लिए कल से विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। अलग अलग दिनों में होने वाली बैठकों के लिए अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को पत्र जारी किया है। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों के सचिवों को निर्धारित तिथि पर अपनी पूरी तैयारी के साथ उपस्थित होने को कहा है। माना जा रहा है कि बैठकों के जरिए सरकार सभी विभागों की जवाबदेही तय करेगी और जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। पहले दिन जल संसाधन और पेयजल विभाग के साथ वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं विश रहमान।
0: विपक्षी दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने धर्म और संस्कृति मुद्दे पर कांग्रेस को जवाब देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रांची में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरना सनातन और हिंदू एक ही संस्कृति परंपरा के हिस्से हैं, इसलिए समाज को बांटने की राजनीति बंद होनी चाहिए।
2: चूंकि हर कोई जानता है सरना सनातन हिंदू ये तो पैदाइश ही होते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग किस प्रकार से समाज में विभेद पैदा करते हैं। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को या सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, अगर वास्तव में सरना समाज की हितैषी है तो आप याद करिए भारत के पार्लियामेंट में 1996 में ऐसा एक्ट लागू किया। अभी उन्होंने नियमावली बनाया, उस नियमावली में कानून में क्या है मूल जब उस कानून को देखेंगे, धार्मिक जो प्रथा है परंपरा को मानने वाले उसको ही उन्होंने हटा दिया है।
0: भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिमेश रंजन ने आज उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गुमला के पद पर योगदान किया। उन्होंने जिले के संपूर्ण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध

0: प्रतिबद्धता व्यक्त की। इधर खूंटी में मोहम्मद जावेद हुसैन ने उपायुक्त के रूप में योगदान किया। मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता होगी। उधर देवघर में सौरभ कुमार भुवानिया नए उपायुक्त होंगे। हजारीबाग के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय दो दिवसीय प्रशिक्षण अभियान का आयोजन किया गया। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद समेत पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रशिक्षण की शुरुआत की। मौके पर भाजपा के प्रदेश मंत्री अमरदीप यादव ने कहा कि जनसंघ से शुरू हुई यह यात्रा त्याग और संघर्षों की गाथा है।
1: भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर के चलती है और अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्रदान करती है कि हम कैसे अपने देश के लिए काम करें और कैसे सब हम लोग को जो दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सिद्धांत है उसमें कैसे चल के हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, उसी के लिए आज 12 विषयों पर हम लोग का चर्चा होना है।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्वांटम AI नाम की एक निवेश योजना को बढ़ावा दे रही हैं, जिसमें नागरिकों को 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश के बदले प्रति महीने 3,00,000 रुपए की आमदनी का वादा किया गया है। सरकार ने कहा है कि यह दावा पूरी तरह से झूठा है और वायरल वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तैयार किया गया है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यह सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। साथ ही केंद्र सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने या एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने आज जिले के नारायणपुर थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपराध पंजियों का संधारण, क्षेत्र के फरार चल रहे अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, मामलों का त्वरित निष्पादन सहित विभिन्न समस्याओं का अवलोकन कर आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिए।
2: निरीक्षण पुलिस अधीक्षक के द्वारा वर्ष में एक बार किए जाने का प्रोग्राम, मुख्य रूप से इसमें थाने के जो रिकॉर्ड है उसको देखा जाता है। इसके अलावा जो वर्तमान समस्या है या अपराध कर्मी है उनके बारे में थाना के स्तर से क्या कार्रवाई हो रही है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो नहीं हो रही, उस संबंध में एक निरीक्षण होता है।
0: दुमका जिले में पर्यावरण संकट और लगातार घटते वन क्षेत्र को देखते हुए काठीकुंड प्रखंड की बीछी पहाड़ी पंचायत में वन विभाग की ओर से जंगल बचाओ अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान निझौर गांव की किशोरियों ने पेड़ों पर राखी बांधते हुए संकल्प लिया कि वे जंगल और पेड़ों की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहेंगी। कार्यक्रम का नेतृत्व लोक कल्याण सेवा केंद्र ने किया। बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा बाबा नगरी देवघर पहुंचे। बाबा मंदिर में उन्होंने पूजा की और राज्यवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। धनबाद के झरिया में 12 घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। भीषण गर्मी और पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने डिगवाडी बिजली स्टेशन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर झरिया विधायक रागिनी सिंह भी मौके पर पहुंची और विभागीय अधिकारियों को जल्द बिजली बहाल करने का निर्देश दिया। राज्य में भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 49.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने 25 और 26 मई को गढ़वा, पलामू और चतरा जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है तथा लोगों से सतर्क रहने और धूप से बचने की अपील की है। रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित हो रही 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आज तीसरा दिन था। पेश है एक रिपोर्ट। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेली जा रही 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में आज खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। विभिन्न ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में कई नए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, जबकि अनुभवी एथलीटों ने भी दमदार प्रदर्शन कर फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में हरियाणा की रवीना ने स्वर्ण पदक जीतते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क भी हासिल किया। महिला 100 मीटर हर्डल्स और पुरुष 110 मीटर हर्डल्स स्पर्धा में खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जिसमें कई धावकों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पुरुष 110 मीटर हर्डल्स में तेजस अशोक शिरसे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। वहीं महिला और पुरुष 800 मीटर दौड़ की हिट्स में भी खिलाड़ियों ने प्रभावशाली प्रदर्शन कर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में भाग ले रहे कई खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखकर अपना सर्वश्रेष्ठ देने में जुटे हैं। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन को राज्य के लिए गौरव की बात बताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री कल से 11 जून तक राज्य में विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर करेंगे विभागवार समीक्षा। विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी ने धर्म और संस्कृति मुद्दे पर कांग्रेस को दिया जवाब, कहा सरना सनातन और हिंदू एक ही संस्कृति और परंपरा का हिस्सा। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में जारी की नोटिस, कहा विद्यार्थियों की अतिरिक्त राशि लौटाई जाएगी। राज्य भर में जारी भीषण गर्मी के प्रकोप से आम जनजीवन प्रभावित, गढ़वा, पलामू और चतरा में लू का अलर्ट। और रांची में बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के तीसरे दिन कई प्रतिस्पर्धाएं आयोजित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायिका कविता सिन्हा की प्रस्तुति। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए एक लोक भजन।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकगीत में गायिका कविता सिन्हा की प्रस्तुति। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: दीपिका
1: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है
4: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
2: आई नो ना
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: दादी कौन सा प्लांट है?
9: टेंजरीन बहुत मीठा होता है तोड़ना नहीं है।
10: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक अभी करता हूँ।
8: दादी रुको लिंक में क्लिक मत करना।
10: क्यों?
8: ये SMS स्कैम है क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
10: थैंक्स गप्पू बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
11: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के लिए बेहतर माहौल किया जा रहा है तैयार। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नई शिक्षा नीति सख्ती से लागू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है। और प्रदेश के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप, मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास समेत प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में लू का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है। श्री चौधरी ने पटना में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यवसायियों को भरोसा दिया कि सुरक्षा और सुविधा के मानकों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
1: मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार की सरकार के तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं, ये जो पूरा गैप है इसको बदलने का समय है। बिहार की समृद्धि का रास्ता आपके माध्यम से खुले, बिहार समृद्ध हो, देश विकसित होगा तभी जब बिहार समृद्ध होगा।
0: मुख्यमंत्री ने उद्योग संघों और व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर उनकी समस्याएं समझी और उनके निदान का आश्वासन भी दिया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति सख्ती से लागू की जाएगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षण कार्य में लापरवाही किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई हो, इसके लिए शौचालय, मिड डे मील, बेंच टेबल समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि खाड़ी देशों में युद्ध के कारण उत्पन्न संकट से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि सरकार इस पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है, लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए।
2: पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे, जो दुनिया के हालात हैं, जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है, दाम में जो बढ़ोतरी का दर है वो भी समझिए कई देशों की तुलना में यहाँ पे नियंत्रित रखा गया है, कि जो प्रधानमंत्री की अपील है उसके तहत हम लोग काम करके खपत को कम करें और खाड़ी युद्ध का जो प्रभाव आ रहा है उसका हम लोग न्यूनतम स्तर तक ले जाएं।
0: भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विभिन्न भागों में दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन कर रही है। इसके तहत कार्यकर्ताओं को संगठन के विचार, व्यवस्था और संपर्क माध्यमों से परिचित कराया जा रहा है। रोहतास में आयोजित महाअभियान में आज राज्य के खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार शामिल हुए। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के अनुरूप वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट सैटेलाइट सिटी पर काम शुरू कर दिया गया है। श्री मिश्रा शेखपुरा जिले में भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका विभाग लोगों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला कार्य योजना तैयार कर रहा है।
3: भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उसी कड़ी में पूरे देश स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है और न सिर्फ शेखपुरा में बल्कि पूरे देश स्तर पर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो मंडल स्तर से जिले स्तर तक भी, जिसमें कार्यकर्ताओं के बेहतरी के लिए उस पर आधारित ये प्रशिक्षण है।
0: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विधान परिषद के आगामी चुनाव में सारण और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। पटना में पार्टी की आज हुई बैठक में सारण से विद्यासागर विद्यार्थी और तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से प्रोफेसर संजय कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया गया है। पार्टी के प्रदेश सचिव राम नरेश पांडे ने बताया कि महागठबंधन के अन्य दलों के साथ समन्वय बनाकर संयुक्त उम्मीदवार दिए जाने पर भी विचार किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में पंजाब से आए प्रतिनिधियों के लिए आज आईआईटी पटना में स्वागत सह ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
4: आईआईटी पटना के सीनेट हॉल में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों के युवा शामिल हुए। पंजाब से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया और उन्हें बिहार की ऐतिहासिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत से अवगत कराया गया। डीजीपी विनय कुमार ने अपने संबोधन में युवाओं से देश की विविध संस्कृति को समझने, आपसी संवाद बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद भी किया।
5: बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद फिर मैं जॉब किया एलएनटी में एक साल, फिर आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स किया, फिर मैं पब्लिक सेक्टर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन बॉम्बे ज्वाइन किया, फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस दिया, दिल्ली आया, यूपीएससी लिखा 90 में और फिर आपके सामने पुलिस में आ गया।
4: आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा कि पंजाब से आए छात्रों को राज्य के ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।
6: उन जगहों पर ले जाएंगे जिसके कारण बिहार ज्यादा जाता है, जैसे वैशाली है, बोध गया है, ये है नालंदा है, वैशाली का भी हम लोग प्रयास करेंगे और इन सारी चीजों को देखने के बाद विद्यार्थियों को एक अवसर मिलेगा यहाँ के संस्कृति को समझने के लिए, यहाँ के कल्चर को समझने के लिए, यहाँ के व्यवसाय को समझने के लिए और यहाँ के व्यक्तियों की मानसिकता को समझने का भी पूरा प्रयास रहेगा।
4: कार्यक्रम में विधायक सुरेंद्र मेहता समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। युवा संगम कार्यक्रम देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं को एक दूसरे की संस्कृति, परंपरा और विकास मॉडल को समझने का अवसर प्रदान करता है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपालजी त्रिवेदी समेत बिहार की 3 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान करेंगी। लोकप्रिय कलाकार विश्व बंधु को डोमकच नृत्य को मुख्य धारा में लाने के लिए पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। वहीं भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया जाएगा। डॉक्टर त्रिवेदी और विश्व बंधु को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के दक्षिणी भागों में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। अधिकतर स्थानों पर पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और गया जिले में लू चलने की संभावना जताई है।
1: तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों और गया जिले में लू चलने की संभावना है।
0: इधर राज्य के उत्तरी भागों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आंधी, बारिश और वज्रपात की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज और सुपौल जिलों में तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे और हल्की से मध्यम आंधी और बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना है।
0: संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आज पटना समेत प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर शांतिपूर्वक आयोजन किया गया। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चली। इस दौरान विभिन्न केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में कल से 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में स्वास्थ्य और इससे संबद्ध क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण कर नियोजक संस्थाओं में आवेदन दे सकते हैं तथा स्लॉट बुक करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सेना की खुफिया एजेंसी और राज्य पुलिस की एसटीएफ टीम ने पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से जाली नोट का नेटवर्क चलाने वाले गिरोह के सरगना सुशील तिवारी उर्फ दया तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में जाली नोटों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सुशील तिवारी की गिरफ्तारी के लिए कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां लगातार काम कर रही थीं। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बाकरपुर गांव में संयुक्त कार्रवाई कर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल, मैगजीन, भारी संख्या में कारतूस, 4.5 लाख रुपए नकद समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। पटना जिले के रूपसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल में एक युवती से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिम भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मद्य निषेध कानून और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। शेखपुरा जिले की बरबीघा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों के पास से देसी पिस्तौल और 3 संदिग्ध मोबाइल बरामद की गई है। दोनों से प्रारंभिक पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। साइबर थाना पुलिस ने शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत कतुरी सराय कबीरपुर पथ पर गश्ती के दौरान एक साइबर ठग को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। पुलिस फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सुपौल जिले के बीरपुर में सशस्त्र सीमा बल द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत साइकिल रैली निकाली गई। वाहिनी मुख्यालय बीरपुर से सीमा चौकी कटैया तक आयोजित रैली का उद्देश्य सीमा क्षेत्र के लोगों और जवानों के बीच स्वास्थ्य, फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और नियमित व्यायाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम स्थित महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिले का स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह में छात्र, शिक्षक और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नई शिक्षा नीति सख्ती से की जाएगी लागू। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है। और प्रदेश के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप, मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास समेत प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में लू का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बंधु नई कार जीतने का मौका, वाओ पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
1: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
0: ब्रो ये फटा है। सुन, फटे फटे या पुराने नोट को
1: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
0: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ,
0: जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
1: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मधेपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स।
6: जिले का 46वां स्थापना दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर लोगों को जिले के गौरवशाली इतिहास और विकास यात्रा से अवगत कराया। जिला प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में श्री यादव ने कहा कि मधेपुरा ने विकास के कई नए आयाम स्थापित किए हैं और अब विकास के गति को और तेज करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी और साहित्यकार डॉक्टर बी एन मधेपुरी की पुस्तक मधेपुरा जिला का इतिहास का वितरण किया गया। वहीं जिले के घैलार क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वाले 100 खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मधेपुरा जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 50,000 से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है। जिले में निर्धारित लक्ष्य 18,82,000 के मुकाबले करीब 10,72,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजीत कुमार मिश्र के अनुसार सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और वसुधा केंद्रों पर लगातार कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिले के 12 सरकारी और निजी अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा गया है, जहां गंभीर बीमारियों का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। मधेपुरा जिले में कैंसर पीड़ितों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। पटना के IGIMS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने मधेपुरा में कैंसर के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। IGIMS के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष प्रदेश में कैंसर के लगभग 78,000 मामले संस्थान में पहुंचे, जिनमें अकेले मधेपुरा जिले के करीब 2,750 मरीज शामिल थे। यह संख्या राज्य औसत से लगभग 700 अधिक बताई गई। डॉक्टर मंडल के अनुसार जिले का भूजल प्रदूषण इसकी एक बड़ी वजह हो सकता है। पानी में नाइट्रेट की बढ़ती मात्रा और

रासायनिक प्रभाव के कारण पेट, पैनक्रियाज, गॉल ब्लाडर, बड़ी आंत और मलद्वार से जुड़े कैंसर के मामले अधिक सामने आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और सुरक्षित

0: वृक्षण और पौधरोपण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। शिविर का आयोजन कल तक होगा। मधेपुरा में किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संयुक्त रूप से फार्मर रजिस्ट्री अभियान चला रहा है। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसके तहत किसान अपने भूमि संबंधी दस्तावेज आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के आधार पर फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवा सकते हैं। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक अधिक पारदर्शी और सुगम तरीके से पहुँचाना है। जिले में पासपोर्ट सेवा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 26 मई तक विशेष मोबाइल वैन शिविर लगाया गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना की ओर से आयोजित इस शिविर के जरिए नागरिक अपने घर के नजदीक पासपोर्ट संबंधी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इच्छुक लोग पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर स्लॉट बुक कर आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जनवरी में आयोजित ऐसे शिविर में 165 आवेदनों का निष्पादन किया गया था। मधेपुरा जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों के लिए भी महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जिन लाभार्थियों ने अब तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है उन्हें 30 मई तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पंचायत भवनों में शिविर लगाए गए हैं और ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। समय पर प्रमाणीकरण नहीं कराने पर पेंशन बंद हो सकती है। जिले के सिंहेश्वर से मानिकपुर तक बनने वाली बाईपास सड़क को विभागीय स्वीकृति मिल गई है। फिलहाल इसका DPR तैयार किया जा रहा है। सांसद दिनेश चंद्र यादव ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क निर्माण से मधेपुरा और सिंहेश्वर शहर में जाम की समस्या कम होगी तथा आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। 9 मई को मधेपुरा जिले के व्यवहार न्यायालय और अनुमंडल न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यहां आपसी सहमति के आधार पर कई मामलों का निपटारा किया गया। वहीं 19 मई को जिले की विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री शीला मंडल और प्रभारी सचिव राहुल कुमार ने सहयोग शिविर में उपस्थित होकर लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
1: अभी आप सुन रहे थे मधेपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायक कलाकार अभय कुमार सुमन की प्रस्तुति। आरंभ में सुनिए कबीर दास का लिखा भजन।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार अभय कुमार सुमन की प्रस्तुति। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब आप सुनेंगे। कार्यक्रम में पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म अंदाज से।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना पहला गीत फिल्म अंदाज से। इस गीत को गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। संगीत था नदीम और श्रवण का और गीत के बोल लिखे थे समीर ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म धड़कन का ये लोकप्रिय गीत। उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ें थीं। इस गीत को लिखा था समीर ने, नदीम श्रवण का संगीत था। कार्यक्रम में अब आइए आगे बढ़ते हुए आपको सुनाते हैं फिल्म खूबसूरत का गीत। इस गीत को संगीतबद्ध किया है जतिन और ललित ने, इसके बोल लिखे हैं संजय छेल ने और आवाज़ें हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म परदेस का ये लोकप्रिय गीत। इस गीत को गाया है सोनू निगम, हेमा सरदेसाई, शंकर महादेवन और साथियों ने। नदीम श्रवण का संगीत है, आनंद बख्शी ने इसके बोल लिखे हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीकंधा, यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आइए आपको सुनाते हैं फिल्म कोयला का ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। इंदिवर ने इसके बोल लिखे हैं और संगीत है राजेश रोशन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिरी गीत के रूप में आइए सुनते हैं सोनू निगम, आफ्ताब साबरी, हाशिम साबरी और साथियों की आवाज़ में फिल्म मैं हूं ना का ये गीत। जावेद अख्तर ने इसके बोल लिखे हैं, संगीत है अनु मलिक का।

0: हाल।
1: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें।
2: इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर है। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर

0: इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गईं। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्रिशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शेराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती मुआहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमद और रफ्त को तआवुन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। टीएमसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने CBSE के पर्चे दोबारा जांचने से मुतालिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसी मौजूदात पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका दिफाई शराकत दारी की ताकत का एक बार फिर जिक्र किया और तिजारत, तवानाई, नखल व हमल, नेज इलाकाई सलामती समेत तआवुन के अहम मैदानों का खाका पेश किया। वफ्द की सतह की बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जल्द अज जल्द एक तजारती माहदे की तकमील को की जरूरत को उजागर किया। तवानाई की तिजारत में तोसी का खैर मकदम किया और जोर देकर कहा कि मुख्तलिफ किस्म की तवानाई सप्लाई भारत में तवानाई की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए अहम है। ईरान के साथ तनाजे के बारे में जनाब जयशंकर ने कहा कि भारत और अक़्वामे मुत्तहदा को इस बात को यकीनी बनाने में काफी दिलचस्पी है कि तवानाई की आलमी कीमतें कम रहें। उन्होंने मुज़ाकरात, सिफारती कोशिशों, महफूज और बिला रुकावट समंदरी तजारत के हक में भारत के मौकिफ को भी एक बार फिर दोहराया। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिसके ताल्लुकात अमरीका, इसराइल, ईरान नेज दिगर खलीजी मुल्कों के साथ मजबूत हैं। उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत खित्ते में अमन इस्तेहकाम, बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी की फलाह और तवानाई की कीमतों में कमी चाहता है। डॉक्टर जयशंकर ने अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को उजागर किया और कहा कि कानूनी तौर पर की जाने वाली आमदोरफ्त पर कोई मनफी असर नहीं पड़ना चाहिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने शराकत दारी के दिफाई पहलुओं की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने भारत को दुनिया में अमरीका के सबसे अहम शराकत दारों में से एक करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमरीका उन सभी अहम मामलों पर दिफाई तौर पर मुत्तफिक हैं जिनसे नई सदी की वजाहत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के नतायज बर्दाश्त किए हैं। उन्होंने ये बात भी जोर देकर कही कि अमरीका ने दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात भारत के साथ उसके दिफाई इत्तेहाद की कीमत पर नहीं किए हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए कल भारत के 4 रोजा दौरे पर आए हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को होगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी वजीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में दिफा, सलामती और दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबों में तआवुन पर तवज्जो मरकूज की गई जिनमें ट्रस्ट पहल भी शामिल है। वजारत ने मजीद बताया कि कौमी सलामती के दोनों मुशीरों ने दो तरफा जामे आलमी दिफाई शराकत दारी के मुताबिक आला तरजीहात का एक बार फिर जिक्र किया। उन्होंने मकामी और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिवानशु पांडा ने फाल्टा असेंबली सीट के लिए दोबारा हुई पोलिंग में जबरदस्त जीत हासिल की है। जनाब पांडा ने 1,09,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। यह सीट तृणमूल कांग्रेस का अहम गढ़ तस्वुर की जाती है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटिंग में बड़े पैमाने पर मुबैना धांधली के वाकयात के बाद 21 मई को दोबारा पोलिंग कराई गई। फाल्टा सीट जीतने के बाद 294 नशिस्तों वाली असेंबली में बीजेपी के अराकीन की तादाद 208 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तृणमूल कांग्रेस के मुबैना डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए बीजेपी ने आज फाल्टा असेंबली सीट पर दोबारा कराई गई पोलिंग में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पार्टी के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने अपने करीबी हरीफ सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से ज्यादा वोटों के भारी फर्क से हराकर ये सीट जीत ली। शंभुनाथ कुर्मी को 40,645 वोट मिले जबकि दिवांशु पांडा को 1,49,666 वोट हासिल हुए। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान 7,783 वोट पाकर चौथे मकाम पर रहे। उनकी जमानत जब्त हो गई जबकि कांग्रेस तीसरे मकाम पर रही। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: मगरबी बंगाल हुकूमत ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो उन मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्कियों नेज गैर मुल्की कैदियों के लिए हिरासती मरकज कायम करें जिन्हें वजारत दाखिला के रहनुमा खतूत के मुताबिक जिला वतन किया जाना है या उनके वतन वापस भेजा जाना है। दाखिली और पहाड़ी अमूर के महकमे की तरफ से जारी एक सरकारी ऐलामिये के मुताबिक जिलों से कहा गया है कि वो उन अफराद को उन मरकजों में भेजने के लिए ज़रूरी इकदाम करें जिनकी शनाख्त मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों की हैसियत से की गई है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी कैद की मुद्दत पूरी हो गई है और उन्हें जिला वतन किया जाना है। हिदायतनामे में हुक्काम से कहा गया है कि वो उन बांग्लादेशी शहरियों और रोहिंग्या अफराद को जिला वतन करने और उनके वतन वापस भेजने के लिए वजारत दाखिला के तरीक़ेकार के मुताबिक कार्रवाई करें जो भारत में गैरकानूनी तौर पर रह रहे हैं। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल की खामियों को दूर करने के लिए CBSE की मदद की गरज से IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसर्स और तकनीकी माहिरीन की एक टीम तैनात करने की हिदायत दी है। ये फैसला CBSE के नतायज के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के बारे में तलबा और वालिदैन की तरफ से जाहिर की गई तशवीश के पेश नज़र किया गया है। तालीम की वजारत ने एक बयान में कहा है कि IITs के माहिरीन की ये टीम निज़ाम में तकनीकी बेहतरी लाने नेज खास तौर पर इम्तिहान के पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारकर्दगी को तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के नतायज और दोबारा जांच के अमल के दौरान तलबा के सामने पेश आने वाले तकनीकी और अदायगी से मुतल्लिक मसाइल पर मालियात और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन से आज बातचीत की। वजारत तालीम ने कहा कि बातचीत के दौरान यह फैसला किया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और इंडियन बैंक अदायगी के बुनियादी ढांचे और इम्तिहान के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के साथ जरूरी इंजमाम में CBSE की मदद करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गर्मी की शिद्दत ने वस्ती और शुमाल मगरबी भारत के बड़े हिस्से में मामूलाते जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। कई इलाके खुश्क हवाओं और शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं जिससे लोग दोपहर के औकात में घर के अंदर रहने पर मजबूर हो गए हैं। कौमी राजधानी दिल्ली भी शदीद गर्मी की जद में है। आज कौमी राजधानी खित्ते के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने कल उत्तर प्रदेश, मशरकी मध्य प्रदेश और विदर्भ खित्ते में शदीद गर्मी की पेशगोई की है जबकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बंगाल के हिमालयी इलाके, आसाम और मेघालय में कल शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। मध्य प्रदेश शदीद गर्मी की लपेट में है। पूरी रियासत में गर्म हवाएं चल रही हैं और कई शहरों में दर्जा हरारत 43 डिग्री से तजावुज कर गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश को इस वक्त शदीद गर्मी का सामना है। बेशतर शहरों में दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। आज महकमा मौसमियात ने चार अजला टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना के लिए शदीद गर्मी की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। ततैया, नेवाड़ा और सागर समेत 11 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जबकि ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन समेत 22 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह रियासत के 37 अजला गर्मी की शिद्दत से जूझ रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम अगले 4 रोज तक शदीद गर्मी से राहत का कोई इम्कान नहीं है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो दोपहर के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें, बहुत ज्यादा पानी पिएं, नीज बच्चों और बुजुर्गों को खसूसी निगहदाश्त में रखा जाए। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: महाराष्ट्र में अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों में शदीद गर्मी के पेश नज़र मंगल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस मुद्दत के दौरान अकोला, नागपुर और गढ़चिरौली जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के एक कुनबे के 8 अफराद जिनमें 7 खवातीन थीं आज उत्तर कन्नड़ा जिले के थट्टे हक्कालू दरिया में डूब गए। ये लोग ताज़ा पानी की सीपियाँ चुन रहे थे कि तेज़ हवा की वजह से बहकर दरिया में चले गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में डूबने से हुए जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। वजीर आजम ने इस हादसे में मरने वालों के कुनबों के तहत ताजियत का इजहार किया है और मुतासरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहकीन के लिए वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली की एक 4 रुकनी मेडिकल टीम ने भोपाल में मॉडल से अदाकारा का पेशा अख्तियार करने वाली त्रिशा शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दौरान तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। कानूनी तरीक़ेकार मुकम्मल करने के बाद ट्रिशा का जस्ते खाकी उनके कुनबे के सुपुर्द कर दिया गया और उनकी आखिरी रसूम भोपाल में भदभदा क्रिमेशन में अदा की जाएंगी। 33 साल ट्रिशा की मौत भोपाल में उनके मायके में हो गई थी और उनके कुनबे ने उनके ससुराल वालों पर जहेज के लिए हरासा करने ने उन्हें खुदकुशी पर उकसाने के इल्जाम आयद किए हैं। पुलिस ने ट्रिशा के शौहर समर्थ सिंह के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली है, जो खुद वकील हैं। उनकी सास गिरिबाला सिंह साबिक जिला जज हैं, उन पर भी जहेज के लिए हिरासा किए जाने के इल्जाम हैं। बहरीन की एक अदालत ने 9 लोगों को उम्र कैद और दीगर 2 अफराद को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। इन अफराद पर ईरान के सिपाही पासदारा ने इंकलाब इस्लामी से मुआवनत करने का इल्जाम था, जिसे हुक्काम ने मुल्क के खिलाफ साजिश और एक दहशतगर्दाना अमल करार दिया था। बहरीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये अफराद हसास मकामात के बारे में मालूमात जमा करने और उससे मुतालिक पैसों के लेन देन में मदद करने में शामिल थे। बहरीन की वजारत दाखिला ने इस माह की 9 तारीख को बताया था कि उसने ऐसे 41 अफराद को गिरफ्तार किया है जिनके मुबैना तौर पर ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से रवाबित थे। की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की पहलवानों ने अपनी उम्दा कारकर्दगी जारी रखते हुए आज वियतनाम के शहर डानांग में सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे जीते। खवातीन के फ्री स्टाइल मुकाबलों में मानसी लथेरा और काजल ढोजक ने सोने के तमगे, स्वीटी और नेहा सागवान ने चांदी के तमगे, जबकि अहिल्या शिंदे ने कांसे का तमगा जीता। मर्दों के ग्रेग रोमन जुमरे में सुमित दलाल ने सोने का तमगा जीता, जबकि नीरज पटेल और रोहित बोहरा ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम से कम 24 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए। ये धमाका राजधानी क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ। इस धमाके में एक रेलगाड़ी को जुज़्वी नुकसान पहुंचा, जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस वाकये के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों और तिब्बी अमले को तलब किया गया है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक इस धमाके के बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के नजदीक गोलियां चलने के वाकये के बाद तेजी के साथ कार्रवाई करने पर कानून नाफिज करने वाले हुक्काम और खुफिया सर्विस के अहलकारों का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि मुश्तबा शख्स की पुरतशद्दुद तारीख रही है और ये वाकया वाशिंगटन में सिक्योरिटी से वाबस्ता गोलीबारी के एक और हालिया वाकये के चंद रोज बाद पेश आया है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती मुआहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमद और रफ्त को तआवुन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। TMC उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को हिदायत की है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने CBSE के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के माहरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम के पहले गीत के रूप में आइए सुनते हैं फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत। इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने, मजरूह सुल्तानपुरी ने इसके बोल लिखे थे और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं फिल्म वक्त का गीत। इस गीत को गाया है मन्ना डे ने, साहिर लुधियानवी ने इसके बोल लिखे हैं, रवि का है संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आपको आवाज सुनवाते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र का ये लोकप्रिय गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत है कल्याण जी और आनंद जी का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म सुहाग का गीत, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और शैलेंद्र की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको एक ज़रूरी सूचना दे दें, युववाणी मासिक स्तंभ फ़ोन इन कुछ बातें कुछ गाने कार्यक्रम के लिए फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग 27 मई 2026 को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच होगी। इस कार्यक्रम में श्रोतागण अपने पसंदीदा गाने सुनने के लिए हमें फ़ोन नंबर 2400981 पर कॉल कर सकते हैं एवं भागलपुर से बाहर के श्रोता बंधु नंबर से पूर्व 0641 कोड लगाकर हमें कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं नंबर दोहरा

इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवार्षिक संगीत सभा में कलाकार पंडित हारा शंकर भट्टाचार्य से सितार वादन प्रस्तुति। आप सुनेंगे आकाशवाणी कोलकाता की, प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाले विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सु

0: अवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांतो दे रॉय।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेयर हिज ग्रैंडफादर द रिनाउंड सितारिया श्री लाल मोहन भट्टाचार्य इज सेड टू हैव लेड द फाउंडेशन of this rich legacy, and Pandit Hrishankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Murali Das Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Hrishankar Bhattacharya moved to Bombay, present day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Hrishankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Zafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Hrishankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Hrishankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आपत है।
1: पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी। Beginning with Alap and Jor, the composition of the rag is set to Gat in Vilambit Teen Tal, followed by Madhyalaya Teen Tal.

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग विला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवत है।
1: You are listening to Rag Chayanat in the sitar recital. Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the Rag is set to Gat in Deep Chandi and Dhrut.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: You are listening to Raag Zila Kafi in the sitar recital by Pandit Harishankar Bhattacharya. He was accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: And with this, we end tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
4: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
3: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices